0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: सुन रहे हो पुणेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ RJ शिवप्रिया. आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर. श्रुति हूँ

मनुष्यों के जीवन में जब भी कठिनाइयां आती है, तब मनुष्य परमात्मा से कहता है कि परमात्मा कृपा करो, संकट से निकालो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही है। परमात्मा कहते हैं, तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर कृपा करनी है। अगर हम परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के दिखाए हुए रास्तों पर हमें चलना है। सही राह दिखाना, यही परमात्मा की कृपा है। लेकिन उस राह पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम कृपा मांगने तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन हम खुद अपने साथ क्या करते हैं? कभी खुद पर खुद कृपा करने का हमने सोचा ही नहीं। बाहर वाले लोग हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। सुबह से रात तक हम कितना अपने मन को निगेटिव व्यर्थ विचारों में बिजी करते हैं। भूतकाल में लोगों के व्यवहार, कर्मों को देख देख कर जो मन में हमने घाव बनाए हैं, सोच सोच कर उस घाव को भरने की कोशिश ही नहीं करते। कई सालों तक उस घाव को खुदेड़ खुदेड़ कर याद करते रहते हैं और घाव ताजा करते रहते हैं। घायल रहने की जैसे आदत सी बन गई है। सुखों की बातें ज्यादा याद नहीं आती। किसी ने कभी दुख दिया, वही बार बार क्यों याद आता है? क्योंकि हमने अपने मन के घावों को भरा ही नहीं। दुख देने वालों ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हर बार अपने घावों को खुदेड़ कर याद कर हम बार बार दुखी होकर हमने अपना नुकसान कर लिया। दूसरे कैसा व्यवहार करेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह तो हमारे हाथ में है ना। दूसरों से प्यार से बात करने की उम्मीद रखने के बजाय अपने आप से ही प्यार से बात करने की उम्मीद रखी होती तो क्या हम दुखी होते? दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करें इस उम्मीद के बजाय क्या हमने अपने आप से अच्छा व्यवहार किया? दूसरे हमारे बारे में क्या बात करते हैं इस पर ध्यान ज्यादा आ जाता है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ? दूसरों को जज करने में, समझने में जिंदगी चली जाती है, लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। दूसरों से अच्छी बातों की, व्यवहार की अपेक्षा के बजाय क्यों ना मैं अपने आप से अच्छी बातें करूं, अच्छा व्यवहार करूं? अपने को समझने में, अपनी कमी कमजोरी खत्म करने में समय लगाऊं, अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाया जाए। आज तक हमने ऐसा कुछ भी तो अपने साथ नहीं किया। सिर्फ अपने आप को याद दिलाते रहे कि दूसरों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूं। अपने मन के घावों को भरना, अपने मन में अच्छे संकल्पों को क्रिएट करना, दुनियावी बातों से मन को हटाना, निगेटिव व्यर्थ बातों से मन हटाकर सकारात्मक श्रेष्ठ बातों में मन को लगाना, अपने मन का सच्चा मित्र बनना, अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए ज्ञान की अच्छी

ठीक खुराक देना। बार बार मन को भूतकाल के दर्द में जाने से रोकना, वर्तमान में कुछ नवनिर्माण के काम में बिजी रखना, यही तो है ना अपने आप पर कृपा करना। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, बहुत से लोग

मन के घाव भरते हैं परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के याद से। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कलयुग में हैं। कलयुग में सतयुग जैसा व्यवहार तो मिलेगा नहीं। गर्मियों में स्नोफॉल की उम्मीद करना बेकार है, गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी। कलयुग में सभी बीमार हैं। बीमार लोगों से सतयुगी व्यवहार की अपेक्षा करना बेवकूफी है। कोई क्रोध के कीटाणु से बीमार है, कोई लोभ से बीमार है, कोई नफरत से बीमार है, कोई स्वार्थ के कीटाणुओं से बीमार है। किसी के अंदर ईर्ष्या के जर्म्स इतने फैल गए कि बेचारा वो खुद ही खुश नहीं रह पाता। किसी में काम वासना के कीटाणु है। अपने चारों ओर सिर्फ बीमार ही बीमार नजर आते हैं। किसी में भय के कीटाणु है, इनसिक्योरिटी के कीटाणु है। जब ये कीटाणु बढ़ जाते हैं तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है और हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और दुखी होकर बार बार हर्ट होने की बीमारी हम खुद को दे देते हैं। बार बार दुखी होना यह भी भावनात्मक बीमारी का रूप लेता है। आजू बाजू सारे ही पेशेंट हैं। अगर हर एक के विकारों के कीटाणु हम देखने लगे और उसका चिंतन करने लगे तो यह कीटाणु हम में भी आएंगे और हम भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे कलयुगी विकारी दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? परमात्मा कहते हैं, बीमार लोगों को माफ कर दो, कमजोर लोगों को दुआ दो, इनके प्रति शुभ भावना रखो। सुनने के बाद थोड़ा मुश्किल तो लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें माफ करना, दुआ देना, उनके प्रति शुभ भावना भी रखना। लेकिन परमात्मा ने हमें बीमारी से बचने का रास्ता बताया है। माफ नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, दुआ नहीं देंगे तो बददुआ देकर खुद को भी बीमार करेंगे, शुभ भावना नहीं रखेंगे तो बदले की भावना रख खुद का भी नुकसान करेंगे। खुद की खुशी, शांति, एकाग्रता सब गवा देंगे। परमात्मा ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन सिर्फ कृपा मांगने से कुछ नहीं होगा। इन रास्तों पर हमें चलना होगा। अगर हम इतने कमजोर हो गए हैं जो परमात्मा के दिखाए हुए रास्तों पर चल ही नहीं पाते, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, बच्चों, मुझे याद करो, स्वयं को शरीर के भान से मुक्त कर आत्मा समझ परम आत्मा को याद करो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और तभी तुम सद्मार्ग के रास्तों पर चल पाओगे। ज्ञान हमें रोशनी दिखाता है कि इस राह पर चलना है, और परमात्मा की याद हमें उस राह पर चलने की ताकत देती है। बिना ताकत के हम चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी तो कभी ना कभी नफरत के कीटाणु के कारण बीमार थे। जब जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया, तब तब हमने भी तो उससे नफरत की। पहले वो बीमार थे, फिर उनके संपर्क में आकर हम भी तो बीमार हुए। शक्ति घटाई, अब शक्ति बढ़ानी है तो परमात्मा को याद करना होगा। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, देहधारी मनुष्यों की यादों को भुलाकर एक परमात्मा को याद करना, यही अपने ऊपर की गई सबसे बड़ी कृपा है। मन की दुखों की आदत सी हो गई है, बार बार दुख देने वालों को याद करता है, और जो सुखों का सागर परम आत्मा है, उसे याद करना भूल जाता है। कई जन्म हमने कलयुग में लिए हैं, कई जन्मों में दुख देखे हैं, कई बार सुना भगवान को याद करो, लेकिन मन और बुद्धि से भगवान को याद करना तो हमें आता ही नहीं था। मन भगवान के बारे में विचार करे और बुद्धि भगवान के स्वरूप को देखे, इसी को यथार्थ याद करना कहते हैं। कमाल है ना मन की, दुख देने वाले को याद करता है, पर सुख देने वाले, प्यार देने वाला, साथ निभाने वाला परम पिता परमात्मा को याद नहीं करता। मनुष्यों को याद करने से दुख मिलेगा, भगवान को याद करने से सुख मिलेगा। अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना, यही है अपने ऊपर सच्ची कृपा करना। मन हमारा बच्चा है और ये बच्चा कलयुग में रहते रहते बीमार भी हो गया है, कमजोर भी हो गया है, घायल भी हो गया है, इसीलिए शोर करता है। टीवी मोबाइल देकर हम इसका शोर थोड़ी देर के लिए बंद तो करते हैं, लेकिन बेचारे के घाव नहीं भरते। कब से घायल है, हम मरहम नहीं लगाते, कब से बीमार है, परमात्मा ज्ञान की दवाई नहीं खिलाते। कमजोर होकर रोने लगता है तो हम अपने ही मन को चुप नहीं कराते, उसे घंटों घंटों रोने देते हैं। किसी की दुख भरी यादों को याद करना, किसी के बुरे व्यवहार को याद कर दुखी होना, यह भी तो मन का रोना ही है। पुरानी बातों को याद करके जो निगेटिविटी मन में कई सालों से पकड़ रखी है, और उसी से वो खुद को ही घायल कर रहा है। हम उससे वो निगेटिविटी छीन कर सकारात्मकता का खिलौना अपने मन को नहीं देते। औरों ने जो किया सो किया, अपनी अपनी बीमारी के कारण, लेकिन हमने अपने आप को ठीक करने का, खुश रखने का कोई भी उपाय क्यों नहीं सोचा। परमात्मा कहते हैं कलयुग के अंत में सभी के अंदर की बीमारी बढ़ेगी, क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी बनकर उल्टे कर्म करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत के कीटाणु इस दुनिया में बढ़ेंगे, अंत में सब अति में जाकर फिर इस कलयुग का अंत होना है। कलयुग में विकारों के कीटाणुओं का तूफान चारों ओर है। अगर अपने आप को बीमारी नहीं करना है तो ज्ञान का मास्क और परमात्मा याद की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई लेनी पड़ेगी। संसर्गजन्य बीमारी बाहर फैली हुई है तो खुद की केयर करने की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जैसे अगर नॉर्मल दिन होगा तो घर दिन में एक या दो बार साफ किया तो भी चल जाता है, लेकिन अगर धूल मिट्टी का तूफान चल रहा हो तो घर बार बार साफ करना पड़ता है। सतयुग में तूफान ही नहीं था तो वहां केयर करने की जरूरत नहीं थी। द्वापर में एक दो बार साफ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो तूफान बार बार आते हैं। कलयुग में खुद को बार बार साफ करना पड़ता है। क्या पता कौन से बीमारी का जर्म हम अपने साथ ले आते हैं। अपने मन को बार बार साफ करना अर्थात परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान सुनना। जितने बार मन मैला होगा दूसरों के कीटाणुओं का चिंतन करके, उतनी बार ज्ञान सुनकर मन को साफ करना पड़ेगा। परमात्मा के याद की दवाई खिलाकर मन की शक्ति बढ़ाना पड़ेगा ताकि मन बार बार बीमार ना पड़े, बार बार रोए नहीं, बार बार शोर नहीं मचाए। यही है अपने आप पर सच्ची कृपा करना। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं दुख के कीटाणु हमेशा गंदगी में पनपते हैं। जो दिल साफ होगी अर्थात जो दिल सबको क्षमा करेगी, सबको दुआ देगी, सबके प्रति शुभ भावना रखेगी, ऐसे साफ स्वच्छ दिल में दुख के कीटाणु नहीं पनपते। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब हमारा मन साफ होता जाता है। जब हम दुआ देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तब हमारा मन स्वच्छ होता है। जहाँ नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, स्वार्थ होगा, वहाँ दुख के कीटाणु जन्म लेंगे। गंदगी में हम कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह गंदगी है। जब हम इनसे छूटने का प्रयत्न करते हैं तब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि वो शांत रहे, खुश रहे, लेकिन इन विकारों के कीटाणु ने उसके अंतर मन में प्रवेश कर लिया है और ये कीटाणु उसे शांत खुश रहने नहीं देते। जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तब हमारे अंदर के ये कीटाणु मरने लगते हैं और हमारे अंदर के आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों का उदय होता है। ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सुख, पवित्रता, आनंद, शांति का। परमात्मा के याद के बिना हम इन कीटाणुओं से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें ऐसी दुनिया में रहना है जहां विकारों के कीटाणुओं की बीमारी चारों ओर फैली हुई है। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हम भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई तो आएगा ही दुख देने, कटु वचन बोलने, निंदा करने, गुस्सा करने। परमात्मा कहते हैं तुम्हें कलयुग में रहते हुए अपने सुंदर व्यक्तिमत्व की मूर्ति तैयार करनी है। मूर्ति तैयार हो रही है तो छैनी हथौड़े के वार तो होंगे ही, अर्थात बीमार लोगों द्वारा गुस्सा, कटु वचन, निंदा, अपमान मिलेगा ही। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें कलयुग में सब कुछ सहन करना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी सब सहना है, क्योंकि सहनशीलता का फल सतयुग में बहुत ही मीठा मिलता है। सहनशीलता भी हम में तब आएगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। बिना परमात्मा याद के हम छैनी हथौड़े के घाव सह नहीं पाएंगे और टूट के बिखर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें टूटना नहीं है, सहन करना है। कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती और गायन भी नहीं होता। हमें परमात्मा के लिए ऐसी मूर्ति बनना है जो खंडित ना हो। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम रोज ज्ञान सुने और परमात्मा को याद करें तो हम परमात्मा के लायक तो बन ही जाएंगे। पुरुषार्थ तो बहुत बड़ा है खुद को बदलने का, कभी मन में जरूर आएगा कि कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मन को समझाना है। परमात्मा ने रास्ता दिखाया है, इन रास्तों पर चलकर खुद पर खुद ही कृपा करनी है। चलते चलते कभी गिर भी जाएंगे, तब भी खुद को फिर से ऊपर उठाना है और फिर से चलना है। अपयश भी मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि सहन नहीं होता,

किसी के कटु वचन, किसी का गुस्सा, हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अपने मन को समझाना है कि सामने वाला बीमार है, इसलिए तो ऐसा कर रहा है। अगर हम भी रिएक्ट करते रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। अपने मन को खुद ही समझाना पड़ता है। सच्चाई राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इन्हीं राहों पर परमात्मा का असीम प्यार, कृपा और मंजिल मिलती है। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कभी-कभी तो आप हार कर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को रिएक्ट भी कर दोगे, लेकिन फिर वापस अपने आप को ही समझाकर खुद को ही परिवर्तन करने के लिए तैयार करना है। सामने वाला तो नहीं बदलेगा, अब बदलना हमें ही है। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश तो करते रहेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करनी। अगर परवाह करनी है तो पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की करनी है। लोगों को खुश करने की, उनसे अच्छाई का सर्टिफिकेट पाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर ख्याल हो कि जब मैं परमात्मा के सामने जाऊं तब मेरा सर झुका हुआ ना हो। यही है अपने ऊपर की गई सच्ची सच्ची कृपा। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुणे की आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने बहुत कुछ समझा, खुद को समझा और कई बातें ऐसी निकल कर आए जिनके बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं था, हमारा ध्यान ही नहीं गया था या फिर एक बहुत हैरत से हम इस पूरे आस्पेक्ट को देख पा रहे थे। लेकिन जब तर्क की कसौटी पर उसे कसा और साथ ही अनुभव करके देखा तो लगा कि यही रास्ता सही है। पर बात यहीं तक आती है कि ये बात अभी तक हमें क्यों नहीं समझ आ रही थी। और ऐसे में परमात्मा की मुरली, यानी कि हर बार हम आपसे बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर जो महावाक्य कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। आज भी एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हर बार हम ये कहते हैं कि आप तक भी लोगों के बातें आती हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि इतनी कम उम्र में आप बातें कह पाती हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हम सोच भी नहीं पाते। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हुई, जिस तरह से रिलेशनशिप्स को हमने देखा, रोल्स को देखा, रिसोर्सेस, आई थिंक आई कुड नेवर इमेजिन कि मेरी जो संस्कार है, मेरी जो हैबिट्स हैं वो मेरे लिए एक निधि, एक पूंजी बन जाएंगे। मेरे थॉट्स मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, तो ये कैसे संभव है?
1: जैसे कि हम शुरू से ही शेयर करते आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्रोग्राम में हम जो कुछ शेयर कर रहे हैं किसी का पर्सनल नहीं है, ये परमात्मा का डायरेक्ट सुप्रीम फादर इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिवा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, वो निराकार परमात्मा जो भी सृष्टि पर आकर डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान एकदम सिंपल होता है और हिट करता है एट द रूट, जहां ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर ही आए हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, संसार परिवर्तन के लिए, और परमात्मा कहते संसार परिवर्तन होता संस्कार परिवर्तन से। तो संस्कार परिवर्तन के कार्य के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए, तो जो ज्ञान उनसे मिलता है वो डायरेक्ट रूट पर हिट करेगा, और संस्कार परिवर्तन जैसे जैसे एक एक आत्मा का होगा तो संसार परिवर्तन तो अपने आप होगा। तो द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज दैट वी शेयर ऑन दिस प्रोग्राम कम्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम, एंड बीइंग द सुप्रीम टीचर ही गिव्स डीपेस्ट ऑफ नॉलेज इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। और क्योंकि वो आत्मा की अपनी बातें हैं, इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू मी, तो उसको अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता। तो इस सीरीज में जितनी भी हमने बातें की है सेल्फ मैनेजमेंट की, तो कई बार पूछते कि ये कौन सी बुक से पढ़ा है या ये कहाँ से लिया है, तो इसका सोर्स है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो हम रोज सेंटर पर मुरली के रूप में सुनते। तो वो कोई सारा कुछ एक मुरली में नहीं होता, लेकिन अलग अलग रोज रोज जब हम मुरली सुनते तो उसमें से ही ये सारा ज्ञान निकलता, जो फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करते। तो ये जो मुरली है इसका टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य, सेल्फ रूल, सेल्फ सॉवरेनिटी किससे आएगी? रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर। आज बच्चों के स्नेही बाबा, क्योंकि परमात्मा को हम प्यार करते लेकिन परमात्मा भी हमें प्यार करता, तो जो बच्चों के स्नेही है वो बाबा हर एक बच्चे को विशेष दो बातों में चेक कर रहे थे।

0: संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां है, सटल ऑर्गन्स, एंड ये सब जो सेंस ऑर्गन्स है इनको हम कहते हैं स्थूल कर्म इंद्रिया, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा की, मैं आत्मा हूँ, रूलर हूँ, और ये सेंस ऑर्गन्स मेरे कार्यकर्ता हैं। तो ये कार्य करने वाले हैं स्थूल कर्म इंद्रिया, ये स्थूल कर्म इंद्रिया आत्मा के कंट्रोल में चलती है, जब चाहे, जैसे चाहे और जहां चाहे वहां वैसे चला सकते हैं और चलते रहते हैं। आप हाथ से जो कराना चाहो, मुख से, वैसे आजकल ये भी थोड़ा सा अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू द सटल, दिस इज इन माय कंट्रोल। जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो परमात्मा हमें कह रहे हैं कि ये भी आपकी शक्तियां हैं।
1: अच्छा, मतलब इट्स नॉट ओनली कि हम बोलते हैं कि आई द सोल हैज थ्री फैकल्टीज, लेकिन ये जो है ये भी तो हमारे हमारे
0: एब्सोल्युटली जो पिक्चर दिखाते हैं सिंबॉलिक, वो होता है रथ, रथ में पांच वो घोड़े और रथवान, राइट? तो पांच घोड़े क्या है, पांच कर्म इंद्रियों का प्रतीक है। रथ जो है वो रथ है इस शरीर का प्रतीक कि दिस इज द चैरियट, और रथवान कौन है, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा इस पूरे रथ को चलाती हूँ, और इस रथ को चलाने वाले जो पांच घोड़े हैं वो ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। अब नॉर्मली वो जो पिक्चर दिखाते हैं उसमें वो पांच घोड़े
1: भाग रहे होते हैं,
0: विच इज ए साइन के ये पांच कर्म इंद्रियां, जिसको हम कहते हैं चंचल हो गई है, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ये पांच कर्म इंद्रियां स्थूल है, वैसे मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। स्थूल मतलब कॉर्पोरियल, जो दिखाई देता, और सूक्ष्म सटल, जो दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है। स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहे, जैसा चाहे हाथ पांव चला सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, जितना समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है। तो परमात्मा कहते हर एक बच्चे का मैं ये चेक कर रहा हूं। तो इसका मतलब हम जिस समय जो थॉट चाहे, जितनी देर के लिए वो थॉट क्रिएट करना चाहे, जब क्रिएट करना चाहे, इट शुड बी इन
1: माय कंट्रोल, एंड उसको उस थॉट से मैं क्या डिसीजन लूं, दैट शुड बी इन माय कंट्रोल,
0: फिर एक्शन विल कम इन माय कंट्रोल।
1: दैट इज सो वंडरफुल शिवानी, कि बिल्कुल एक टीचर की तरह ही चेक कर रहे हैं परमात्मा भी, या अगर हम देखें तो, कि हम कहां तक पहुंचे, क्या हम ये कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक तब भी फिर उन्होंने देखा कि नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है यही होगा, और उसके बाद he'll tell us the way.
0: Yes. So he first shows us what to change, then he'll show us how to change it. See? तो पहले जैसे कि एक्सरे निकाला जाता, तो पहले एक्सरे निकाला जाएगा कि यहाँ यहाँ ये चोट है, फिर बताया जाएगा इसका इलाज कैसा है। तो यहाँ एक्सरे किसने निकालना है, हमें खुद निकालना है। तो इसलिए बाबा कहते स्टॉप चेक, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कहाँ तक है। अब हर एक अगर हम चेक करें कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिस समय चाहूं, वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, इज दिस माइंड टोटली इन माय कंट्रोल, तो आंसर यही निकलेगा, अभी उतना नहीं। तो इस विशेष तीन शक्तियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल हो, तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। सेल्फ रूल मतलब इन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल शक्तियों को संयम और नियम में चला सकती है। ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है।
1: अच्छा, द मोमेंट आई हैव दिस कंट्रोल इन मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोल हुआ, तो इस पे कंट्रोल करना एक्चुअली
0: क्या? तो जो रिसोर्सेस की हमने बात की, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, शरीर, मन, आत्मा, संस्कार। लेकिन संस्कार कंट्रोल में है तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में है तो स्थूल कर्म इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल। इसलिए हम कहेंगे बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म नहीं करना, यू नो आउटर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए,

0: अंदर हो गया, आउटर अपने आप हो जाएगा। फिर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ऐसा बोलना है या ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा क्या सोचना है। और उसके लिए डीपेस्ट लेवल क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या संस्कार है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है। जिसको स्वयं को चलाने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है। अभी हम कहते हैं औरों को चलाना, औरों से काम करवाना, कहते हैं औरों से काम करवाने के लिए चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। औरों का मैनेजमेंट और रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब करना है सेल्फ मैनेजमेंट। तो जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। हमें बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है, टाइम को, धन को, रिसोर्सेस को हैंडल करना है, लेकिन जो स्वयं को कर सकेगा वो औरों को ऑटोमेटिकली करेगा। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्व के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सब के लिए हैंडलिंग पावर बन जाते हैं।
1: इनफैक्ट इस सीरीज में भी अगर हम देखें, हमने बात की कि सबसे पहला रिश्ता अपने आप से, सबसे पहले जिम्मेदारी जो रिलेशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने प्रति। तो जहाँ अपने को हमने संयम करना या अपने को नियंत्रण करना अगर हमने सीख लिया तो बाकी हमें फिर करने की।
0: एंड नॉर्मली भी आप देखोगे सारा दिन में जहाँ आप अपने थॉट्स में अवेयरनेस आ गई कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, ये सोच से ये एक्शन आता है, जहाँ ये पूरा एक आपने एक्सरे कर लिया एंड यू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो जब आपको अपना सिस्टम समझ में आता है
1: दूसरे का भी आ जाता है एक्चुअली।
0: सो नाउ व्हाट विल हैपन कि व्हेन आई एम विद यू आई विल अंडरस्टैंड यू वेरी वेल
1: एंड यू नो आई विल बी एबल टू मेक इट आउट कि आप जो ये रिएक्ट कर रहे हो या आप ये बोल रहे हो उसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है
0: और आप किस से गुजर रहे हो। कई बार हम देखते हैं कि कोई गुस्सा कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब पहले क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो हमें कहते हैं ये गुस्सा कर रहा है, अब हमें पता चलता है कहीं हर्ट है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है, कौन सा क्या हर्ट हुआ होगा जिस वजह से ये इस तरह से लिया। तो उनकी भी पूरी प्रोसेस समझ में आ जाती है और जब उनकी प्रोसेस भी समझ में आ जाती है तो फिर गुस्सा नहीं आता, उनके साथ एम्पथाइज करना बहुत इजी हो जाता है और खुद स्टेबल है ना। तो जहां अपना स्टेबिलिटी हुआ, अपने को समझ पाए, औरों को समझना बहुत इजी हो जाएगा।
1: इनफैक्ट उसको उनको हम हेल्प कर पाते हैं, उनको सोल्यूशन बता पाते हैं। यू नो सडनली वी आर एबल टू पिन पॉइंट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम एंड दे आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट।
0: सो लाइक वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, जैसे हमें अपने रिएक्शंस का कारण पता नहीं था पहले, वैसे उनको भी नहीं पता है। लेकिन क्योंकि आत्मा तो है ना, सभी का फंक्शनिंग प्रोसेस तो सेम ही है, तो जब अपना समझ में आ गया तो सबका समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर आ गई तो हैंडलिंग पावर आ जाएगी। बाबा का बच्चों से प्यार है। सी गॉड ऑलवेज कीप्स रिमाइंडिंग मी कि गॉड लव्स यू बिकॉज दिस इज वेरी एम्पावरिंग। नाउ आई एम नॉट टू डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। तो बाबा का बच्चों से प्यार है। जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यार लगता है। कोई और हमें कुछ कहे कि आपके अंदर ये नहीं है या ये नहीं है तो हमें शायद थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जो हमें बहुत प्यार करता है उसका कोई इशारा देना इस तरह से, वो हर्ट नहीं करता, गुस्सा नहीं दिलाता, वो इशारा भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता है कि ये जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा। सी जो आज दिन तक हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे बड़ा करें, उनका हित तो वो पेरेंट ही सोचेगा ना, तो परमात्मा से हम ये सीखते कि एक पेरेंट एक बच्चे को कैसे बड़ा करे। आज जब पेरेंट बच्चे को कुछ कहता है तो बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है, क्यों? क्योंकि पेरेंट ने बात तो अच्छी की है, उसके फायदे के लिए की है, लेकिन एनर्जी कौन सी क्रिएट की है? एंगर की या इनसिक्योरिटी की या फियर की या हर्ट की, तो वो एनर्जी पहले पहुंचेगी, वर्ड्स बाद में पहुंचेंगे। तो जब एनर्जी नेगेटिव है तो वो वर्ड्स पसंद नहीं आते। परमात्मा भी पिता है, टीचर है, वो भी हमें बता रहा है रोज कि आपके अंदर ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, आपको ये चेंज। सो इजंट ही आल्सो ट्राइंग टू डिसिप्लिन अस, इजंट ही आल्सो ट्राइंग टू टीच अस व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर मी। लेकिन उनकी कही हुई बात बुरी क्यों नहीं लगती है?
1: क्योंकि एक तो वन, वी हैव दिस कंप्लीट फेथ दैट यू नो ही व्हाट ही इज सेइंग इज राइट।
0: सो वुडंट हैव अ चाइल्ड हैव अ कंप्लीट फेथ इन हिज पेरेंट्स? लुक एट अस एज चिल्ड्रन विद पेरेंट्स, क्या हमें कंप्लीट फेथ नहीं है? लेकिन वो एनर्जी जो मिल रही है ना, उससे वो फेथ कहीं ना कहीं
1: हमें वो लेबल नहीं कर रहे हैं, हम
0: जजमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ही इज द ओशन ऑफ लव, वो प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर मतलब जिसके अंदर नेगेटिविटी का ट्रेस नहीं हो सकता। अब प्यार का सागर अगर ये भी कहे ना कि आप बहुत खराब हो, तो भी वो खराब नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी आई है? प्यार की आई।
1: और उनका अपना स्ट्रेस नहीं है ना, अपनी कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो इनफैक्ट उनकी कोई नेगेटिविटी हम तक नहीं आ रही।
0: तो इससे हमें ये सीखने को मिलता कि अगर हम बच्चों को या किसी को भी कोई शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो प्यार की शक्ति के साथ दी जाएगी तो वो शिक्षा उनको अच्छी लगेगी और उनका करने को वो मन करेगा। लेकिन जब वो दूसरी प्रकार की एनर्जी से दी जाती, देन इट डजंट क्रिएट द रिजल्ट। तो जिससे प्यार होता है उसका कुछ इशारा भी मिलना ये प्यार लगता है। और सदैव दिल में अनुभव होता कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। हमारी जो भावना है, हमारी जो इंटेंशन है, वो उनके प्रति बहुत क्लियर है कि ये जो भी कहेंगे मेरे फायदे के लिए कहेंगे। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। तो बाबा कहता कि जैसे परमात्मा और आप, ये जो रिश्ता है कि वो कुछ भी आपको कहे, आपकी श्रेष्ठ भावना है कि ये मेरे फायदे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है जो हमें प्यार से शिक्षा देता है। तो हमारी भी उनके प्रति, सी वेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ डायरेक्शन एंड क्रिटिसाइजिंग, बात वही होती है लेकिन इंटेंशन पता चल जाती है। या तो इंटेंशन आपको नीचे खींचने की है, या इंटेंशन आपको एम्पावर करने की है। जैसे ही हमने नेगेटिव एनर्जी के साथ दिया, इंटेंशन नीचे करने की है, लेकिन एलिवेटेड एनर्जी के साथ दिया तो इंटेंशन, तो वो वाइब्रेशन हर एक कैच कर सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा है या इट इज द एडल्ट्स, दे कैन मेक आउट कि जो बात कही जा रही है वो कौन सी इंटेंशन के साथ कही जा रही है। वो बात मेरे मेरे फायदे के लिए कही जा रही है, या वो बात मुझे
1: नीचे
0: नीचे दिखाने के लिए, या वो बात सामने वाला अपने आप को
1: ऊपर
0: ऊपर। इंटेंशन सारी पहुंच जाएगी। तो क्योंकि उनके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है, तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। अगर हमारी दिल से श्रेष्ठ भावना होगी तो उसी का रिटर्न उनके दिल से भी वही निकलेगा। जैसे गुंबज में आवाज करते हो तो वही लौट कर वापस आता है। सो हियर इज द लॉ ऑफ एनर्जी, इट इज एन एको, कि जो एनर्जी आप भेजेंगे, जैसे एको किया, वो ही का वही वर्ड आपको सुनाई देगा,
1: पूरा शब्द सुनाई देगा,
0: वही का वही, देयर विल बी नो चेंज। तो जो सुनाई दे रहा है वर्ड, वो नहीं चेंज करना है। अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो जो खुद बोल रहे हो वो चेंज करना है। सिमिलरली जो एनर्जी औरों से मिल रही है, अब कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आई कांट चेंज देम, सो आई जस्ट चेंज
1: माय वर्ड,
0: द एनर्जी दैट आई हैव टू सेंड, क्योंकि इट्स एन एको, तो द एनर्जी व्हिच आई सेंड, द सेम एनर्जी विल कम बैक। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। अगर मुझे आपके चलन में, आपके व्यवहार में, आपके संस्कार में कोई चीज पसंद नहीं आती तो मेरी प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है।
1: वेरी ट्रू, यू नो कि आपका मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी तो आप ही अच्छे नहीं लग रहे हो मुझे।
0: तो जहां वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स की हमने बात की थी कि कोई चीज डिसलाइक करते हैं तो जजमेंटल हो जाते हैं कि आप ही अच्छे नहीं हो, तो फिर प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि जब हम अक्वायर्ड संस्कार को देखते हैं तो किसी के अंदर हमें कोई बात नहीं भी पसंद आती, लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार उसमें परसेंटेज नहीं होती है। सोल कॉन्शियस में परसेंटेज नहीं होगी फिर, बिकॉज मैं आत्मा हूं ही प्रेम स्वरूप, आई एम एन एम्बोडीमेंट ऑफ लव, तो उसमें देयर इज नो परसेंटेज, इट इज जस्ट लव, देयर विल बी नो मिक्स चैरिटी। कैसा भी संस्कार हो, कैसे भी चलन हो, लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियस है तो आपके एनर्जी कौन सी जाएगी?
1: यस, यू नो, लाइक आपका कोई भी बिहेवियर, वही बात है कि बिहेवियर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट लाइक दिस थिंग, या आपका कोई लिबास या आपके कोई भी कोई नेचर या आपका किसी से बात जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ही पसंद नहीं है।
0: लेकिन इसी को वन स्टेप और आगे लेंगे, आपके अंदर कोई ना कोई सपोज स्वभाव संस्कार है जो नहीं ठीक है या नहीं अच्छा है, लेकिन इफ आई एम सोल कॉन्शियस तो सोल कॉन्शियस के ऊपर इस चीज का कोई भी प्रभाव, हाँ जिस टाइम मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, मैं अपने ईगो में हूँ, तो उस समय आपका स्वभाव संस्कार मुझ पर इफेक्ट डालेगा।
1: ओके, तो अगर आप क्रोध में भी हैं और मेरा कॉन्शियसनेस जो है वो आत्मा का है तो मुझे कोई
0: क्योंकि हमने देखा रिलेशनशिप्स में कि रिलेशनशिप स्टार्ट कहाँ होता है, यहाँ आई क्रिएट एन इमेज ऑफ यू इन माई कॉन्शियसनेस, एंड वो जो इमेज मैं आपकी अपनी कॉन्शियसनेस में बनाती हूँ इट इज बेस्ड ऑन माई ओन कॉन्शियसनेस, माई ओन बिलीफ। तो जब आई एम एन ईगो बॉडी कॉन्शियस तो मैं आपकी भी कमजोरियां देखूंगी और उसी तरह की इमेज बनाऊंगी, बट वेन आई एम सोल कॉन्शियस तो मैं आपकी क्या इमेज बनाऊंगी? अगर मुझे ये स्मृति है कि आई एम अ लवफुल बींग तो मुझे आप भी कैसे दिखाई देंगे, अनदर लवफुल बींग, तो उसमें फिर आपके संस्कार स्वभाव वो दिखाई नहीं देते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मा अभिमानी होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे तो प्यार में परसेंटेज नहीं होगी, आई विल सी यू ओनली एज अ प्योर बींग। किसी भी आत्मा की कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती तो प्यार में अंतर आ जाता है। तो परमात्मा कहते जैसे हर एक में 36 गुण होते हैं, तो कहा अगर 35 अवगुण भी हैं तो भी हर एक के अंदर एक गुण तो जरूर है, तो हर एक को किसको देखो, उस एक गुण को देखो। तो जो हमने बात की थी कि गुण को देखकर यहाँ पिक्चर बनाने हैं,
1: और हमारी परसेप्शन जो है आपके प्रति वो आपके गुणों या अवगुणों पर डिपेंड करने लगती है।
0: तो अभी तक हम जो पिक्चर बना रहे थे वो आपके अवगुणों को देखकर बना रहे थे, नाउ आई एम गोइंग टू रीप्रोग्राम, तो रीप्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, अब आपके गुण को देखेंगे और गुण को देखकर अपने कॉन्शियसनेस में आपकी पिक्चर बनाएंगे तो व्यवहार ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि अगर 35 अवगुण भी हैं तो भी एक गुण तो जरूर है और उस एक गुण को देखकर उसको बनाना है। परमात्मा कहते कि जब हम औरों के साथ कार्य व्यवहार में आते तो ये संकल्प नहीं करना है, जैसे किसी का मुझे स्वभाव संस्कार नहीं पसंद आया तो आई विल से हम इसके साथ नहीं चल सकते, इसके साथ हमारे से काम नहीं होगा, इनके स्थान पर हम रहेंगे तो हमारी अपनी प्रोग्रेस नहीं होगी, हमें दूसरे स्थान पर जाना है, मतलब किनारा करने की बातें। तो कोई रिलेशनशिप में अगर वर्क नहीं हो रहा तो हम विड्रॉ करने की बात करते। तो परमात्मा कहते अगर एक बार आपने ये आदत अपने आप में डाली तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ये आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी। तो डोंट विड्रॉ फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप, पुट इन योर बेस्ट टू मेक इट वर्क, इट विल वर्क, बिकॉज चेंज अब कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। सो कीप ऑन चेंजिंग ऑन योरसेल्फ, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगा। अब जब हम विड्रॉ कर लेते हैं हर छोटी छोटी बात के लिए, अगर हम किनारा कर लेंगे तो हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट में आऊ तब तो मैं अपने ऊपर कुछ काम करूं,
1: वो चैलेंज होगा मेरे लिए।
0: सो इट्स बेसिकली मैच खेलने से पहले ही
1: हार मान
0: विड्रॉ कर लिया। तो ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहीं टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र नहीं रहने देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ जाएगी, ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो,
1: खुद से खुद के ऊपर जो काम करते हो एक्सपेक्टेशंस रखो।
0: यस, औरों से तो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखे हैं, लेकिन अब खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो और खुद को मोटिवेट करते रहो, जी मोटिवेट नहीं होना है। तो परमात्मा ने बहुत एम्पावरिंग बातें जैसे हमें बताई, तो बाबा ने कहा कि रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हमें अपनी अपनी चेक करनी है कि ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, इनको हम जब चाहें जहां चाहें वहां चला सकते हैं, एंड अगर ये सकल ऑर्गन्स मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में रहेंगे तो ये फिजिकल सेंस ऑर्गन्स ये भी कंट्रोल में रहेंगे, और खुद संयम में चलेंगे तो और लोगों को भी हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा, और अपनी शुभ भावना की दृष्टि होगी तो रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओम शांति।
1: ओम शांति शिवानी। जिस तरह से जो बातें हमने आज इस मुरली में सुनी, कहीं ना कहीं जिस श्रृंखला से हम गुजरे हैं उसमें सामने क्लियर एक एक बात ऐसे लगता है कि परमात्मा स्वयं जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर जिस तरह से स्वयं आकर रोज इस तरह से अपने महावाक्यों से हमें प्रेरित करते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने मुरली के माध्यम से वो महावाक्य लोगों तक पहुंचाए। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: जहां हमने अभी तक सेल्फ मैनेजमेंट की बात की है, जब ये पता चलता है कि परमात्मा के महावाक्य ही इस तरह से हमें आके प्रेरित कर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं, तो फिर उस श्रृंखला को जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई है, इम्प्लीमेंट करने में मैं एक बार भी नहीं हिचकूंगी, सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ने स्वयं आकर दिया हुआ ज्ञान है, और जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें अनुभव नहीं होगा, वो अनुभव जो मेरे जीवन को बदल सकता है, उस अनुभव को जरूर करने का प्रयास करें, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई बात आपके मन में उठती है, कोई सवाल है, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अभी इतनी विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें अभी बहुत सी बातें हमने करनी है, जो हमने श्रृंखला समझी है उसे एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जीवन की वो सिचुएशंस जो आपसे ही हम तक पहुंच रही हैं उनको लेते हुए कैसे सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला की जो सीख है हमारे पास उसे इम्प्लीमेंट करना है, आने वाली कड़ियों में जानेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम। ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी के पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अहो ऐकलत का हो आमचा रेडिओ पुणेरी
1: पुणेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। जीवन एक उत्सव है, हर पल को हमें खुशी से जीना चाहिए। जिंदगी का हर पल हर लम्हा इम्पोर्टेंट होता है। ये सब बातें हम हर रोज सुनते हैं और उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। कई बार तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ होते हुए भी कई बार हम अकेले हो जाते हैं और तब लगता है कि डिप्रेशन में है। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं? वो एम्प्टीनेस की फीलिंग, वो हॉलोनेस क्यों होती है? इसी विषय पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कई कड़ियों में हमने जानने की कोशिश की है। आज एक बार फिर डिप्रेशन के कॉजेज जानने की कोशिश करते हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। और आपको बता दें कि डॉक्टर गिरीश पटेल आज हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि लगभग 40 देशों में 5,000 से भी ज्यादा लेक्चर्स दे चुके हैं। डॉक्टर पटेल, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। आज डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो हमने अभी शुरू में ही कही है कि हम ये तो जान चुके हैं कि डिप्रेशन है, हम में से हर एक को ये फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, एम्प्टीनेस है। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम वजह तक पहुंच जाएं तो शायद उसे दूर कर पाएंगे।
2: मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है डिप्रेशन का, तो पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति भले माइल्ड प्रॉब्लम आए, मेजर प्रॉब्लम आए, किसी न किसी को दोष देता है। हमने एक छोटी सी स्टडी की थी जब मैं नायर हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, कहीं जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आने वाले पेशेंट्स थे, उन सबको पूछा कि भी आपको ये जो बीमारी हुई है उसका कारण क्या है। सिंपल एक ही क्वेश्चन था सिर्फ, तो हमने देखा कि 81% लोगों ने यह कहा कि भी मेरी ये मानसिक बीमारी का कारण और कोई है।
0: उसकी वजह से हुआ है, उसने ऐसा किया, ये घटना हो गई थी तब मुझे हुआ।
2: जैसे नहीं कि भी एक यंग लेडी को डिप्रेशन था, उसको पूछा कि भी आपके डिप्रेशन का कारण क्या है, तो उसने तुरंत कहा मेरा डिप्रेशन, मेरी सास ही उसका कारण।
0: तो डॉक्टर पटेल, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरे डिप्रेशन का कारण बाहर नहीं है। आपकी पूरी बातचीत से हमें ये साफ तो हो गया कि बाहर नहीं है, कहीं अंदर है। कहाँ तलाश है वो अंदर, क्या है वो कारण?
2: मतलब मेन चीज है आपके थॉट्स। कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई डिप्रेशन वह बीमारी है या कॉज है। तो मैं समझता हूँ वास्तव में वो कॉज नहीं है किसी का, कॉज इज योर थॉट्स। मूल विचारों को परिवर्तन करना होगा तो तब डिप्रेशन भी खत्म होगा। और कहीं हमारे रिएक्शंस भी ऐसे होते हैं, नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, नॉट सो इजी, लेकिन जो हमारे नेगेटिव रिएक्शंस है वो अल्टीमेटली डिप्रेशन क्रिएट करते हैं।
0: तो हमने जो वो तीन तरह के डिप्रेशंस की बात की थी पीछे, तो उन सबको हम थॉट को चेंज करके उन, और सबसे बड़ी बात, उन सबका कारण भी थॉट हो सकता है, उनका भी डिप्रेशन का।
2: जैसे मेजर तो हमने सोचा था रिएक्टिव डिप्रेशन, जो रिएक्टिव डिप्रेशन 100% योर थॉट्स जो है वही कारण है। दूसरा जो एंडोजिनस डिप्रेशन, एंडोजिनस डिप्रेशन में कहेंगे कि भी विचार शायद सबसे मूल कारण नहीं, लेकिन फिर भी विचार कारण है। क्योंकि हो सकता है कि मेरे फादर को डिप्रेशन था तो मेरे में भी वह जीन्स है, और वह जीन्स होने के कारण मेरे में वो केमिकल इम्बेलेंस कोई ना कोई एक लेवल पर होगा। लेकिन तब भी अगर मैं टोटली पॉजिटिव हूं, मैं मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो वह केमिकल्स को डिस्टर्ब होने से मैं बच जाऊंगा। तो वहां भी वह एक थॉट ही अल्टीमेटली तो रीजन है। साइकोटिक डिप्रेशन भी कहे, वहां भी थॉट है, लेकिन वह क्या है, परवर्टेड थॉट्स हो गए,
0: तो वो भी हम उसको भी कन्वर्ट
2: अल्टीमेटली। हाँ, वो मुश्किल जरूर है,
0: मगर
2: मोस्ट डिफिकल्ट, करना इजी नहीं है, परंतु उसका जो रूट कॉज कहेंगे वह थॉट्स ही है।
0: सिस्टर शिवानी, हम थॉट्स के ऊपर इतनी बार बात कर चुके हैं, थॉट लीड्स टू डेस्टिनी, ये एक पूरी हम साइकिल से गुजर चुके हैं कि किस तरह से हमारा थॉट जो है वो कन्वर्ट होता हुआ डेस्टिनी हमारी क्रिएट कर सकता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिप्रेशन का मेजर रूट कॉज सामने जो आता है वो है नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ना हम कर चुके हैं उस जर्नी के थ्रू, लेकिन बार बार, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। मैंने अपनी जिंदगी में अब देखा इतने दिनों में भी कि पहला थॉट जो आता है वो नेगेटिव ही आता है, कुछ भी कर ले हम, मतलब बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, फर्स्ट थॉट विच विल कम टू आवर माइंड is negative. Only thing which I think the change which has come in me, I feel, I'm saying, हो सकता है हमारी audience में भी आया हो, कि I've started registering it कि मेरा thought negative आया है.
1: That's because of the awareness.
0: Yes.
1: पहले awareness नहीं थी, ये negative है, ये positive है. You know, awareness ही नहीं है. जैसे colors बहुत सारे हैं, लेकिन एक बच्चे को पता ही नहीं है ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये रेड है. जब सिखाया जाता है तब वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना, दिस इज डिफरेंट. सो देन ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दैट बेटर. लेकिन नहीं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, यू नो, एवरीथिंग इज द सेम. तो अब हम अपने थॉट्स की अवेयरनेस में आ गए, ये नेगेटिव है, ये वेस्ट है, इसका फायदा नहीं है, रिजेक्टेड. दिस इज अ गुड थॉट, दिस इज एन एलिवेटेड थॉट.
0: लेकिन एक बात है, क्या थॉट में हम प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट पे जा सकते हैं? बीच में कई बार ग्रे होते हैं,
1: बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं.
0: हाउ टू डिफरेंशिएट,
1: इट विल नेवर बी परफेक्ट 100 या परफेक्ट 0, यू नो.
0: सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मेरा ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ग्रे में क्या है, तो तब मैं सही और गलत के थॉट पे कैसे आऊंगे?
1: मोस्टली तो ये भी हो सकता है कि हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं लेकिन हम फील करते हैं वो राइट है,
0: पॉजिटिव है,
1: वो राइट है, एटलीस्ट वो राइट है. बिकॉज हम मोस्टली अभी तक अपने थॉट्स की या अपने व्यवहार की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से दे पाते हैं. वी आर वेरी गुड लॉयर्स अपने लिए एंड वेरी गुड जज फॉर द अदर पर्सन. अपने लॉयर में हम सब बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी हर थॉट और हमारी हर बात के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है. चाहे सारी दुनिया समझा दे कि वो गलत है, तो उस टाइम हम अपने आप को ही नहीं रियलाइज कर पाएंगे कि ये नेगेटिव है, ये हार्मफुल है. तो उसके लिए शायद थोड़ा साइलेंस में अगर हम बैठ के चेक करते हैं कि वेदर यू नो दिस इज गिविंग मी कम्फर्ट, ये मुझे फील कैसा कराती है, बिकॉज थॉट के बाद फॉलोड विद फीलिंग, जो हमने साइकिल भी देखा कि थॉट के बाद फीलिंग, फीलिंग के बाद एटीट्यूड, फिर वो एक्शन में आ रहा है. तो अगर थॉट लेवल पे नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे कि क्या ये राइट थॉट है या नहीं, तो उसको एटीट्यूड या एक्शन तक लेकर जाइए, या फिर उसको पर्सनालिटी तक, डेस्टिनी तक भी लेकर जा सकते हैं. सपोज आई से कि नहीं, आपने किया ही गलत है, तो मुझे आपके लिए इस तरह सोचना, ये मेरे लिए सही है, आप है ही गलत, आई एम जस्टिफाइड. फिर उसको मैं आगे ले जाऊं कि आपके बारे में ऐसा सोचते सोचते धीरे धीरे मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा होता जा रहा है, शुड आई कॉल दिस पॉजिटिव. अच्छा, उसको भी अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया, मेरी पर्सनालिटी कैसी बनती जा रही है कि मैं बार बार आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, और वो एंगर फिर सिर्फ आप तक नहीं सीमित रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी मैं अपने अंदर जेनरेट कर रही हूँ, आई कैन नॉट गिव दैट ओनली टू यू, सो आई विल टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर पीपल दैट आई गो. फिर उसके बाद जो एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ, वो एनर्जी वापस मुझ पर आ रही है, तो मेरी डेस्टिनी धीरे धीरे क्या बनती जा रही है, मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, गुड विशेस मिल रही है, या ऑपोजिट उसका, तो मेरे रिलेशनशिप्स बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा. इफ आई देन गो थ्रू द चेन, देन आई अंडरस्टैंड दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ रॉन्ग थॉट,
0: व्हिच आई थॉट
1: वॉज राइट. तो देन एटलीस्ट, या तो फिर उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करें, यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी लाइक दिस, तो ठीक है. अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपकी यू नो जीवन में चिड़चिड़ापन, तनाव, एंग्जाइटी, गुस्सा ये भरा रहे, क्योंकि मैं जो नो काफी लोगों को आज ये कड़वाहट भी अच्छी लगती
0: है, आदत हो जाती है,
1: हाँ, दे आर यूज्ड टू इट, सो दे आर लाइकिंग इट. बट ये प्रोग्राम हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, सो चाहिए कुछ और, उसके लिए कर कुछ और रहे, इट विल नॉट हैपन.
0: इनफैक्ट अपने आप को खुद को बार बार ये याद दिलाना है कि तुझे क्या चाहिए, बिल्कुल क्या चाहिए एक्चुअली. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस,
1: तो फिर जो फल चाहिए उसी का बीज बोना शुरू कीजिए. बीज कोई और बोए और फिर कहे फल कोई और चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल,
0: वी डोंट गेट इट. इनफैक्ट डॉक्टर पटेल, हम फिर कॉजेस पर आते हैं. एक बात, सबसे बड़ी बात ये कि थॉट्स हमारे जनरेट करते हैं, जिस भी डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, और थॉट को चेंज करना, अगेन ग्रे में रहते हैं, ग्रे होते हैं थॉट. कई बार हम नेगेटिव थॉट है वो हम मान ही नहीं पाते कि नेगेटिव है, सो देन दिस होल जर्नी वी टेक एंड देन वी रियलाइज कि ओहो दिस थॉट वाज रॉन्ग एक्चुअली व्हाट पीपल हैव बीन आल्सो सेइंग. अब बात यहाँ आती है कि क्या इतना आसान है हर कदम पे अपने उस नेगेटिव थॉट को जान पाना और उससे अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाना?
2: एक तो अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करने लगे, जिसको अवेयरनेस की बात शिवानी बेन ने कही, ऐसे सिंपल भाषा में, अवेयरनेस कईयों को मुश्किल लगता है, उसको सरल भाषा में हम कहेंगे कि वी स्टार्ट वॉचिंग योरसेल्फ. एक जो सरल चीज है वह है कि अपनी फीलिंग्स को वॉच करना, कि मेरे दिमाग में क्या फील हो रहा है उसको वॉच करो, इन आंखों में क्या फील हो रहा है उसको वॉच करो, मुंह में क्या हो रहा है. हाँ, कई बार जब टेंशन में आते हैं ना, स्पेशल फीलिंग होती, यू मे बी टाइटनिंग योर जॉज और समथिंग एल्स, शोल्डर्स में यू मे बी नो लिफ्टिंग योर शोल्डर्स, थाइस को भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पेट में क्या फीलिंग हो रही है. नहीं, अगर उसको वॉच करना भी हम प्रारंभ कर देना, देन यू विल कैच. नेगेटिव थॉट जब इमर्ज हो रहा है उससे पहले ही आपको पता चल जाए,
0: आपकी बॉडी पर रिएक्ट करने लगती है उसी तरह से. बिल्कुल,
2: आई हैव सीन सम टाइम, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, लेकिन कभी ऐसी अगर माइनर भी डिप्रेसिव फीलिंग आने लगी तो देन आई हैव रियलाइज व्हाट हैपेंस. मे बी स्टार्टिंग इवन 0.1% स्टार्ट होना अब मुझे पता चल जाता है, एंड देन नो आई बिकम अलर्ट, लेट मी वर्क विथ माई सेल्फ. तो वो जब बडिंग स्टेज में है तभी उसे दूर कर दो तो सदा के लिए मुक्ति मिलेगी.
0: डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं यूजुअली तो हम लोनली हो जाते हैं, ये एम्प्टीनेस, हॉलोनेस की फीलिंग जो होती है, लेकिन कई बार हम सैड होते हैं, यू नो, दुख ही हो रहे होते हैं. कुछ कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए, कोई कुछ और ऐसी बात हो जाए जो हमें दुखी कर जाती है. सो इज इट लाइक कि जब हम सैड है मतलब कि हम डिप्रेस्ड हैं? क्योंकि जब भी हम देखते हैं लोगों को वो दुखी से लगते हैं, हम तो हमें बोलते हैं कि आप डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड क्यों है? तो जैसे नहीं नहीं हम डिप्रेस नहीं, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा दुख हो गया है. सो हाउ टू डिफरेंशिएट, क्या दुख और डिप्रेशन इकट्ठा है या सैडनेस एंड डिप्रेशन इज लाइक सेपरेट एंटिटी?
2: नो, इट इज सेपरेट. कनुप्रिया जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, इवन इट शुड बिकम क्वाइट क्लियर. अगर ये क्लियर हो तो सैडनेस तो जीवन में आनी है थोड़े समय के लिए, डिप्रेशन वो लंबा चलता है. एक जो बात है, दूसरी है कि सैडनेस वो एक्टिव स्टेट है, जो डिप्रेशन है वो पैसिव है. नहीं, जो चीज एक्टिव है ना उससे आप बाहर निकल सकते हैं, जो पैसिव है उससे बाहर निकलना मुश्किल है. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सैडनेस में भी आप खुश रह सकते, यू नो, यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. आप कहीं देखेंगे कोई व्यक्ति रो भी रहा है फिर जोर से हंसने भी लगेगा कुछ होगा तो ही इज नॉट डिप्रेस्ड, ही इज ओनली सैड. अगर डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो हंस नहीं पाएगा, कितना भी उसको कोई अच्छा सीरियल दिखा दो, कुछ जोक्स कट करो, वो थोड़ा उसके चेहरे पर उन्हें मतलब वो हंस नहीं पाएगा वास्तव में. इवन कई बार तो रो भी नहीं पाता है. डिप्रेस्ड व्यक्ति आप देखेंगे तो वो रो नहीं पाएगा. जब सैडनेस है तो आप रो लेंगे एंड देन आफ्टर क्राइंग यू फील बेटर.
0: दिस इज अ कैथारसिस व्हिच हैपेंस, निकल जाता है, निकल जाता है ना, कहते हैं कि रो के निकल गया.
2: डिप्रेशन में वो कैथारसिस कई बार है वो मुश्किल हो सकता है. तो ये कुछ एक वास्तव में डिफरेंसेस है बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन
0: एक्चुअली. लेकिन एक बात ये बताइए सचिवानी कि सैडनेस इज नेचुरल,
1: हैप्पीनेस इज नेचुरल.
0: तो व्हाट आई एम सी अगेन, सैडनेस लाइक इज डिफरेंट फ्रॉम डिप्रेशन, बट सैडनेस भी जो है क्या लीड कर सकती है?
1: हैप्पीनेस इज 98 व्हाटएवर ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर. सैडनेस शायद थोड़ा सा बुखार बढ़ जाए, 101 तक आ जाए तो वो सैडनेस, और डिप्रेशन इज प्रोबेबली व्हेन इट गोज बियॉन्ड 105, 106.
2: हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि नो, व्हाट इज सैडनेस एंड डिप्रेशन, कि भी सैडनेस आपने करना नेचुरल है, वो ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे तो ठीक है, बट इफ इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन, सदैव आपका जीवन साथी अगर बन गया तो देट इज देन इट्स डिप्रेशन.
1: लेकिन उसकी एक आदत सी पड़ जाती है ना. Yes. क्योंकि उसको एक्सेप्ट, क्यों हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसको नेचुरल कहे, क्योंकि उसको नेचुरल कहते हैं तो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. कि कभी कभी तो उदासी ठीक है, कभी कभी तो ठीक है, फिर वो कभी कभी जो परसेंटेज है वो धीरे, जैसे हम कहते हैं कभी कभी गुस्सा ठीक है, तो वी आर गिविंग आवर सेल्फ द मार्जिन. इट्स लाइक सेइंग कभी कभी बीमार होना ठीक है, अपना क्या इतना क्या ध्यान रखना. तो फिर वो अब हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमेशा ठीक रहे. हमेशा ठीक रखने का जब ध्यान रखते हैं तब जाकर कभी कभी बीमार पड़ते हैं, यू नो. लेकिन अगर हम अपने आप को ये लॉजिक देना शुरू कर दें कि कभी कभी बीमार रहना ठीक है, कोई बात नहीं, चलते चलते कहीं भी पानी पी लो, थोड़ा सा ही तो बीमार पड़ेंगे, देन द फ्रीक्वेंसी कि हम जितनी बार बीमार पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.
0: बिल्कुल.
1: इसलिए जो अपने लिए वो रखना पड़ेगा टारगेट, वो है कभी गुस्सा नहीं करना. फिर जाकर होगा कि कभी कभी गुस्सा आएगा. लेकिन अगर वो रखा कि कभी कभी गुस्सा अलाउड है तो बार बार, तो बहुत बार आएगा.
2: व्हाट शी इज सेइंग इज कि आप योग का अभ्यास करो ताकि वो सैडनेस भी ना आए. And that has to be the goal.
0: And that is a higher state which we have talked, you know, ki har lamha zindagi jeene ki hum baat jo karte hain ki zindagi ek utsav hai jise humme manate rehna hai, wo kahin na kahin usi state pe jaakar pahunch sakta hai. Dr. Saab, anger पे छोड़ा, एंगर की बात की, तो देखा कई बार ये भी गया है कि गुस्सा पी जाते हैं लोग, इंटरनलाइज हो जाता है अंदर, वो फिर कचर पचर बहुत अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर करता जाता है. तो दो ओपिनियंस ये हैं, वन ऑफ कोर्स द आइडियल इज लाइक आपको एंगर करना ही नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि गुस्सा कर दो, वेंट आउट कर दो, कम से कम अपने अंदर मत रखो, क्योंकि वो डिप्रेस करेगा आपको, अंदर अंदर अंदर अंदर काट देगा. हाउ इम्पॉर्टेंट इज कि आपको आउटलेट देना है अपने एंगर को भी, या जो भी एनर्जी किसी भी रूप में जनरेट हुई है.
2: आउटलेट देना है वो ठीक है, बट हाउ यू गिव आउटलेट इज इम्पॉर्टेंट. एक जैन गुरु ने बहुत अच्छा कहा है, उन्होंने कहा है कि बे गुस्से को दबाओ नहीं, ये तो ठीक है, उसको गुस्से को दबाना नहीं है, है ना, तो और उसको गुस्से में भी ना रखो, नो डोंट एक्सप्रेस इट एज एंगर, बट डू समथिंग डिफरेंट. और जो क्या डिफरेंट कहे तो एसर्टिव योर फीलिंग. एसर्टिवनेस में स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, एंगर में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती. इफ आई कॉम्प्लीमेंट यू, आप एक दिन में भूल जाएंगे, बट इफ आई क्रिटिसाइज यू, यू विल रिमेम्बर इट थ्रू आउट योर लाइफ. तो इसके कारण गुस्सा नहीं करना है. और जो डिप्रेशन का इससे संबंध है, क्रोध का भी डिप्रेशन से, सेगमंड फ्रॉइड वाज सपोज्ड टू बी द फाउंडिंग फादर ऑफ साइकोएनालिसिस, जिसने कहा है कि व्हाट इज डिप्रेशन, डिप्रेशन इज एंगर टर्न इनवर्ड, अपने आप पे गुस्सा करते हैं.

0: हम ये भी ले लेना चाहते हैं, वो भी लेना चाहते हैं, वो भी, दैट ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन मे बी, यू नो, सम टाइम्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट देयर.
1: लिटिल डीपर, इट्स अ वंडरफुल थिंग, नो, इट्स अ डीपर थिंग. ऐसे तो ये लगता है कि उससे क्या होगा, कि भी मुझे ये भी चाहिए, भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वेन इट इज लाइक नो मच मोर, या तो इट्स बियॉन्ड समथिंग विच इज रीजनेबल. तो क्या होता है जब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो एक अपोजिट एनर्जी क्रिएट करती है, नो, इट इज अपोजिट एंड ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. और ये जो उससे अपोजिट एनर्जी है ना, वो आपको डिप्रेस्ड करेगी. यू विल लूज योर एनर्जी, अंदर में भी खोखलापन आएगा, नहीं कुछ चला गया मेरे में से. और वह जो बात है वो डिप्रेशन भी लीड कर सकती है. और इसीलिए जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं ना, दे डोंट फील सो मच डिप्रेस्ड, क्योंकि उसमें जो लोभ की वृत्ति है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो वृत्ति कम होती है, तो उनमें डिप्रेशन भी कम पाया गया.
0: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात अगर हम करते हैं तो ऑफकोर्स टू टेक थिंग्स, यू नो, ये जो लोभ की हम बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इनहेरेंट ओपनली अगर नहीं भी है तो इनहेरेंट तो है ही आज के वक्त में, कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. ये नहीं कि किसी और से छीन के अपने लिए ही काम में करता जाऊंगा, लेकिन वहां वो जो कहा कि जब हमारी इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो एक ऑपोजिट एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं वो आने नहीं देती है उसको, वो रियलाइजेशन कैसे हर.
2: जहां चाहिए की भी बात हुई, इट्स लोभ नॉट ओनली कि मुझे स्थूल चीजें चाहिए, यू नो, धन चाहिए, पोजिशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मान शान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए,
0: प्यार तो बहुत,
2: मुझे ट्रस्ट चाहिए, इवन ये सारी जो चीजें हैं ये भी सारा दिन चाहिए. ज्यादा डिप्रेशन शायद इन वजह से हो जाता होगा कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए. दैट इज वेयर दैट फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, निग्लेक्ट, वो सारी चीजें आती हैं, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि मेरे पास ये नहीं है, अब मुझे जब मिलेगा तो देन आई विल फील कम्प्लीट. एंड ह्यूमन नेचर इज यू ऑलवेज वॉन्ट टू फील कम्प्लीट, बिकॉज वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देता है. जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं, तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं. अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है. जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए. तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो, यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी. नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, एंड इट विल नेवर गेट फिल्ड. एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मेरी खुशी को वो गायब हो गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है. जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
0: एंड इनफैक्ट नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट मेरा इतना ज्यादा भरा हुआ है, तो मैं फिर देने को भी तैयार हूं.
2: वो अपने आप जाएगा, वो अपने आप जाएगा. जो आप किसी फंडन, जैसे उन्होंने कहा कि डिप्रेशन इज एंगर टर्नड इनवर्ड्स, जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं. लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो क्योंकि जो चीज आप किसी को दे रहे हैं, मैं सोचूं कि आपने गलत किया तो आई एम जस्टिफाइड इन गेटिंग एंग्री विद यू, बट आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट हियर. तो द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव. आपको भी गुस्सा देने के लिए पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, फिर वो आपके पास जाता है.
0: इट शोज ना फिजिकली आल्सो, हम आंखें लाल हो जाती हैं.
2: तो सबसे पहला डैमेज तो मेरा है. सो इट्स फॉरगेट व्हाट आई वांट टू गिव टू पीपल, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कि मुझे अपने आप को क्या देना है, नहीं मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर कि सबसे पहले आप अपने आप को कर रहे हैं. तो अगर आप अपने आप को गुस्सा करना चाहते हैं फिर औरों को गुस्सा करना शुरू कीजिए.
0: अल्टीमेटली बात वही आती है सिस्टर शिवानी, कि एंगर अगर मैं किसी पे कर रही हूँ, जैसे मैं जस्टिफाई भी कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझसे ही होता हुआ गुजर रहा है। तो ये बात, ये एहसास इसीलिए याद रखना है। डॉक्टर साहब, एक बात और चलते चलते आज इस कड़ी में ये जानना चाहिए।

0: कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब बच्चा होता है, तब वो एक प्योर सोल जो हम जिसे हम तलाश रहे हैं खुद, वो है। धीरे धीरे जिंदगी में पहुंचते पहुंचते जिस भी जितना बड़ा होता जाता है, ये सेंसिटिविटी आने लगती है, यू नो, लाइक एहसास कि मेरे को इसने ये किया, हर्ट होने का सारा, ये कितना सेंसिटिव है, क्या ये बच्चे को तो नहीं पता होता ना? तो ये कैसे, कहाँ तक पूरा हमारा जो जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, पूरा एटमोसफेयर जो है, समाज है, वो वहां तक पहुंचा देता है?
1: बड़ा अच्छा आपने बताया ये। मैं हमेशा कहता हूँ ये कि भी डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चा बड़ा क्यूट है लेकिन डिप्रेस्ड होने वाला है ना, तो उसके चेहरे पे नहीं लिखा था तब, वो आगे चल के हुआ। और क्यों हुआ, आप ये पूछ रहे, बहुत अच्छी बात है। कई इसके फैक्टर्स है। एक तो है पेरेंटल टीचिंग ना, बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंटल टीचिंग है, और वो भी पहले 2-3 साल में, जन्म से 2-3 साल में माता पिता का जैसा व्यवहार है, जो बातें पेरेंट्स उसको सिखाते हैं ना, दैट एक्चुअली गवर्न्स द होल लाइफ। और टीचर्स की टीचिंग्स भी हो सकती है ना, और सारा एनवायरमेंट उसको क्या मैसेज देता है, उससे वह एटीट्यूड जनरेट होती है। और एक बहुत बड़ी बात है कि जिसको साइकोलॉजी में भी अब तक हम समझ नहीं पाए हैं क्योंकि उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया, वह है कि वह बच्चा अपने संस्कार भी लेकर के आया है।
0: जो जो चल रहा है इतने टाइप से.
1: नहीं, या तो जिसको कहेंगे कि भी आत्मा में ही संस्कार है। इसका एक सरल सा उदाहरण मैं कहीं बार, मेरे एक बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर है, वो फ्रेंड है, तो उनका एक बेटा है और बेटी है, तो उनकी वाइफ कहीं बार ये बताती है कि देखो हमने तो एक जैसी बात बताई है, हमारे में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा लोभी है ना, एक एक्सट्रीम नो, इज नेगेटिव लोभी है, और बेटी जो वो एकदम जनरस है, एकदम पॉजिटिव है, हाँ शी इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। तो कहते ये क्यों हो रहा है, तो उनको मैंने यही समझाया कि जो फर्क है, ये दोनों अलग अलग आत्माएं अपने संस्कार लेकर के आपके घर में आई है।
0: लेकिन अगेन पॉजिटिव थॉट्स कैन चेंज दैट
1: इट
0: ऑल्सो, बिकॉज
1: कैन,
0: पॉजिटिव थॉट्स अगेन लीड्स टू आर पॉजिटिव डेस्टिनी. हम यही बात करते आ रहे हैं. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. थैंक यू सो मच. आपको भी बता दें कि हो सकता है आपके पास भी कोई सवाल हो. एक और बात आपको बता देते हैं कि अपनी अगली कड़ी में हम विक्टिम्स के बारे में बात करेंगे, कि किसी भी हादसे के जब विक्टिम्स हो जाते हैं तो जो डिप्रेशन तब सेट इन होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे हाथ में वो सिचुएशन नहीं होती है, तब कैसे उस डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है, अगली कड़ी पर उस पर ज्यादा हम बातचीत करेंगे. लेकिन फिलहाल आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है जो कि कहीं अंदर छुपा है, कह रहा है कि मैं भी बाहर निकलना चाहता हूं, तो आपका स्वागत है. आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी आपसे मुलाकात. कुछ और खास मुद्दों पर नजर डालेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ, अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट, एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: भैया आज तो हम तुम्हें एक नए जमाने की कथा सुनाएंगे।
3: अरे बाबा किसी भी जमाने की सुनाओ।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
3: दोस्तों, दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, और हम हमारे चुने हुए काम को इतने दिल से करते हैं कि उस काम के जरिए हमारा बड़ा ही नाम भी होता है, यश भी होता है, लेकिन एक पहचान भी बनती है। कई बार कुछ कर्तव्य, कुछ एक्शंस, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, केयर या पालना देना, किसी की संभाल करना, इस पे हमारा ध्यान इतना कभी नहीं जाता। घर में जब माँ किसी का ध्यान रखती है तो ऐसा समझा जाता है ये तो उनका काम है, लेकिन अगर वो ध्यान न रखे तो सोचिए हमारा क्या होगा। ठीक ऐसे ही हम उन्हें माँ तो नहीं कहते हैं, हम उन्हें सिस्टर्स कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं नर्सों की, जो हर अस्पताल में अपनी सेवाएं माँ की तरह नहीं बट एक बहन की तरह कर रही होती हैं। कई बार हेल्थ और चिकित्सा, जब ये शब्द हमारे सामने आता है तो हम डॉक्टर्स, मरीज, इन तक तो हमारी बात पहुंचती है, हमारे ध्यान में डॉक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट नर्सों का क्या? मेल नर्स, फीमेल नर्स, दोनों ही दिन रात अपनी अथक सेवा से डॉक्टर के दिए हुए प्रेस्क्रिप्शन पे एक मरीज को ठीक करते हैं। ये एक ऐसी सेवा है जो वो अपने परिवार वालों के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक वैश्विक परिवार के लिए कर रहे हैं। कोई भी हो उनके सामने, वो उनकी सेवा करते रहते हैं। आज यशस्वी भारत कार्यक्रम के हमारे एपिसोड में हम आपको एक ऐसे ही सेवाधारी से मिलवाना चाहते हैं जो बहुत दूर नहीं, मेरे और आपके बहुत नजदीक है। दोस्तों, मैं आपका और हमारा परिचय बीके रूपा उपाध्याय जी से करना चाहता हूं। पीके रूपा जी, जिनको हम रूपा दीदी के नाम से भी जानते हैं, माउंट अबू में ग्लोबल अस्पताल में नर्सिंग के मुख्य हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट के वो देखभाल करते हैं। लगभग 30 साल पहले उन्होंने नर्सिंग में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया और 1991 से वो ग्लोबल अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। उनकी अथक और निस्वार्थ सेवा की वजह से भारत सरकार ने उन्हें 2018 में फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरस्कार से सम्मानित किया। उनको तो बहुत सारे पुरस्कार और बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हुए हैं, मैं जिनका भी नाम लेता चाहूंगा आपको लगेगा अरे वाह अरे वाह, लेकिन हम बातचीत के दौरान इन बातों को समझेंगे जानेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं रूपा जी का। रूपा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
4: नमस्कार, थैंक यू।
3: मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था और मुझे लगा कि अच्छा, ये भी होता है, ये भी होता है, ये क्या होता है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया और मुझे कितना सब कुछ जानने को मिला। कई बार इतनी अच्छी चीजें हो रही होती है हमारे आसपास में, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता है। ऐसे में जब आपको इतने सम्मानों से नवाजा जाता है तो आपको कैसा फील होता है कि मुझे या मेरे प्रोफेशन को एक परिचय मिला है, एक रिकॉग्निशन मिला है, लेकिन लोग इसको इतना रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो वो उस कॉन्ट्रडिक्शन को, उस विरोधाभास को कैसे डील करते हैं?
4: ओम शांति। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं, कि कोई अवार्ड हमें मिले, उस भावना से नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक सेवा भावना है कि हमारी कम्युनिटी को, समाज को हमें कुछ देना है, हम समाज की ऐसी कोई सेवा करें, उस उद्देश्य से मैं इन नर्सिंग प्रोफेशन में आई हुई थी। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक था कि सेवा करना, कोई बीमार होता था तो उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, बहुत ऐसे शौक था। और फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि जब मैं 12th पास किया, फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे कुछ अपने समाज के लिए करना चाहिए, तो सामने आया नर्सिंग प्रोफेशन। तो फिर मैंने नर्सिंग ज्वाइन की, और नर्सिंग प्रोफेशन तो वैसे मैंने नर्सिंग की पढ़ाई मुंबई से की हुई है, और जब वहीं मैं जॉब कर रही थी, लेकिन उस समय ऐसे लगा कि मेट्रो सिटीज में, मुंबई में तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन ऐसे जाकर, हम दूर जाकर गरीब और ट्राइबल एरिया में ऐसे कुछ लोगों की सेवा करें कि जहां कोई साधन या वो सेवाएं उपलब्ध नहीं है उनके लिए, तो ऐसे लोगों की सेवा करने की बहुत इच्छा थी। तो उस हिसाब से फिर माउंट आबू में जब हॉस्पिटल का प्लान आया, तो फिर मैं माउंट आबू में गवर्नमेंट जॉब छोड़कर 1991 में आ गई हूँ, और तब से यहाँ सेवा कर रही हूँ ग्लोबल हॉस्पिटल में। और शुरुआत मेरी यहाँ हुई एज अ स्टाफ नर्स, जैसे हम होते हैं तो स्टाफ नर्स के हिसाब से शुरू किया, और फिर धीरे धीरे लगा कि नर्सिंग प्रोफेशन डे बाय डे बहुत एडवांस होते जा रहा है, जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है, तो वैसे नर्सिंग प्रोफेशन भी एडवांस होते जा रहा है, तो मुझे भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए नॉलेज के थ्रू। तो इसलिए मैं फिर नर्सिंग के हिसाब से अपने आप को, नर्सिंग और हॉस्पिटल को किस बातों की जरूरत है, ग्लोबल हॉस्पिटल जो माउंट आबू में है, तो उसको किस बातों की जरूरत है, उस हिसाब से मैंने अपने आप को नर्सिंग प्रोफेशन में अपडेट करती गई हूँ। जब 1991 में हमारा ही हॉस्पिटल ओपन हुआ था, तो ये फेजेस में हुआ था। फर्स्ट फेज में सिर्फ ओपीडी एरियाज थे, और इंडोर पेशेंट्स के लिए 8 बेड थे हमारे पास, और मेरे ख्याल से मिनिमम हम 4 नर्सिंग स्टाफ, हम सिर्फ 4 थे। और ऐसे हमने यहाँ शुरू किया है। फिर धीरे धीरे सेकेंड फेज में इंडोर हमारे वार्ड्स बने, ऑपरेशन थिएटर बना, आईसीयू बना, फिर ऐसे, फिर नर्सिंग स्कूल, नर्सिंग कॉलेज, ऐसे होते होते आज इस पोस्ट पे फिर धीरे धीरे आई। और शुरुआत में फिर ऑपरेशन थिएटर जब हमारे ओपन हुए, हमारे पास यहाँ 4 मेजर ऑपरेशन थिएटर्स जो है, तो उसके लिए फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया। और हमारे जो ये है डायरेक्टर जो है डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी, उनका भी हमें हर बात के लिए मुझे बहुत सहयोग मिला कि किस प्रकार से, वो हमेशा कहते थे कि नहीं, हमें अपडेट करना है, हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको उसी तरह से फैसिलिटीज मिले, उसी प्रकार से उनकी केयर हो जो हमारी मेट्रो सिटीज में, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में होती है, वो केयर हमारे हॉस्पिटल में हम दें, न सिर्फ हम प्रोफेशन वे में दें, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उसमें ऐड कर उनको हम वो केयर दें। तो इस प्रकार से हम यहाँ केयर देते हैं। और जब हमने हॉस्पिटल में हमारे आसपास के जो विलेजेस है, 20 विलेजेस को एडॉप्ट किया है, और जब उस विलेजेस से जो लोग आते हैं पेशेंट बनकर, और वो जब एकदम अच्छे बनकर जाते हैं, तो उसका जो एक सेटिस्फेक्शन होता है, तो वो बहुत दिल को सुकून देता है।
3: आई थिंक आपके इस फर्स्ट आंसर में मुझे बहुत सारा सवाल मिल रहा है जो मैं पूछना चाहूंगा। जो सबसे पहला सवाल मेरे ध्यान में आता है वो ये कि जब चिकित्सा की बात आती है तो सबसे पहले लोग जो है उनके जहन में भी और उनके बच्चों के जहन में भी यही आता है कि हमें डॉक्टर बनना है, नर्स बनना है। ये सवाल बहुत, मतलब मैं समझता हूँ
4: कम लोगों को आता है,
3: लोग सोचते भी नहीं है इतना। ऐसा क्यों? ये तो पहला सवाल है कि क्यों लोगों का ध्यान नर्स बनने की तरफ नहीं।
4: शुरुआत के दिनों में जब मैंने नर्सिंग की है, 1986 को मैंने नर्सिंग की थी, उस समय हम देख रहे थे कि नर्सिंग प्रोफेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि करियर वैसे नर्सिंग प्रोफेशन काफी ही हुआ है, एडवांस होते गया है। पहले नर्स माना जस्ट एक पेशेंट की केयर करना ही नर्सिंग का काम होता था, अभी ऐसे नहीं है। अभी नर्सिंग में भी काफी सारी डिग्रीज आ गई है, जैसे पहले सिर्फ रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ्स होते थे, अभी बीएससी नर्सिंग आया है जो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग माना डिग्री कोर्सेज शुरू हो गए हैं कि आप नर्सिंग में मास्टर की डिग्री ले सकते हैं अलग अलग विषयों पर है, जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, जनरल नर्सिंग जैसे होता है उस प्रकार से। और नर्सेस का जो सिर्फ केयर गिवर का रोल था वो चेंज होकर अभी काफी, जैसे नर्स इज एडवाइजर करके अब होती है, नर्स एक टीचर के रूप में आ जाती है से हम कह सकते हैं, नर्स एक लॉयर के रूप में भी आज ये हो रही है कि हम जो हेल्थ एजुकेशन देते हैं पेशेंट को कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं तो कैसे उन्हें अपने आप को बीमारियों से अपना प्रिवेंशन करना है। तो हमने देखा कि नर्सिंग में अभी बहुत बड़ा फ्यूचर है और इसीलिए एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि नर्सिंग का जो डिमांड है हर ऑल ओवर द वर्ल्ड नर्सिंग प्रोफेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। और पहले तो सिर्फ नर्सिंग प्रोफेशन में फीमेल्स ही होती थी, आपको मेल नाम मात्र दिखाई देते थे, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि जितने फीमेल्स है उसके ही उतने ही इक्वालिटी में आपको मेल ब्रदर्स भी दिखाई देंगे। तो एज अ करियर के हिसाब से नर्सिंग का बहुत इम्पोर्टेंस आया हुआ है। मैंने जैसे कहा कि मुझे बचपन से ही सेवा करने की आदत थी, तो एक संस्कार मेरा था ही था। और उसके बाद जब मैं सेवेंथ स्टैंडर्ड में थी, तो मैं तो महाराष्ट्र मुंबई से बिलोंग करती हूँ, तो हमें एक लेसन आता था बाबा आमटे जी का। तो बाबा आमटे जी के लेसन शायद वो बहुत बड़े समाज सुधारक होकर गए हैं, अभी उनके बेटे हैं। तो जब उनका वो लेसन पढ़ती थी तो मुझे उस समय आया कि नहीं, मुझे ऐसे कुछ बनना है। जैसे मैं बचपन में थी तो मैं कहती हूँ कि बचपन में हम सोचते हैं कि बड़े होकर हम क्या बनेंगे, तो नेचुरली मेरे फादर एयरपोर्ट कॉलोनी में रहते थे, हम लोग एयरपोर्ट में थे, तो हमें ऐसे ही लगता था कि मैं एयरहोस्टेस बनूं। लेकिन जैसे सेवेंथ स्टैंडर्ड में ये लेसन आया और मेरा पूरा कंसेप्ट चेंज हो गया और मुझे लगा कि मुझे तो ऐसी सेवा करनी है कि जिन समाज ने लेप्रसी वाले पेशेंट्स को बाहर कर दिया था उनकी संभाल बाबा आमटे जी ने की थी और एट प्रेजेंट उनका बेटा प्रकाश आम्बेडकर और पूरी फैमिली उनकी कर रही

0: है चंद्रपुर है इसमें, तो ऐसे कुछ मुझे भी सेवा करनी थी। और उस इसको ध्यान में रखते हुए फिर मैंने जब उनसे हमने ये किया था तो उन्होंने कहा था कि उनको नर्सेस की जरूरत थी, तो मैंने नर्सिंग में मैं आ गई। लेकिन लक्ष्य जीवन का था कि मुझे समाज की सेवा करनी है, जो व्यक्ति बीमार होता है उनकी सेवा करनी है, इस लक्ष्य से ही मैंने नर्सिंग की हुई है
1: जी। तो रूपा जी, जैसे मुझे लगता है एक चैप्टर कक्षा सातवीं की किताब का आपके जीवन की किताब की रूपरेखा ही चेंज कर दी उसने। ऐसे मुझे लगता है कितने ही महान आत्माएं होंगे जिनके जीवन के वृत्तांतों को अगर हमारे बच्चों को पढ़ने दिया जाए तो उनका जीवन भी एक बहुत महान दिशा की तरफ बढ़ सकता है। और स्पेशली विद दिस प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग, छोटे बच्चों को अगर इसमें इंटरेस्ट देना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर डॉक्टर तो सब जानते हैं, बच्चे खेलते भी डॉक्टर डॉक्टर खेलते भी हैं, यू नो, वो एक छोटा सा कुछ कान में लगा लेंगे स्टेथोस्कोप बना करके, एंड दे विल यू नो ट्राई टू, बट डॉक्टर डॉक्टर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, या ज्यादा नहीं कहूंगा, इक्वली इम्पोर्टेंट जो है केयर गिवर्स का भी हाथ होता है किसी के वापस से ठीक होने में, हेल्दी होने में। तो लोगों के अंदर इन जनरल, लेकिन स्पेशली बच्चों के अंदर कैसे हम इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए ज्यादा जागरूकता, ज्यादा सम्मान ला सकते हैं, इसके लिए आपका क्या विचार है?
0: मुझे ऐसे लगता है जैसे 10th या 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चे होते हैं तो उनको करियर गाइडेंस में ये बताया जाए कि नर्सिंग कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसे प्रोफेशन है कि जिसमें आपको दुआएं ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आप दिल से सेवा करते हैं तो जो हमें दुआएं मिलती है वो और किसी प्रोफेशन में आपको इजीली नहीं मिलती है जो मेडिकल प्रोफेशन में मिलती है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अगर बनना चाहते हैं तो नेचुरली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए हर प्रकार से। तो लेकिन नर्सिंग ऐसे ये बीच का ये आ जाता है कि जिसमें आप आपकी जो पेशेंट की सेवा करने की इच्छा है, अपने समाज की सेवा करने की इच्छा है, वो आप पूरी कर सकते हैं। तो अगर हम उनको करियर गाइडेंस देते हैं तो इजीली बच्चे इस प्रोफेशन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल का नर्सिंग स्कूल भी है और नर्सिंग कॉलेज भी है। स्कूल में जो 3 इयर्स का डिप्लोमा दिया जाता है जिसमें हम लोग GNM कहते हैं, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी करके, और एक होता है 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होता है BSc नर्सिंग। तो हम जाकर स्कूल्स में हम बताते हैं कि आप कैसे इस प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन को। और मैंने देखा है कि अभी हमारे पास इतने सारे मना आ रहे हैं कि उनकी बहुत दिल है कि हम नर्स बनकर सेवा करें, क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर्स आते हैं और जस्ट हाफ एन आवर में राउंड लेकर वो चले जाते हैं, नर्सेस को ही ये होता है। एक नर्स ही होती है जो 24/365 पेशेंट के साथ होती है कंटिन्यूशन में, भले शिफ्ट वाइज हमारी ड्यूटीज होती है लेकिन नर्स होती है। तो मैंने देखा, और आजकल डॉक्टर से भी ज्यादा दुआएं पेशेंट्स हमें देकर जाते हैं, नर्सेस को देकर जाते हुए हमने देखा है कि पेशेंट्स खुद कहते हैं कि नहीं नहीं सिस्टर्स आप थे इसलिए हम ये हो गए, डॉक्टर्स तो आए और गए। तो मैं देख रही कि वो ये होता है। और जब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको आप उस समय जो उनकी सेवा कर वो पेशेंट जब अच्छा होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना शंतनु भाई, आप कहो कि कितनी भी सैलरी आप लो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन जो हमें मिलता है, जो दुआएं मिलती है, और वो मैं तो समझती हूँ कि वो दुआओं से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। और मैं भी अभी अपने जीवन को देखती हूँ, अगर पीछे मुड़कर जब देखती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि जो भी पेशेंट्स की हमने सेवा की है उनसे हमें जो दुआएं प्राप्त हुई है वो दुआओं ने हमारे जीवन में इतने सुंदर रंग फैलाए हुए हैं। तो बहुत आनंद आता है जब हम पेशेंट की केयर करते और पेशेंट अच्छा होकर जाता है। अभी ग्लोबल हॉस्पिटल में बता कि हमारे पास एक स्माइल ट्रेन कर प्रोजेक्ट है, जिसमें क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के बच्चे होते हैं, कि जन्मजात ये उनके ओट नहीं होते, यहाँ से कटे हुए होते हैं, अंदर का तालु पैलेट नहीं होता है, तो खाने पीने बच्चा नहीं ये कर सकता है। और जब उनकी सर्जरी होती है और बच्चा इतना सुंदर से मुस्कुराता है तो बहुत अच्छा। और माता पिता को जो एक एंजाइटी होती है ऐसे बच्चे को देखकर, और फिर जब अच्छा हो जाता है तो इतनी सारी दुआएं वो लोग देकर जाते हैं। और मुझे याद है कि एकदम स्टार्टिंग में आई थिंक 1999 और 2000 में ऐसी ही एक बच्ची का हमने क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी की हुई थी, और 4 years बैक उसने हमारे नर्सिंग स्कूल में एडमिशन फॉर द नर्सिंग प्रोफेशन के लिए एडमिशन लिया था, और वो नर्स बनी हुई है। तो जब ये बातें आप देखते हैं तो कितनी अंदर से जो हमें खुशी मिलती है उस खुशी का ये नहीं है। और फिर सेकेंड, अभी जैसे लास्ट 3 years में हमारे कोविड पैंडेमिक चला, कोविड पैंडेमिक में आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट्स के रिलेटिव पेशेंट के पास नहीं होते थे। ऐसे समय पे पेशेंट की जो सेवा की गई है, पेशेंट को जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया है, उनकी पूरी केयर की गई है, तो हमने देखा कितने सारे हमारे पेशेंट्स अच्छे होकर गए हैं। और हमारे जो लोकल माउंट आबू के ही जो मार्केट के पेशेंट जब मिलते हैं हमें मार्केट में, कई बार तो कहते हैं कि अरे सिस्टर आप उस समय थे, उन्होंने आपने इतनी हमारी सेवा की, हम अच्छे हो गए, देखो आज कितने अच्छे हैं, और वापस बार बार हमें थैंक्स देते हैं। तो उसका भी एक अपना ही आनंद है इन बातों का।
1: जी, मैं तो आपकी बातों को सुनते सुनते सोच रहा था कि क्या ही हो अगर हम ऐसा इमेजिन करें एक हॉस्पिटल जहाँ केवल डॉक्टर्स हैं और मरीज हैं और नर्सेस नहीं है। इट विल बिकम लाइक अ मैड हाउस, मतलब उसको संभाल पाना किसी के लिए भी बस में नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन हो हॉस्पिटल का। बगैर अच्छे नर्सिंग स्टाफ के उस हॉस्पिटल का सक्सेस रेट बहुत कम होगा।
0: इसलिए कहते हैं ना, नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल। नर्सेस है तो ही हॉस्पिटल हो सकता है, और वो भी प्रॉपर केयर देने वाले, ऐसे नहीं दिल से हम जब सेवा करते हैं पेशेंट्स की।
1: नर्सेस आर द बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल। क्या ये नर्सिंग की जो भावना है या जो ये स्किल है या कला है, ये आमतौर पे हर एक में हो सकता है या केवल पढ़ाई से ही वो हमारे अंदर डेवलप होता है?
0: पढ़ाई से भी डेवलप होता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलता जाता है तो वैसे वो स्किल आपके डेवलप होते जाते हैं। और आजकल नर्सिंग प्रोफेशन में क्लिनिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए भी हमारी बहुत सारी जैसे क्लिनिकल स्किल लैब है, जिसमें हम उनको मैनेजमेंट पर पढ़ाते हैं, जो भी पेशेंट्स के ऊपर हम केयर करते हैं। तो मैंने देखा कि उस जमाने की पढ़ाई और अभी की पढ़ाई में बहुत डिफरेंस है। तो ये स्किल हम डेवलप कर सकते हैं पढ़ाई के थ्रू, और कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
1: ग्लोबल हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर सेवा भावना है, मैं बहुत सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन समटाइम्स आई माइट फील कि मैं कर नहीं सकता इतने अच्छे से, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि हम उस प्रोफेशन को चूज करें, लेकिन भावना है दिल में कुछ करने की। तो अगर वो काइंडनेस है हार्ट में लेकिन वो स्किल्स की कमी है, तो मैं समझता हूँ कोई अच्छा नर्सिंग कॉलेज अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो दे विल बी इक्विप्ड, राइट?
0: या श्योर। और आजकल
1: तो आप जो नर्सिंग कॉलेज चलाते हैं उसमें क्या क्या ऐसे हैं प्रावधान जो कि बच्चों को पता भी चलना चाहिए, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को भी पता चले कि नर्सिंग कॉलेज माउंट आबू ग्लोबल अस्पताल का जो है उसमें क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक हैं और कोई भी इस प्रोफेशन को चूज कर सके?
0: जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई हम जब कराते हैं तो सिर्फ पढ़ाई तो होती है, थियरी नॉलेज तो हम देते हैं, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिकल हम उनको स्किल लैब हम बनाई हुई है, जिसमें ऑल सारे मॉडल्स रखे हुए हैं, जैसे एनाटॉमी का है, फिजियोलॉजी का है, नर्सिंग मैनिक्विंस होती है जिस पर जो नर्सिंग में हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, पहले हम वो मैनेजमेंट पर उनको सिखाते हैं कि किस प्रकार से पेशेंट की बैक केयर करनी है, कैसे पेशेंट को उठाकर बिठाना है, तो हर प्रोसीजर वो मैनेजमेंट पर उनको सिखाया जाता है, और जिसके कारण फिर पेशेंट माना जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हमारे होते हैं जब क्लिनिकल एरियाज में वो आ जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा गेन होता है कि पेशेंट के साथ, और क्लिनिकल एरियाज में भी हम लोग उनको बेड साइड टीचिंग कराते हैं। कई बार कैसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे माना कोई पेशेंट का माना ये है कैंसर का है लेकिन ट्रैकोस्टोमी की हुई है यहाँ, तो ट्रैकोस्टोमी केयर हमें कैसे करनी है, तो प्रैक्टिकली भी हम उनको सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। और हमारे नर्सिंग स्कूल के जो भी है फैकल्टीज है उस स्टूडेंट्स के साथ आते हैं, प्लस क्लिनिकल एरिया में हमारे वार्ड के सुपरवाइजर्स है, हमारे नर्सिंग एजुकेटर्स है, वो सारा सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब स्किल लैब में उनको सिमुलेशन करवाया जाता है हर बात के लिए। जैसे मान लो कोई पेशेंट हो या चलते हुए कोई अगर अनकॉन्शियस हो गया, गिर गया, बेहोश होकर, तो उसको कैसे बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है, जिसकी भी ट्रेनिंग हम देते हैं। और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग हम सिर्फ न कि हमारे स्टूडेंट्स को ही देते हैं लेकिन कॉमन जो लेमैन है उनको भी हम ये ट्रेनिंग देते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट की, कि कैसे चलते फिरते अगर कोई बेहोश होता है तो कैसे आपको CPR करना है, किस प्रकार से करना है। तो उसके हमारे पास स्किल लैब में सारे मैनेजमेंट्स है, तो उनके ऊपर हम उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसे हर प्रोसीजर्स के लिए होती है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे साथ क्लिनिकल एरियाज में आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है। सबसे पहले तो हम हमारे स्टूडेंट्स को IV कैनुलेशन, कभी क्योंकि कोई भी पेशेंट जब बीमार होता है तो सबसे पहले उनको IV फ्लूस इंट्रावेनस फ्लूड दिया जाता है, तो वो IV कैनुलेशन कैसे लगाना है, किस प्रकार से होता है, उसकी उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए हमारे पास नीचे हमारे नर्सिंग स्कूल और नर्सिंग कॉलेज में भी लैब्स बनी हुई है, स्किल लैब, प्लस हमारे क्लिनिकल एरियाज में भी स्किल लैब बनी हुई है जिसमें हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन कराकर दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। तो जिसके कारण मुझे लगता है कि वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और स्किल अपने आप डेवलप हो जाता है उनमें, स्टूडेंट्स में भी।
1: तो जहाँ कॉन्फिडेंस की बात आती है, मुझे आप पूछना है आपसे आपका पहला केस, जब आप फर्स्ट टाइम आफ्टर स्टडी हॉस्पिटल में एंटर किए और आपको बोला गया कि भाई दिस इज द पेशेंट जिसका आपको ख्याल रखना है, क्या वो बहुत डिफिकल्ट केस था या कैसा था आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस विद योर फर्स्ट पेशेंट?
0: मेरा फर्स्ट पेशेंट जो बना माउंट अबू आने की मैं बात कर रही हूँ, कि जैसे एक जो पेशेंट आया था विलेज से आया हुआ था और जिसका हीमोग्लोबिन था 2 ग्राम सिर्फ, जो नॉर्मल 2 ग्राम जो हीमोग्लोबिन नॉर्मल मेल पेशेंट्स में होना चाहिए वो होता है 14 के ऊपर होना चाहिए, जो उसका 2 ग्राम, और ये विलेज के पेशेंट चलकर आया हुआ था और वो बिल्कुल एडमिट होने के लिए रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं मुझे एक बना इनकी लैंग्वेज में कह रहा था कि एक बाटला चढ़ा दो मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि जब विलेज के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ना वो फिजिकली बीमार होते हैं लेकिन फाइनेंशियली भी उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसके कारण वो हॉस्पिटल में काफी लेट पहुंचते हैं। और ये जब पेशेंट हमारे पास आया उसको काफी हमने काउंसलिंग करवाई कि भैया तुम्हें एडमिट होना कितना जरूरी है, जब आप एडमिट हो जाओगे आपको फिर हम जांच करवाओगे, आपको ब्लड हमें खून देना पड़ेगा, खून की जांच होगी, क्योंकि आपको कभी भी अगर 2 हीमोग्लोबिन में तो आप ये नहीं हो सकते हैं। पेशेंट के वाइफ को बहुत समझाया और करीबन 2 घंटे हमें लगे उस पेशेंट का काउंसलिंग करने के लिए, और जाकर फिर वो पेशेंट एग्री हो गया कि हाँ चलो भाई मैं ये हो जाता हूँ, एडमिट हो जाता हूँ। हमने कहा आप एडमिट हो जाओ, आपकी सारी जिम्मेवारी हम लेंगे। ऐसे करके जब वो एडमिट हो गया उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, और फिर 8 डेज के बाद हमारा पेशेंट अच्छा हो गया, नियर बाय उसका हीमोग्लोबिन 8-10 के आसपास आया, थोड़ा अच्छा हुआ, न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस उनको बताया कि क्या खाना चाहिए, जो भी अवेलेबल है उसमें से आप क्या डाइट अपना ले सकते हैं, कि जरूरी नहीं है आपको बड़ी अच्छी अच्छी ड्राई फ्रूट्स ही खाने हैं, लेकिन जैसे ग्राउंड नट्स और जैगरी खाकर आप कैसे अपने आप को एक करा सकते हैं, और जो भी आपके खेती में जो ये अवेलेबल है वो आपको खाना है, तो न्यूट्रिशन का भी डाइट दिया, और साथ साथ उनको हमने ये भी किया, मेडिटेशन भी सिखाया, कैसे इम्पावर अपने आप को करना है। तो हमने देखा कि 8 डेज के बाद बहुत सेटिस्फाई होकर वो पेशेंट गया और बहुत दुआएं देकर गया। तो वो फर्स्ट केस मेरा 1991 का है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी से याद है।
1: ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुड़ मूंगफली खिलाना तो एक बात है, लेकिन आपने गुड विशेस भी उनको दिया हाँ। भी सिखाया है। हाउ डू यू थिंक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मेडिटेशन एंड नर्सिंग, जो आप कर रहे हैं, जो लोगों की देखभाल करना है, उसमें मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है? क्या आपको भी मेडिटेशन करने से मदद मिल रही है, और या पेशेंट को भी करना जरूरी है? कैसे आप उसको समझाएंगे हमारे श्रोताओं को?
0: नहीं, दोनों बातें, नर्सेस को तो करना जरूरी है मेडिटेशन, क्योंकि कई बार इतना वर्कलोड माना स्ट्रेस होता है नर्सेस को, कि नर्सेस का माना जैसे आप देखोगे तो शॉर्टेज ऑफ नर्सेस हमेशा हर हॉस्पिटल में आप देखते हैं, और वर्कलोड ज्यादा है, तो कई बार नर्सेस हमारी स्ट्रेस में होती है, और हम देखते इतना हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी इनर पावर्स डेवलप हो जाती है, तो जिस काम के लिए हमें 15 मिनट या आधा घंटा लगने वाला होता है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो काम हमारा 10 मिनट्स में पूरा हो जाता है। तो हमने देखा कि मेडिटेशन से बहुत हमें फायदा होता है, और पेशेंट को जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं, कि जिसमें हम यही कहते हैं कि अपने आप के लिए कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे पहले उसके माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी आती है, और मैं अगर ये हुआ, मैं घर का हेड हूँ, मुझे ही कुछ हो गया, मैं ही मर गया, तो कैसे होगा, क्या हो, और कैसे होगा, क्या होगा, तो वो सारी चिंताएं उनको काफी, इन बातों का स्ट्रेस होता है, और जब हम मेडिटेशन उनको सिखाते हैं तो उनको उससे हमने देखा काफी रिलीफ मिलता है। ऐसे तो पहले हम मेडिसिन और मेडिटेशन दोनों बातों का हम लोग बैलेंस रखकर पेशेंट को यहाँ हीलिंग में बहुत हेल्प हो जाती है। और मेडिटेशन अगर नर्सेस भी करती है तो नेचुरली नर्सेस के ऊपर वो स्ट्रेस उनके फेस पर नहीं दिखाया जाता है, वी स्माइल वो पेशेंट को अटेंड करती है, ऐसे नहीं है कि अरे बाप रे अभी तो इतना सारा काम पड़ा है क्या करूं, नर्स ही टेंशन में आ जाएगी तो वो कैसे करेगी। तो हम हमारे नर्सेस को भी यही सिखाते हैं, ऑलवेज वेलकम पेशेंट विद अ स्माइल, आपके स्माइल से ही वो ये हो जाएगा, और जस्ट लिसन टू पेशेंट। आजकल के इसमें क्या हो रहा है कि लिसनिंग बहुत लोग काम करते हैं, लिसनिंग करना पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना है, लेकिन जब हमने देखा पेशेंट से ज्यादा हम देखते पेशेंट के रिलेटिव जो होते हैं, उनकी जब बात हम सुनते हैं तो आधी बीमारी हम देखते हैं कि वही उनकी कम हो जाती, उनको ये तो लगता है कि बाबा हाँ सिस्टर ने मेरी बात सुनी है। पेशेंट कई बार इतना ही नहीं करता, लेकिन रिलेटिव्स को जब हम प्यार से समझाते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं, तो काफी उसमें हमने देखा है कि हीलिंग में बहुत अच्छा ये हो जाता है, क्योंकि रिलेटिव्स की भी पॉजिटिव थिंकिंग होना शुरू हो जाती है, रिलेटिव्स को भी हम के पॉजिटिव रहो, कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हैं, वो भी हम उनको सिखाते हैं मेडिटेशन में। तो हमने देखा कि पेशेंट्स के हीलिंग में काफी हेल्प हो जाती है।
1: आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पहलू बताया कि मेडिटेशन से नर्सेस जो है वो स्ट्रेस फ्री और मोर स्माइलिंग होकर के सेवा करती हैं, और साथ ही साथ पेशेंट्स पे भी उनका ध्यान ज्यादा सहज जाता है, लेकिन जो पेशेंट्स के साथ उनके परिवार वाले आते हैं उनकी बात जो है वो मेरे जहन में एकदम से नहीं आई थी, लेकिन हाँ मुझे अभी रियलाइज होता है कि जितना परेशान खुद मरीज होता है उसके आस पड़ोस वाले उससे ज्यादा परेशान होते हैं। कई बार क्या होता है उसे ये नहीं बता करके कि भाई कुछ नहीं है ठीक हो जाएगा, दे ऑल्सो स्टार्ट पैनिकिंग, उनको बहुत पैनिक होता है कि पता नहीं अब क्या होगा, और ऐसे में उनको संभालना एक और जिम्मेवारी होती है जो नर्सेस के ऊपर बगैर रिटर्न आ ही जाती है, क्योंकि नर्सेस को ही उनसे डील करना होता है, वही पेशेंट के परिवार वाले बार बार पेशेंट से मिलने आते हैं। तो आई थिंक दिट्स अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट की नर्सेस का काम केवल मरीज तक सीमित नहीं रहता बट उनके परिवार वालों तक भी जाता है, इसलिए उनका मानसिक संतुलन, उनका भावनात्मक दृढ़ता, ये सब बहुत आवश्यक पहलू हैं किसी सफल नर्स के पीछे। आपके अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जस्ट केवल एक नर्स नहीं बट रूपा दीदी बनाते हैं?
0: जब ऐसे ये नहीं है, कई बार जैसे मुझे एक बार ऐसे

0: मिलने के लिए आप आओ। और मैं जब मिलने के लिए गई तो उसने मुझे बहुत थैंक्स दिया और कहा कि अगर आप उस दिन मुझे नहीं समझाते थे तो मैं ऑपरेशन नहीं करने वाली थी। और तब से फिर मैंने ये अपने आप को ये किया कि नहीं, हम मुझे पेशेंट्स की बातें भी सुनकर लेनी है और पेशेंट्स रिलेटिव्स को भी ये करना है। तब से मैंने अपने आप में ये लिसनिंग वाला जो मैंने पॉइंट सुनाया कि हमें लिसनिंग करना बहुत जरूरी है, तो वो मैंने देखा कि हमारे अगर लिसनिंग से, हमारे कहने से अगर किसी का ये होता है तो हमें वो टाइम देना चाहिए, तो वो ये किया। सेकेंड थिंग आप कहो कि मुझे हमेशा ये रहता था कि हम माउंट आबू पर रह रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मेडिकल साइंस एडवांस होते जा रहा है, उस प्रकार मुझे अपना नर्सिंग का भी नॉलेज जो है वो अपडेट करना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से अपने आप को भी नॉलेज में, नर्सिंग प्रोफेशनल नॉलेज में भी अपडेट करते रह रही हूँ और अभी भी करते रह रहे हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी में हमें सिखाया जाता है कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, और लास्ट तक हमारे अंतिम श्वास तक हमें पढ़ते रहना है, तो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ ही प्रोफेशनल लाइफ को भी हमें पढ़ते रहना चाहिए, अपने नॉलेज को भी, प्रोफेशनल नॉलेज को भी हमें अपडेट करते रहना चाहिए। और इसका मैं एक इंसिडेंस आपको सुनाना चाहती हूँ। 2016 में आपको पता है कि माउंट अबू हमारा हिल स्टेशन पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है। तो 2016 में एक ऐसे ही वर्कशॉप का ये आया कि हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन रेस्क्यू ये कराकर इस विषय पर वर्कशॉप होने वाला था, और ये वर्कशॉप ओली उत्तराखंड में ITBP के जवान, इंडो तिब्बतियन बोर्ड पुलिस के जवान, उनके साथ ये होने वाला था। तो मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे ये वर्कशॉप में जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए क्योंकि हम माउंट अबू पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, और कई बार यहाँ मास कैजुअलिटीज आती है कि वैलीज में कई बार बसेस गिर जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कैसे उस समय विक्टिम्स को हमें बचाना चाहिए। तो उसके लिए मैं और मेरे साथ एक बहन थी, हमारी हॉस्पिटल की नर्स बहन शोभा शर्मा करके, तो उसके साथ हम दोनों ये ट्रेनिंग के लिए वहां गए। और वो अभी जैसे ट्रेनिंग के लिए 1 वीक है, तो हमें मैसेज आया कि इस ट्रेनिंग का जो ये है ड्रेस कोड है, दैट इज अ ब्लैक ट्रैक सूट है, क्योंकि नेचुरली उत्तराखंड औली में होने वाला था ये ट्रेनिंग। तो मैंने फिर वहां ये कहा कि हमारा जैसे ये ड्रेस है, तो मैंने कहा कि सर हमारा तो ये वाइट ड्रेस है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन का ये वाइट ड्रेस है, तो मैं अपने ड्रेस में रहूंगी और प्लस मैं अपना ये करूंगी कि थियोरी नॉलेज में अटेंड करूंगी, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं नहीं अटेंड करूंगी ऐसे कराकर। और वहां हमारा एक, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी और वहाँ मेडिटेशन का एक उनका ये हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था कि हम जैसे मेडिटेशन करते हैं तो कैसे हमारी इनर पावर्स डेवलप होती है और कैसे हमारी शक्तियां बढ़ती है। तो हमारा एक सेशन चल रहा था, प्रैक्टिकल सेशन की रैपलिंग का, कि कैसे रस्सी के सहारे आपको उतरना है नीचे, पहाड़ से नीचे उतरना है। तो ऐसे ही एक जवान ने कहा जब चल रहा था, तो कि मैडम आप कहते हैं कि मेडिटेशन से आप, आपकी इनर पावर्स डेवलप हो होती है, तो आप ये रैपलिंग नहीं कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा कि हाँ, आप परमिशन लेकर दीजिए, मैं रैपलिंग करूंगी, क्यों नहीं, मुझे इस ड्रेस पे परमिशन दीजिए। और मैंने साड़ी पे रैपलिंग किया और वो मेरा एक ये बन गया कि साड़ी पे रैपलिंग करने वाली, मैंने अनजाने में भी तो ये हो गया कि जस्ट एक हिम्मत दिखाई और कर दिया। और फिर नहीं,
1: लेकिन आपने जो अभी हमारे श्रोता साथियों को बताया नहीं, वो ये कि आप आपने केवल कोर्स ही पूरा नहीं किया, लेकिन आप हाई एटीट्यूड मेडिकल रेस्क्यू ऑपरेशंस में भारत की पहली महिला मेडिकल नर्स हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि माउंट आबू में आप हमारे साथ रहते हैं और आप भारत की वो पहली महिला नर्स है जो हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद करते हैं। इट्स सच अ बिग ऑनर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट।
0: सिर्फ एक ही है कि मुझे अपना नॉलेज अपडेट रखना है अपने प्रोफेशन के प्रति, वही एक बात। तो इसलिए मैं हमेशा हमारे स्टाफ को भी, नर्सेस को भी, स्टूडेंट्स को यही कहती है कि हमेशा विलिंगनेस टू लर्न होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें अच्छा जॉब मिल गया

0: अभी हम सेटल हो गए, नहीं, हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए इस बात को। और इसी कारण मैं फर्स्ट नर्स बनी हूँ, और ये तो परमात्मा की, सुप्रीम सर्जन की ही कमाल है कि उसने ये सारा कार्य करवा लिया।
1: सुप्रीम सर्जन को भी एक बहुत स्वीट नर्स की आवश्यकता होगी।
0: वो तो है। और अभी भी माउंट अबू में मॉनिटरिंग के लिए जो आते हैं स्टूडेंट्स, तो उनके लिए हम यहाँ स्पेशल बेसिक लाइफ सपोर्ट का ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो उनको भी लगता है अरे वाह ब्रह्मा कुमारी ये नर्स बैन होकर और ये हाई एल्टीट्यूड का इसने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो ये कमाल ही, जस्ट एक मैजिक।
1: मुझे लगता है आपका जो ये एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू मिशंस में सपोर्ट देने का, इसको सुनते हुए कितने ही ऐसे हमारे श्रोता साथी होंगे जो कि नर्सिंग प्रोफेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होंगे। इनडायरेक्टली मतलब उनके दोस्त या उनके भाई बहन आदि सुन होंगे जो नर्सिंग प्रोफेशन में होंगे। हो सकता है आपकी स्टोरी से वो इंस्पायर होकर के उन्हें प्रेरणा दे या वो खुद प्रेरणा ले कि मुझे भी इस तरीके का कोई कोर्स करना है। क्योंकि ऐसे जगहों पे स्पेशली माउंटेनियस या लैंडलॉक्ड एरियाज में लोगों को सच में बहुत आवश्यकता होती है प्राइमरी हेल्थ केयर की और प्रॉपर नर्सिंग की, और ऐसे में अगर कोई सामने आता है तो वो उनके लिए तो फरिश्ता ही होता है।
0: और ये वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लाइफ का, एंड दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ मेरे मना इस नर्सिंग प्रोफेशन में। वो जैसे ट्रेनिंग मेरे टर्निंग पॉइंट रही है, जैसे सेवेंथ स्टैंडर्ड में जो टर्निंग पॉइंट था, उसके बाद ये टर्निंग पॉइंट रहा, जैसे कि हम लोग जैसे इस सिक्स सिग्मा करकर जो है उनके साथ, ये एक एनजीओ है, उनके साथ मैं जुड़ी थी, तो जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो यहाँ हमारी मेडिकल टीम जाती है और वहाँ फ्री सर्विसेज हम भक्त लोगों को मेडिकल सर्विसेज देते हैं। तो ऐसे दो बार वहाँ केदारनाथ में भी फ्री मेडिकल सर्विसेज दी, और जिसके कारण फिर ये रहा कि अपने जो प्रथम CDS विपिन रावत जी थे, उनके थ्रू हमें सिल्वर मेडल दिया गया था, हमारी टीम को सभी को उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया था। तो हाई एल्टीट्यूड में सेवा करने का अपना अलग ही मजा है, और ग्लोबल हॉस्पिटल में तो हम इस प्रकार से इतनी सारी सेवाएं यहाँ चलती है। मैंने कहा ना जैसे 20 विलेजेस आसपास के एडॉप्ट किए हैं, तो उस विलेजेस से जो लोग आते हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स वहाँ चलते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल प्रोजेक्ट है, फिर वुमेन्स के लिए एम्पावर करने के लिए उनको कैसे ये करना है, मेनस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर उनको ये करना है, डेली हमारी एम्बुलेंस जाती है वहाँ, उनको हेल्थ एजुकेशन के साथ उनकी स्क्रीनिंग भी होती है, अगर ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो फिर ग्लोबल हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ सेवाएं चल रही है माउंट अबू के हॉस्पिटल।
1: रूपा जी, मैं आपसे एक सवाल यहाँ इसलिए पूछना चाहूंगा क्योंकि जैसे आपने बताया कि कई ऐसे पहलू होते हैं हेल्थ से जो कि बहुत जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन हुआ या देयर आर सर्टेन अदर इश्यूज जो कि बहुत जेंडर स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन जब एक नर्स की तरह आप जाते हैं तो क्या कभी आपको या आपके स्टूडेंट्स को या आपके साथ काम करने वाले नर्सों को इस प्रकार की सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जहां पर जेंडर डिफ्यूजन है? मान लीजिए कोई मेल है और उसको कोई फीमेल नर्स सपोर्ट कर रही है, या कोई फीमेल पेशेंट है उनको कोई मेल नर्स सपोर्ट कर रहे हैं और वो जेंडर वाली बात आ जाती है, वो आप कैसे डील करते हैं?
0: नहीं, शुरुआत में हमें इस बात की काफी प्रॉब्लम्स आती थी यहाँ, लेकिन जैसे अभी तो हम देखते हैं और पेशेंट्स भी हम देखते हैं कि अगर फीमेल है, क्योंकि यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो लोग काफी ये होते हैं कि उनको मेल नर्सेस वगैरह टच नहीं कर सकते हैं, तो हमने तो कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, हमारे पास कुछ मेल नर्सेस भी है तो फीमेल, जिनको फीमेल की ये होती है तो हमारी फीमेल नर्सेस ये होती है, क्योंकि जैसे यहाँ जैन मुनि का दिलवाड़ा टेम्पल है तो जैन मुनि जो होते हैं वो फीमेल्स को ये नहीं कराते हैं, तो हम देखते हैं तो हमारे उस समय मेल नर्सेस अटेंड करते हैं और फीमेल के लिए फीमेल से करती है। लेकिन एट प्रेजेंट मैं देख रही हूँ कि ये इतनी हमें प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, मेल और फीमेल इकट्ठा ये होती है, इवन फीमेल्स भी हमारे मेल नर्सेस को बहुत अच्छे प्यार से ये कराती, उनसे ट्रीटमेंट करा कर लेती है। हाँ, जहाँ जैसे इंजेक्शंस का ये है या ड्रेसिंग ये होता है तो उस समय हम फीमेल ही प्रोवाइड करते हैं, वो हमने हमारी एक पॉलिसी बनाकर रखी है हॉस्पिटल की। तो अभी ये बात
1: ऐसे में मान लीजिए एक रेगुलर जो नर्सिंग के एक्सपीरियंस्ड हैं और आप चूंकि एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से भी आते हैं, क्या आपको लगता है ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है जब आप अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लोग आपको एक अलग तरीके के नजर से देखते हैं क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है?
0: हाँ, बहुत उनको अच्छा लगता है स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होने के कारण ना, कि वो लोग कहते हैं कि आप आकर हमें मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग ग्राउंड्स पर मैं जाती हूँ। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल बैकग्राउंड के कारण बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक हमारी भावना जो होती है कि दिल की जो भावना, शुभ भावना होती है कि हमारे पेशेंट जल्दी अच्छे हो जाए, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, तो नेचुरली वो गुड विशेष उनको टच हो जाती है। तो बहुत रिस्पेक्ट की भावना से एज अ नर्स और रिस्पेक्ट की भावना से भी देखते हैं। और कई बार अगर हम उनको दिखाई नहीं दिए, तीन चार बार अगर कोई क्रॉनिक पेशेंट है, वो ज्यादा दिन रह रहा है हॉस्पिटल में, उसको रुकना पड़ रहा है, तो वो हमें कहेगा अरे सिस्टर आप कहाँ थे, तीन चार दिन आए नहीं है। हमारे नर्सिंग स्टाफ को भी इस प्रकार कहते थे अरे सिस्टर कल आप कहाँ थे, आए नहीं है, अगर छुट्टी होती है। तो इस प्रकार से तो अच्छा लगता है, हमारा एक रिस्पेक्ट की भावना आजकल काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है एज अ स्पिरिचुअल के हिसाब से।
2: मैं तो खो ही गया उसमें और मुझे समय का पता भी नहीं चला, लेकिन हम दोबारा आपसे जुड़ना चाहेंगे और हम दोबारा आपसे कई सारे सवालों के साथ रूबरू होना चाहेंगे। बहुत कुछ है जानने को दोस्तों, शेयर करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। एक और एपिसोड में यशस्वी भारत के हम मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए आरजे शांतनु को, रखिए ध्यान अपना, अपने परिवार वालों का, और हाँ देश का भी। जय हिंद, जय भारत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 90.4 FM रेडिओ मधुबन।
3: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत।
4: अश्विनी
3: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
5: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
3: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
1: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
0: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौसी बोलो, मौसी मौसी बोलो, मौसी मौसी बोलो,
0: बाबू आना सुनते जाना।

0: ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे
0: तू जा जा, ए जा जा जामू धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

चंडीगढ़ की पहाड़ी है काटे की लाला।

0: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां।
1: रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
0: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: बाउजी बाउजी बोलो बाउजी बाउजी बाउजी
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार रेडियो श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो पुनेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा। ज्ञान चिंतन।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अभय, और आज मैं आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा समय होता है। ये वो दौर होता है जब व्यक्ति न केवल शिक्षा प्राप्त करता है, बल्कि नैतिक मूल्यों, अनुशासन और समाज में रहने के आवश्यक गुणों को भी सीखता है। विद्यार्थी जीवन केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समाहित करता है, जैसे कि मित्रता, संस्कार, मेहनत, आत्मनिर्भरता और जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा। आइए जानते हैं विद्यार्थी जीवन का क्या महत्व है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के संपूर्ण विकास का आधार होता है। इस दौरान अर्जित ज्ञान और अनुभव व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने जीवन को सफल बना सके। इस दौरान शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों का भी विकास आवश्यक होता है। तो निष्कर्ष यही है कि विद्यार्थी जीवन एक बीज की तरह होता है, जिसे यदि सही प्रकार से पोषित किया जाए तो वह एक विशाल और फलदायी वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है। यह जीवन का वो समय होता है जब व्यक्ति अपने भविष्य की नींव रखता है। अनुशासन, परिश्रम, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों का समावेश विद्यार्थी जीवन को सार्थक बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने इस विद्यार्थी जीवन को सदा बनाए रखेंगे। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
4: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
5: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं, भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं, जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में। फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
4: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: ओम शांति।
1: ये शेयर करना चाहूंगा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन एवरी टाइम, बट एक्सेप्टिंग दैट व्हाटएवर हैपन्स इज द बेस्ट फॉर दिस मोमेंट।
2: जो हम सीखते हैं वो ये कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सबसे बेस्ट थॉट क्रिएट करना, हर सिचुएशन में बेस्ट थॉट, हर रिलेशनशिप में बेस्ट थॉट। लेकिन फिर हम ये कहते हैं मैंने इतना पॉजिटिव सोचा, तो वो हुआ नहीं ना जो हमने सोचा था। तो पॉजिटिव थिंकिंग की भी कितनी सुंदर मीनिंग समझ में आई कि पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन टू एक्सपेक्ट द बेस्ट एवरी टाइम, बट टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज द बेस्ट फॉर दिस मिनट।
1: सो ब्यूटीफुल ना,
2: दिस इज सो पावरफुल।
1: पढ़ते वक्त भी मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ जितना आपने अब कर दिया।
2: दिस इज सो पावरफुल कि क्यों अभी जो हो रहा है यहाँ, अगर हम कहें कि बेस्ट पॉजिटिव मुझे सोचना है अभी, तो मेरे लिए पॉजिटिव थिंकिंग अभी ये होगी कि सब बेस्ट होगा, मौसम बेस्ट होगा, आसपास आवाज नहीं होगी, कैमरा ठीक चलेंगे, आप और मैं टाइम पर पहुंच जाएंगे। सो दिस विल बी माय पॉजिटिव थिंकिंग। ये मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें वैसे होने वाली।
1: एक आदमी बीमार हो गया, ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, ये सब चीजें इस वक्त जो हो रही हैं, उसको एक्सेप्ट करूं कि दिस इज द बेस्ट फॉर नाउ।
2: पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सही सोच हर परिस्थिति में, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग
1: इज पॉजिटिव इमेजिनेशन है। फिर हम बोलते हैं मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और।
2: क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी परफेक्ट किसकी डेफिनेशन से, परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हर एक व्यक्ति और हर एक परिस्थिति परफेक्ट होगी, लेकिन परफेक्ट किसकी डेफिनेशन से, एक तो उनके संस्कारों से और हमारे कार्मिक अकाउंट से। तो अब अगर मैं सोचूं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो वो होने वाला नहीं है। और जैसे वो नहीं होगा मेरे अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और मेरे अंदर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वो पॉजिटिव थिंकिंग था ही नहीं।
1: मैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग कर लूं कि मेरी पिक्चर बहुत चल रही है, फ्राइडे में टिकटें बिक रही हैं, पोस्टर है पेपरों में छप गया कि फैंटास्टिक और लाखों करोड़ों लोग देखने आए हैं पिक्चर, और दूसरे दिन फेल हो जाए,
2: तो पहले
1: मैं क्या उसको एक्सेप्ट करूं उस पोजिशन को?
2: अच्छा, सिचुएशन आने से पहले एक विजुअलाइज क्रिया, एंड विजुअलाइज मीन्स एक एनर्जी क्रिएट की, कल ये पिक्चर रिलीज होगी, इट विल बी अ हिट, एवरीबॉडी विल लाइक इट एंड ऑल दैट सीन। तो आपने एक ये सीन क्रिएट किया। अब नेक्स्ट डे हो सकता है वही सीन हो सकता है सीन थोड़ा सा चेंज हो जाए, हो सकता है सीन एक्सट्रीमली चेंज हो जाए। अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग तो मुझे हर मिनट चाहिए ना, नॉट कि पॉजिटिव थिंकिंग सीन होने से पहले और जब सीन आए तो मेरी थिंकिंग डिस्टर्ब्ड।
1: क्योंकि जो मैंने सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की थी
2: वो सिचुएशन नहीं हुई, वो सिचुएशन हुई नहीं ना,
1: हुई नहीं ना, उल्टा हो गया ना,
2: उल्टा हो गया। तो अब जब ये उल्टा हो गया तब भी तो पॉजिटिव सोचना है ना।
1: यही तो कह रहा हूँ कि अब मैं सोचूं कि वाह वाह वाह मेरी पिक्चर फ्लॉप होगी, एक्सेप्ट करो।
2: एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मेरे संस्कार का रिस्पॉन्स और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का रिस्पॉन्स है जो कुछ, और वो इस समय मेरे लिए एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। दिस इज 100% माय कार्मिक अकाउंट्स ओनली कम बैक टू मी। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। नेक्स्ट मिनट मेरे कंट्रोल में है, ये मिनट परफेक्ट है। अब मुझे अगर स्मूथ जर्नी पे चलना है, मुझे हर मिनट पॉजिटिव सोचना है। ऐसे नहीं पहले पॉजिटिव सोचा फिर डिस्टर्ब हुआ। तो पॉजिटिव सोचना मतलब मेरे साथ जो होगा, इवन बिफोर विजुअलाइजिंग, मेरे साथ जो होगा वो एक्यूरेट होगा, फेयर होगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा। हमारी प्रेयर भी यही होगी। जब हम प्रे भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन भी जोड़ते हैं, इट्स लाइक एक बच्चा एक पेरेंट को कहे कि मेरे लिए ये कर दो, और दूसरा ऑप्शन है एक बच्चा एक पेरेंट को कहे कि मेरे लिए जो सही है, आपको जो लगता है मेरे लिए अच्छा है आप वो कर दो। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लेट्स से मैंने एक डिजायर क्रिएट की, मुझे ये खिलौना चाहिए, और मैं पेरेंट को जाकर कहूँ मुझे ये ही खिलौना लेके दो, और एक है कि मैं पेरेंट को कहूँ आपको जो लगता है कि मेरे लिए
1: जो अच्छा
2: सही खिलौना होगा वो आप मुझे लेकर दो। दोनों में बहुत फर्क है। अगर हमने सीन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया तो फिर हमारे हिसाब से सिर्फ वो ही सही सीन है, और कोई सीन राइट हो ही नहीं सकता है। तो हमने एक, दिस इज डिजायर, कि एक सीन को, एक व्यक्ति को, एक मीटिंग को, एक इंटरेक्शन को पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, विच मीन्स स्क्रिप्ट हमने आने वाले सीन की पहले से ही लिख दी। सपोज हम गाड़ी में जा रहे हैं, मीटिंग है, इसके बाद हम मीटिंग के बारे में कार में पहले ही सारा स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं। हम वहां पहुंच जाएंगे, टाइम पे पहुंचेंगे, वो लोग भी टाइम पर आ चुके होंगे। सबसे पहले वो मुझे चाय तो पूछेंगे, मैं चाय ही नहीं पीकर आया सुबह घर से, सो दे विल ऑफर मी टी। फिर हम 9 बजे अपनी मीटिंग शुरू कर देंगे, फिर मीटिंग में वो ये बोलेंगे, फिर मैं ये कह दूंगा उनको, वो अपनी पॉइंट रखेंगे, लेकिन आई विल कन्विंस देम। कैसे? ये पूरी स्क्रिप्ट हम कार में बैठे बैठे कर लेंगे। अब सिचुएशंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मैं ही ट्रैफिक जाम में अटक जाऊं आगे जाके, तो फर्स्ट लाइन मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, सेकंड वो मेरे से भी ज्यादा लेट हो गए, वो किसी और प्रॉब्लम में अटक गए, थर्ड आने के बाद उनको भूल ही गया, उन्होंने मुझसे चाय पूछी ही नहीं, दे गॉट सो एंटैंगल्ड क्योंकि वो लेट आए, मैं लेट आया मीटिंग ले, उन्होंने चाय मुझसे पूछी ही नहीं, मीटिंग जिस नोट पे शुरू होनी चाहिए थी शुरू ही नहीं हुई, मैंने जो सोचा कि वो बोलेंगे
1: वो बोला नहीं,
2: उन्होंने तो कम्प्लीटली कोई और बात बोल दी। अब क्योंकि मैंने ये सोचा था, मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन उनकी बात तो कुछ और ही निकल गई, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, मैंने रिएक्ट एकदम डिफरेंट तरह से कर दिया। अब पूरी स्क्रिप्ट चेंज। लेकिन क्योंकि हमने पहले से एक और स्क्रिप्ट क्रिएट की हुई थी, हम चाहते थे कि हमारा जीवन बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के अनुसार हो, सिचुएशन ऐसे ही हो, बच्चा ऐसा हो, बहू ऐसी हो, मैं पहले से सिचुएशन को क्रिएट करके नहीं रखूं, मैं स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखूं, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हर रिलीजन सिखाता है कि डिजायर्स, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की विद्या भी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजायर भी नहीं होना चाहिए। जिस आत्मा के अंदर इच्छा मात्रम अविद्या होगी वो आत्मा खुश रहेगी। क्यों? जिस आत्मा के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो जब हम सुनते हैं ये लाइन को तो हम कहते हैं मतलब इच्छाएं नहीं, मतलब कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए कि ये हो, ये मेरे पास हो, ऐसा कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। मतलब आने वाली सीन, ये रिलेशनशिप, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमारी डिजायर है। ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा, ये स्क्रिप्ट पहले क्रिएट करने से मेरी अटैचमेंट उसके साथ हो जाती है अंदर, मेरे को वो ही सीन सही लगता है, सीन बदल जाता है, और क्योंकि सीन वो नहीं हुआ जो मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग दैट दिस सिचुएशन as it is at this moment is the best, rather than expecting the best in every moment. Perspective hi badal gaya completely.
1: Ye bhi fir majboori hai ki mere picture flop ho jaye aur main bolun ki yaar positive thinking means ki aaj main accept कर लूं कि जो है मेरे लिए बेस्ट है।
2: अच्छा,
1: फिर अगली पिक्चर में देखते
2: हैं।
1: ऑप्शन कुछ नहीं है, रोते रहेंगे या फिर हंसते रहेंगे। और
2: जीवन का लक्ष्य क्या है?

0: खुशी, उमंग, उत्साह और अगले पल के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा देना। एंड ये कोई इमेजिनेशन या अपने आप को बहलाने के लिए नहीं है कि अच्छा एक्सेप्ट दिस इज द बेस्ट, इट्स द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्म। वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट टू फूल आवरसेल्फ के कोई बात नहीं ना, इसको बेस्ट समझो, ये जो हुआ उसको बेस्ट समझो।
1: लॉ ऑफ कर्मा को हर आदमी मान ले तो फिर मेरी माँ मर जाए या डैडी को कुछ हो जाए या तबीयत किसी खराब हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए तो फिर आदमी हिले ही नहीं, इमोशनली सब ठीक, चीज को एक्सेप्ट करे, रोना नहीं, धोना नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप सुखी बैठे हैं जैसे कि आप
0: पर वही
1: हेवन
0: चाहिए
1: में
0: था ना,
1: हैं।
0: वही चाहिए था ना,
1: बट हम धरती पे हैं, हम हेवन में थोड़ा ही हैं।
0: धरती पर हेवन हमें वेट नहीं करना है, धरती पर हेवन हमें
1: क्रिएट
0: क्रिएट
1: करना
0: करना
1: है,
0: है। और कहाँ क्रिएट करना है हेवन? धरती
1: माइंड
0: पर
1: में,
0: भी नहीं क्रिएट करना
1: यहाँ आपकी भाषा में ये
0: है। हेवन इज नॉट हियर, हेवन इज हियर।
1: मुश्किल है।
0: ये एक अभ्यास है, नॉलेज कि जैसे जैसे हर सीन आती जाएगी उस सीन को एक्सेप्ट करें कि दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ दिस सीन वॉज मेंट टू बी। आई मे हैव डिसाइडेड कि यहाँ आज सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, वो ही होने वाला है, वो ही होने वाला है व्हाट इट वॉज मेंट टू बी। एंड मेंट टू बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू व्हाट? मेंट टू बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू माई पास्ट कर्मा। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। तो हम उस सीन को अगर एक्सेप्ट करते हैं, दिस सीन इज द बेस्ट नाउ, इसने क्या किया मेरे पर चिंतन को, मेरी चिंता को, मेरी डिस्टर्बेंस को फुल स्टॉप लगाया। मतलब इस पल ब्लिस, इस पल खुशी, स्थिरता। अब इसी खुशी से नेक्स्ट मिनट,
1: मैंने भी बचपन में लाइन सुनी थी, चिंता ताकि कीजिए ये अनहोनी होए। अभी आपने चिंता की बात की तो चिंता मैं तब करूं अगर इस चीज को अनहोनी कहूं तो, ऐसा ही होना था। तो ये एक मुझे बड़ा एक हारी हुई लाइन लगती है कि फिर फाइटिंग नहीं लगता है इसमें।
0: आप करें फाइटिंग, मतलब पुट इन योर बेस्ट एनर्जी, पुटिंग योर बेस्ट एनर्जी इनटू
1: ये
0: एवरीथिंग।
1: कमजोर लाइन नहीं है, बट चिंता ही नहीं करो, जो हो रहा है होने दो,
0: चिंता कमजोरी है,
1: मतलब ट्राई आवर बेस्ट, डू योर बेस्ट, उसके बाद चिंता नहीं करना, ये मतलब है।
0: चिंता क्या करती है? व्हाट इज चिंता? चिंता मतलब ड्रेन करने वाली विचार, ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, क्या हुआ तो, अगर हुआ
1: हाँ, वो
0: तो,
1: कहते भी है ना, चिंता चिता समान,
0: चिंता चिता समान है। तो डू योर बेस्ट, अब आफ्टर डूइंग योर बेस्ट
1: आगे बढ़ो,
0: आगे बढ़ो, डू योर बेस्ट, एक्सेप्ट द रिजल्ट,
1: और आगे बढ़ो नेक्स्ट।
0: यस अगेन डू योर बेस्ट। लेकिन अगेन डू योर बेस्ट के लिए क्या करना होगा? इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आपने कहा, सपोज एक मूवी कल फेल हो जाती है, लेकिन आपने उस मूवी के लिए यू've डन योर बेस्ट, यू've डन योर बेस्ट, बट दैट्स नॉट द लास्ट मूवी, दिस इज नॉट माई लास्ट प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट माई लास्ट मीटिंग।
1: इंग्लिश में कहावत है ना, यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग,
0: बट ट्राइंग वेयर? हम ये प्रोवर्ब को पकड़ लेते हैं, हम इसको समझ भी लेते हैं कि आई विल नॉट गिव अप, आई विल कंटिन्यू डूइंग, बट इम्पोर्टेंट इज हियर, माई एवरी फेलियर नाउ इट सेज इट्स नॉट अ फेलियर, इट हैपेंस व्हाट इट वॉज मेंट टू बी। ये थॉट हमें एक्सेप्टेंस का सही मीनिंग सिखाता है। अगर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझसे आज सुबह इस तरह से बात करेंगे, मींस मैंने पहले ही वो सीन को क्रिएट किया, लेकिन आपने एक कंप्लीटली अलग तरह से व्यवहार किया, लेकिन वो जो आपने किया वो रिटर्न ऑफ माय पास्ट कर्मा है। अब इसको एक्सेप्ट करें, आपके संस्कार को एक्सेप्ट करें, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करें, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। अब ये सारी एनर्जी कहाँ लगा दे? आपके लिए अच्छा सोचने में, क्योंकि अब अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगी तो मेरा ये मिनट भी सुखी है और मेरा नेक्स्ट मिनट भी फिर अच्छा हो जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ गया। अगर मेरा ये मिनट अच्छा है, आपने कहा चिंता, अगर ये मेरा ये मिनट दर्द में है तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट मिनट बीइंग हैप्पी विल रिड्यूस। आज अगर आपका पूरा दिन अच्छा बीते, रात को नींद भी अच्छी आए, तो आपकी सुबह उठते ही स्थिति कैसी होगी?
1: फ्रेश हैप्पी।
0: आज का कैरी फॉरवर्ड कल पे होगा। कल खुश रहने में ज्यादा मेहनत
1: नहीं
0: करनी, फिर कल अच्छा बीतेगा, कैरी फॉरवर्ड इधर होगा। लेकिन अगर आज बीता कल की चिंता करने में, ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, ये हुआ तो आज कैसा बीता?
1: टेंशन में।
0: टेंशन में दिन गया तो रात भी उसी थॉट के साथ कल की सुबह होगी। अब कल की सुबह क्योंकि ऐसी होगी, भले परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी कल आपके लिए, लेकिन कल का दिन पास्ट जो था वो चिंता में बीता था, तो आज का दिन भी मन की स्थिति कैसी होगी? खुश हो ही नहीं सकते। तो इसलिए चिंता विल नेवर गेट मी एनी गुड रिजल्ट, इवन इफ द सिचुएशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। चिंता सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी को पीछे खींचेगी।
1: चिंता चिता समान, ये लाइन जानते हुए भी मैं फिर भी चिंता करता हूँ।
0: हाँ, हम चिंता करते हैं जब तक हम ऑलरेडी कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी चिंता करते हैं। चिंता क्यों है? क्योंकि जो मैंने सोचा वैसा होना चाहिए, इस बात की चिंता है, एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर मैंने अपना बेस्ट कर दिया और मुझे ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि कल जो होगा वो मेरे कर्म प्रेजेंट के और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का सम टोटल, मेरे पास कल जो आएगा वो एक्यूरेट होगा और मेरे लिए जितना मैं डिजर्व करती हूँ अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो ही आने वाला है, मेरी आज चिंता मेरे कल आने वाले रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती। इनफैक्ट मेरे अभी के कर्म को वो नेगेटिव बना रहे हैं। व्हेन आई अंडरस्टैंड दिस, आई स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग मोर। इट विल नॉट हैपन अगेन इन वन डे।
1: कई बार कुंडली देखने वाले पंडित, ब्राह्मण, गुरुज, मास्टर्स, बड़े बड़े आशीर्वाद देने वाले, मतलब संत, कई बार अगर हमको समझो 20 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं अभी आपका टाइम अगले साल अच्छा आ जाएगा, चिंता मत करो अगली बार हो जाएगा, चिंता नहीं करो आप तो, आपके भाग्य में इतना अच्छा लिखा हुआ है, आपको ये हो जाएगा, आपको अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक बंदे की लिमिट होती है, अच्छा कब होगा?
0: अच्छा होगा अगले साल, अच्छा होगा। अच्छे की डेफिनेशन क्या है?
1: जो मैं चाहता हूँ वो।
0: तो अगले साल अच्छा होगा नहीं, अगले साल सही होगा। इस साल भी सही हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है।
1: तो गीता का सार हम बचपन से सुन रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा।
0: अच्छा वर्ड होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अच्छा फिर मेरी डेफिनेशन ऑफ अच्छा से होना चाहिए था।
1: तो दिस इज राइट।
0: सपोज आई फॉल डाउन जस्ट नाउ, ठीक है,
1: तो वो भी राइट है आपके लिए?
0: वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो मेरे लिए राइट है, बिकॉज वो मेरे कर्म, मेरे पास्ट कर्म और मेरे प्रेजेंट कर्म का रिटर्न है, वो एक्यूरेट है।
1: Okay.
0: अच्छा जो हमको सिखाया गया, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है और अच्छा होने वाला है।
1: और फिर मैं बोलूंगा कहाँ अच्छा हुआ, यू सो राइट, बहुत अच्छी बात।
0: अच्छा मींस एक्यूरेट, अच्छा डजंट मीन द बेस्ट, दैट इज व्हाट द बेस्ट, अच्छा मींस एक्यूरेट, जो हो रहा है वो एक्यूरेट, जो होगा वो भी एब्सोल्युटली एक्यूरेट, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। हमें बहुत सुंदर एक लाइन सीखने को मिलती है, इस ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। इसको एक मंत्र की तरह पकड़ के रखे, एंड हर सीन एक्यूरेट है बेस्ड ऑन कार्मिक फिलोसफी। हर सीन एक्यूरेट है, मेरे साथ इनएक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इफ आई फॉल नाउ, दैट इज ऑल्सो एक्यूरेट, इट वॉज मेंट टू हैपन, मेंट टू हैपन वाई, अकॉर्डिंग टू वट आई हैड क्रिएटेड, तो वो एक्यूरेट है, फेयर है, कल्याणकारी है। क्योंकि कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि वो बात आई, लेकिन अब अगर मैं उसको एक कल्याणकारी परिस्थिति में देखती हूँ तो मेरी अभी की थॉट कैसी होगी? वो एक श्रेष्ठ चिंतन होगा, तो उससे जो मेरा आने वाला समय है वो अब सारा ठीक हो जाएगा। ये सारा दिन अगर हम हर बात को देखें, जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा पर चिंतन खत्म हो जाएगा। हमारा बहुत पर चिंतन चलता है, क्यों, क्या, कैसे, ये पर चिंतन वेस्ट ऑफ एनर्जी, खुशी को खत्म करता है। एक्सेप्ट करते हैं।

0: वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मैंने क्या क्या लॉस किया अपना,
1: लॉस क्या,
0: खुशियां भी लॉस की,
1: खुशियां ही लॉस की।
0: बाप रे, आपने इतना दिमाग मेरा एकदम ओपन कर दिया।
1: ये पॉजिटिव, यू नो, कई बार हमें बहुत सारे भाई बहने मिलते हैं, कहते हमने समझा पॉजिटिव थिंकिंग, तो हम ये पॉजिटिव अब सोच रहे हैं कि हमारा ये बच्चा, ये हमारे हस्बैंड या वाइफ, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे, ये पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी।
0: बाप रे।
1: सो एक्सपेक्टिंग देम टू बिकम द बेस्ट, नॉट एक्सेप्टिंग दैट हाउ दे आर नाउ।
0: आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं।
1: जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक खुशी। जैसे आपने कहा, जो घर है, जो फैमिली है, जो सिचुएशन है, फिल्म हिट है या कई बार नहीं है, उस क्षण उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये घर जो मेरा है ब्यूटिफुल, ये इस समय मेरी मेहनत, मेरी मेहनत मेरा भाग्य, दोनों चीजें है ना, एंड भाग्य बेस्ड ऑन माय पास्ट कर्म। तो इस समय ये मेरा बेस्ट है, ये संतुष्टता है। यू नो क्यों हम कहते हैं हम कंटेंटेड नहीं है? आज हमारे पास जीवन में सब कुछ है, संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता हो ही नहीं सकती टिल वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट। जब तक मैं नेक्स्ट मोमेंट में कुछ एक्सपेक्ट करती रहूं, तो संतुष्ट कैसे हो सकती हूँ? संतुष्ट मीन्स कंप्लीटली हैप्पी विद व्हाट इज नाउ एंड नो डिजायर, प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट मिनट, बट हैप्पी विद द नाउ।
0: इस वक्त अगर समझो मेरे सामने जो कैमरामैन है वो हिलता जा रहा है, डिस्टर्ब मैं हो जाऊं उसको, तो मेरी कितनी हैप्पीनेस जो है चली जाएगी।
1: इस समय की आपकी पॉजिटिव सोच कौन सी है, वो क्रिएट करें। इट्स टीचिंग अस पॉजिटिव थिंकिंग। आपके सामने जो खड़ा है,
0: पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि भाई इसके नेचर में ऐसा है, इसका ये संस्कार है, तो जो है ठीक है, मेरा काम मैं अपना करूं, क्यों, व्हाई शुड आई गेट डिस्टर्ब्ड,
1: ही इज फाइन। एंड लेकिन उसके बाद हम बताएंगे भी
0: नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चले, मेरे थिंकिंग से वो चले, मेरे दिमाग में मैं जो सोच रहा हूँ उसके दिमाग में घुस जाए, इतना सब तो नहीं सोच सकता ना,
1: वो
0: जो
1: हो
0: है,
1: नहीं
0: जो
1: सकता ना।
0: हाँ,
1: आप सोच तो सकते हैं लेकिन वो हो नहीं सकता। जब हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, तो कोई कहेगा पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स ही विल चेंज, वो बदल जाएंगे,
0: मैं मन्नत रखूंगा सब हो जाएगा।
1: इसको
0: दुनिया को बदलने के लिए मन्नत हो रही है,
1: दुनिया को बदलने के लिए, और जो मेरी डिजायर है, चाहे लोगों के प्रति चाहे सिचुएशन के प्रति, उसको मैनिफेस्ट करवाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। हमारी हर प्रार्थना, हमारी हर मन्नत किस चीज पर फोकस्ड है? कि मेरी जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। ये हमारी हर प्रार्थना है, हर मन्नत है। खुश रहना है तो उसके लिए बहुत इजी प्रार्थना और मन्नत भी है। आप प्रार्थना करें, मन्नत मांगे कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं शक्तिशाली बन जाऊं।
0: ब्यूटीफुल,
1: देन लाइफ विल बी वेरी हैप्पी। इफ वी आर गोइंग टू कीप प्रेइंग कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, वो प्रेयर कभी पूरे होने वाली नहीं है।
0: हमारी चाहत, हमारी डिजायर्स, हमारी वांट भी तो बदलती ही रहती है ना, और बढ़ती भी रहती है।
1: हमारी डिजायर्स चेंज होती जाएंगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब कुछ जो हम डिजायर करते हैं वो नहीं मिलेगा। कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ तो जो डिजायर की थी उससे भी अच्छी मिलेंगी।
0: मतलब
1: क्यों? आपने सोचा आपको एक फ्लैट मिलेगा, मिल गया एक बहुत बड़ा बंगला, एम एक फ्लैट का ही रखा था, ये भी हो सकता है। इट्स नॉट कि जो हमने डिजायर रखी थी वो ही मिलती है या उससे कम मिलती है। कितनी बार हमने जो डिजायर रखी थी उससे
0: कई गुना
1: अच्छी चीज मिलती है। दैट ऑल्सो हैपन्स, क्योंकि जो मिलना है वो डिजायर अनुसार मिलना नहीं है, इसीलिए तो, नहीं तो डिजायर से ज्यादा कैसे मिल सकता है? जो मैंने डिजायर रखा, जिस चीज के लिए मेहनत करी, उतना ही मिलना चाहिए ना, या तो कम मिलता है या उतना, उससे ज्यादा कैसे मिला जब मैंने डिजायर ही नहीं किया उसके लिए, मैंने वो थॉट ही नहीं क्रिएट की, तो भी कैसे मिल गया? बिकॉज लॉर्ड सेज हैव योर पास्ट कर्म अकाउंट। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एम रखना है। आपने जैसे कहा पहले एक रूम था, फिर एक फ्लैट, फिर एक बंगलो, फिर विच इज फाइन। एम तो रखना है कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है जो जो परिस्थिति, जो जो मेरे साथ अभी हो रहा है, ये एक्यूरेट है, अच्छा होगा नहीं, अच्छा हो रहा है। जब
0: फिर ये क्यों कहते हैं कि द डिफरेंस, पेन इज द डिफरेंस between what you have and what you want.
1: Yes, because every time

0: एवरी टाइम व्हाट यू हैव यू आर नॉट हैप्पी विद दैट.
1: पेन क्यों है?
0: पेन क्यों है? क्योंकि अभी आप संतुष्ट नहीं है तो दर्द है. सपोज आपके पास एक फ्लैट है,
1: एक्यूरेट है जो मेरे पास अभी है, हाँ, तो फिर पेन क्यों?
0: क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो एक्यूरेट है ना. आपके पास अभी एक फ्लैट है, लेट्स से सिंपल डिजायर है
1: बंगले,
0: एक बंगले की. अब बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, अगर आपके पास जो अभी है मकान है फ्लैट है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं और आप काम कर रहे हैं एक बंगले को खरीदने के लिए, सो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट बट कंटेंटेड विथ व्हाट यू हैव. अब आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ये है कि अभी जो है वो भी बहुत अच्छा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. नॉट के अभी ठीक है फिर अच्छा होगा, या अभी अच्छा है फिर बहुत अच्छा होगा.
1: आपके लैंग्वेज में सही है, सही होगा.
0: अभी भी ये बहुत अच्छा है,
1: एक्यूरेट है,
0: एक्यूरेट परफेक्ट, एंड जो होगा वो भी बहुत अच्छा. इट्स नॉट अभी कम अच्छा फिर अगर आपने कहा अभी अच्छा फिर ज्यादा अच्छा, तो अभी पेन है ना. अभी पेन है क्योंकि होप है कि आने वाला दिन ज्यादा अच्छा होगा. उसके लिए दुआ मांगने जा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना
1: हम लोग
0: करें.
1: दुआ भी देते हैं, आने वाला दिन तुम्हारा और अच्छा हो, और अच्छी लाइफ बने, और आप तरक्की करें, और आप करें,
0: क्योंकि हर चीज में दुआ आने वाली चीज के लिए मांगी जा रही है.
1: डबल देना चाहते हैं आप बच्चों को.
0: दुआ क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, प्रेयर क्या होनी चाहिए कि आने वाली बात कैसी भी हो आप स्ट्रांग हो, आप इतने शक्तिशाली हो, इतने पॉजिटिव हो कि आने वाली हर बात को आप इतने प्यार से क्रॉस करेंगे कि वो परिस्थिति आपके लिए सुंदर बनेगी. तो क्या होगा? नहीं, जो हो रहा है तो संतुष्ट अभी, कंटेंटेड. व्हाई? बिकॉज इट्स एक्यूरेट. नॉट कंटेंटेड कि मैं इतने से मैं कैसे कंटेंट हो जाऊं, ये तो नहीं है व्हाट आई वांट इन लाइफ, मैं इतने में कैसे संतुष्ट हो जाऊं. संतुष्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ये एक्यूरेट है एंड वर्किंग टुवर्ड्स व्हाट आई वांट. तो उससे डिजायर खत्म होती है, एक्सपेक्टेशन खत्म होती है, एक्सेप्टेंस शुरू होती है. अभी भी खुश एंड पावरफुल कि अगले मोमेंट को भी प्यार से फेस करके उसमें भी खुश. तो आज अच्छा तो कल भी अच्छा होगा.
1: थैंक यू सो मच सिस्टर. और अगले एपिसोड में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी ने एक दुआ की थी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए, मे यू हैव इनफ.
0: हाउ ब्यूटीफुल.
1: इसको करते हैं कंटिन्यू.
0: श्योर.
1: थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: नमस्कार.
2: पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन एवरी टाइम बट एक्सेप्टिंग that whatever happens is the best for this moment. Positive thinking means right thinking at every moment, visualizing the best to happen, but then accepting the result and creating the right thoughts irrespective of what the outcome may be. Positive thinking does not mean what will happen will be the best. It means whatever will happen will be accurate for me according to my sanskars and past karmic accounts. Accepting the outcome of the situation keeps us stable at that moment. We retain the strength, confidence and motivation to put in our best in the next
3: moment. पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार. आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां.
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुनेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा.
2: अजी सुनते हो?
3: हाँ सुनी तो रहा हूँ.
2: क्या सुन रहे हो?
3: रेडिओ पुणेरी आवाज.
2: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो खुशियाँ बनो.
4: उपवास. लेखिका सुधापुरी. पात्र परिचय: दृष्टि, आकाश, वेदांत, पंकज, यश, सैंडी, विनोद, उन्नति.
5: देखो देखो, मेरी मम्मी ने सावन के उपवास रखे हैं. मेरे तो मजे ही आ गए.
6: तुम्हारे मजे कैसे आ गए?
7: अरे भाई, उनके लिए बर्फी आएगी तो मैं भी तो खाऊंगा.
8: तुम्हें तो उपवास में भी खाना सूझ रहा है.
9: उपवास का मतलब ही होता है कि अपने शरीर की पाचन मशीनरी को थोड़ा रेस्ट देना.
2: रेस्ट देना या फिर किसी और तरह के काम को देकर शायद चुस्त बनना.
8: अरे ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है.
2: हाँ, जैसे अनाज आदि को पचाने के काम से छुट्टी देकर केवल तरल पदार्थ या फल ही पचाना.
4: या फिर पाचन मशीनरी के कार्य का समय बदलकर भी तो उसे चुस्त बनाया जा सकता है.
5: कहीं तुम्हारा इशारा रोजों पर तो नहीं?
6: हाँ, वो भी और कई तरह के जैन व्रत भी. तो
7: मेरी माँ तो कई प्रकार के अनुव्रत रखती है.
8: ए, क्या होते हैं?
9: अनु मतलब छोटे छोटे, जैसे कई बार कई दिनों तक सिर्फ गेहूं से बनी चीजें छोड़ देती हैं और सब सेम रहता है उनका.
8: हाँ तो इससे तो कितना कुछ छूट जाएगा रोज खाने से.
4: कैसे?
2: ओहो, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई. चलो ध्यान देते हैं कि हम रोज सिर्फ गेहूं से बना क्या क्या खाते हैं.
5: ये तो गेम बन गई.
6: पहले मैं बताता हूँ, रोटी.
7: ये तो सबसे आसान था.
8: ब्रेड
9: दूसरा आसान.
8: कभी कभी माँ आटे का हलवा बनाती है.
2: कई तरह के केक, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियाँ,
6: कचोरियाँ,
4: कई तरह के बिस्किट्स, दलिया, सूजी, यहाँ तक मैदा भी.
5: ओ फिर तो और भी तो कई तरह की चीजें हो गई, जैसे इन चीजों से बनी चीजें भी, जैसे बर्गर, पिज्जा, केक, पेस्ट्री और ना जाने कितने ही फूड आइटम्स.
6: तो अधिकतर तो फल, सब्जियाँ और दूध से बनी चीजें भी तो रह गई.
2: इसका मतलब अनुव्रत भी काफी शक्तिशाली हो गए कई चीजें छुड़वाने में.
5: अनुपम की तरह.
6: पर इससे एक बात तो तय है कि और कुछ हो ना हो, हम अपने भोजन को और ध्यान से खा सकते हैं. मतलब हमारा फोकस बढ़ता है.
7: मतलब ध्यान लगाने की क्षमता.
2: हाँ हाँ, ये कोई कम फायदा तो नहीं. ये ध्यान लगाने की बढ़ी हुई क्षमता जीवन के और पहलुओं में भी काम आती है.
8: वो कैसे?
2: देखो ना, ध्यान हर चीज में चाहिए. पढ़ाई लिखाई में तो है ही, किसी भी कला को सीखने में, किसी भी हुनर को अपनाने में.
9: और दीदी, किसी से बात करने समय उसकी बात अधिक से अधिक समझने में. इससे तो याददाश्त भी अच्छी हो जाएगी.
2: वो तो है ही, बल्कि इच्छा शक्ति, निष्ठा, उद्देश्य तक पहुंचने का पक्का इरादा और फिर जब व्रत सफल हो तो संयम में रहने का आत्मविश्वास.
8: अरे वाह, क्या बात है. आत्मविश्वास बढ़ जाए तो फिर तो कुछ भी किया जा सकता है.
4: ये तो ऐसी चाबी है, इसे हर क्षेत्र के ताले खुल सकते हैं.
2: और सबसे बड़ी बात है, हम में बढ़ता है सब्र, यानी कि पेशेंस.
5: इतना कुछ सिर्फ व्रत रखने से?
2: हाँ, तभी तो बापू कितने उपवास रखा करते थे. कहते हैं एक बार जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए केवल दिन में एक बार खाएंगे और वह भी केवल 5 खजूर.
5: ओ, सिर्फ 5?
2: हाँ, और उनके मित्र ने उन्हें कोई 7 खजूर दे दिए. सोचा बापू ध्यान नहीं देंगे और वे उन्हें कुछ ज्यादा ही खिला पाएंगे.
5: फिर
2: बापू ने खजूर देखा और कहा, मैंने 5 खजूर कहे थे, तुमने मुझे 7 दे दिए.
10: फिर
2: उनके मित्र ने प्यार से कहा, अब 5 और 7 में ज्यादा फर्क कहाँ है। ऐसा 1-2 दिन हुआ, बापू हर रोज 2 खजूर बाहर निकाल देते।
8: हाँ हाँ, उनका मित्र उनसे प्रेम करता था।
2: हाँ, जब बापू के टोकने पर भी उन्होंने खजूर कम लाने शुरू नहीं किए तो जानते हो बापू ने क्या किया?
8: क्या क्या?
2: उनमें से 2 खजूर तो पहले ही निकाल दिए और 1 दिन केवल 3 ही खजूर खाए और कहने लगे अपने मित्र से, जब 5 और 7 खजूर में कोई अंतर नहीं तो 5 और 3 में भी नहीं होगा।
10: ओ, वाह।
2: हाँ हाँ, उनके मित्र ने फिर उनसे बहुत क्षमा मांगी और बापू के कहने के अनुसार ही चलने लगे।
5: बापू ने तो कई बार ब्रिटिश सरकार को भी अपने उपवास द्वारा घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कितने लाभ हैं उपवास के।
6: क्या सभी धर्मों के लोग उपवास रखते हैं?
2: सभी धर्मों में उपवास की आवश्यकता बताई गई है।
7: हाँ दीदी, इसलिए शायद हर व्यक्ति अपने धर्म परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत करता ही है।
2: ठीक कह रहे हो, पर असल में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण से है।
7: इससे हमारा शरीर स्वस्थ भी तो रहता है।
8: क्या पता इसके महत्व को समझते हुए सभी धर्मों ने इसे धार्मिक रीति रिवाजों से जोड़ दिया है ताकि लोग उपवास के अनुशासन में बंधे रहे।
9: लेकिन इसके वैज्ञानिक महत्व के कारण भी उपवास यानी पेट को खाली रखना अच्छा है।
2: वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सभी सप्ताह में 1 उपवास जरूर रखना चाहिए।
8: कई बीमारियों से भी तो इससे छुटकारा मिलता है।
2: हालांकि हर बीमारी का इलाज उपवास नहीं है, लेकिन यह कई समस्याओं में कारगर रहता है।
8: इसका मतलब दीदी उपवास के तो अनगिनत फायदे हैं।
2: कहते हैं उपवास जितना लंबा होगा शरीर की ऊर्जा उतनी ही अधिक बढ़ती है।
4: वाह क्या बात है।
2: कहते हैं उपवास आपकी आत्मविश्वास को इतना बढ़ा सकता है कि आप अपने शरीर जीवन और भूख पर अधिक नियंत्रण हासिल कर सकें। हमारा शरीर तो स्वनियंत्रित है।
10: मतलब कैसे?
2: मतलब ये खुद को ठीक करने वाली प्रजाति का हिस्सा है। देखते नहीं कहीं चोट लगे तो कैसे पहले खून बहता है, फिर जम के पपड़ी सी बन जाती है ताकि जल्दी से आराम मिले।
4: हाँ ये तो है।
2: उपवास के जरिए हमारा शरीर अपने मेटाबॉलिज्म को सामान्य स्तर पर ले आता है
5: और फिर इससे शरीर स्वस्थ रहता है।
6: निराहार रहने से,
2: उससे या एक समय भोजन लेने से या फिर
7: केवल फलाहार रहने से।
2: असल में इससे 5 तंत्र को आराम ही मिलता है।
9: और जब मेहनत जरूरी है तो आराम भी तो उतना ही जरूरी है ना?
2: यही नहीं, इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अरुचि, सिर दर्द, बुखार आदि रोगों से भी आराम मिलता है।
10: वाह कितना अच्छा है।
6: आध्यात्मिक शक्ति भी तो बढ़ती है।
7: मतलब?
6: मतलब जैसे ज्ञान, विचार, पवित्रता,
8: बुद्धि का विकास भी तो होता है।
4: इसी कारण तो उपवास व्रत आदि को सभी धर्मों की पूजा पद्धति में शामिल किया गया है।
9: यानी से यस टू उपवास एंड नो बर्फी।
5: यस टू बर्फी भी, पर कभी कभी।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूं

0: इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी. एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा. व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है. दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स. एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी. 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क. सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस. अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा. तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है. और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे. अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर. उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो पुनेरी आवाज पर हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। ये कार्यक्रम समर्पित है उस स्वर को जिसने 7 दशकों तक हमारे दिल को छुआ, सुमन कल्याणपुरकर जी।
3: 28 जनवरी 1937
2: को जन्मी सुमन जी ने बचपन से ही संगीत की साधना की और 1954 में हिंदी फिल्म मंगू से अपनी यात्रा शुरू की। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग अक्सर उसे लता मंगेशकर जी की आवाज समझ लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर हुआ और 1953 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म शुक्रा की चांदनी के लिए गाया। तो आइए सुनते हैं मंगू फिल्म का एक ही

दोस्तों, 1954 की फिल्म मंगूसे हिंदी सिनेमा में कदम रखने के बाद सुमन कल्याणपुर जी का सफर आसान नहीं था। उस दौर में लता मंगेशकर जी का दबदबा था और सुमन जी की आवाज उनसे मिलती जुलती थी। इसी वजह से कई बार उन्हें पीछे रखा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। 1950-1960 में छोटे छोटे गीतों से शुरुआत की, लेकिन उनकी मधुर आवाज ने श्रोताओं का ध्यान खींचा। 1960 में मोहम्मद रफी के साथ युगल गीतों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे फिल्म ब्रह्मचारी का सदाबहार गीत है, जिसे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया था। शंकर जयकिशन का संगीत और हसरत जयपुर के बोल ने इसे अमर बना दिया।

दोस्तों अभी आपने सुना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, और अब हम आपको ले चलेंगे एक और यादगार नगमे की ओर, जहां रफी साहब की बुलंद आवाज और सुमन जी की मधुरता मिलकर दिल को छू जाती है। यह गीत है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, फिल्म थी जब जब फूल खिले, गायक थे मोहम्मद रफीक और सुमन कल्याणपुर, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे थे अनजान ने, पर्दे पर थे शशि कपूर और नंदा जिनकी जोड़ी ने इस गीत को और भी मोहक बना दिया। सोचिए उस दौर की बात जब रेडियो पर पहली बार ये नगमा गुंजा, रफी साहब की बुलंद आवाज और सुमन जी की मधुरता ने इस गीत को अमर बना दिया। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, यह गीत आज भी मोहब्बत का सबसे प्यारा चरण है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी अभी आपने सुना नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और अब हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे नगमे की ओर जो दर्द और मोहब्बत का सबसे सुंदर संगम है। सोचिए, जब किसी ने पुकारा और दिल ने बिना सोचे जवाब दिया, यही है सच्चा प्रेम। फिल्म राजकुमार का ये गीत तुमने पुकारा और हम चले आए उसी भाव को जीवित करता है। गायक थे मोहम्मद रफीक और सुमन कल्याणपुर, संगीत दिया था शंकर जय किशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने। पर्दे पर्दे शम्मी कपूर और साधना के जोड़े ने इस गीत को भी मोहक बना दिया। तो सुनते हैं यह गीत।

दोस्तों, अभी अभी आपने सुना तुमने पुकारा और हम चले आए, और अब हम आपको ले चलेंगे उस नगमे की ओर जो मोहब्बत का सच्चा इजहार है। यह गीत है ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, फिल्म थी बात एक रात की, गायक थे मोहम्मद रफीक और सुमन कल्याणपुर, संगीत दिया था हेमंत कुमार ने, बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुर ने, पर्दे पर थे देवानंद और वहीदा रहमान जिनकी जोड़ी ने इस गीत को भावपूर्ण बना दिया। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज का यह समर्पित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमने सुमन कल्याणपुर जी के मधुर गीतों का स्मरण किया, रफी साहब और मुकेश जी के साथ उनकी जोड़ी को याद किया। हर नगमा हमें यह एहसास दिलाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का सहारा है। आज के इस कार्यक्रम पर हम श्रद्धांजलि के साथ समाप्त करते हैं। उनकी मधुर आवाज, उनकी मधुर धुने और उनकी कला हमेशा दिलों में गूंजती रहेगी। रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से महान गायिका सुमन कल्याणपुर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इसी गीत के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाए तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, खाबो के सफर में हम लोग अलग अलग अल्फाबेट लेकर आपको गाना सुनाते हैं। 50s एंड 60s के बहुत ही खूबसूरत ओल्ड मेलोडीज आपको सुनाते हैं और आज हम लोग ने अक्षर लिया है ई। जी हाँ, ई से बहुत सारे 50s एंड 60s के सुंदर सुंदर गीत आपको सुनाने वाले हैं। और आज के इस शो को सजाने के लिए और खास गीतों का कलेक्शन लेकर कविता हमारे साथ है और वो ई अक्षर वाले 50s एंड 60s के बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाने वाली है। तो मैं आप सभी की तरफ से कविता का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खाबो का सफर इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। हर बार नया एक शब्द होता है, इसी तरह से आज भी एक नया अल्फाबेट जो है वो ई से है। ई से हमारे पास जितने भी अच्छे गाने हैं वो आपको सुनाएंगे। गाना है एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दोस्तों, कहते हैं कभी प्यार ना किया हो और अचानक से प्यार हो जाए, वो भी कोई जब अचानक से मिले और उसे देख के मन में कोई अच्छी सी हलचल पैदा हो जाए और वो हलचल भी कुछ मीठी सी लगने लगती है, वो भी अपना नहीं फिर भी अपना सा लगने लगता है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि एक परदेसी मेरा दिल ले गया और जाते जाते मीठा कम दे गया।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, एक परदेशी मेरा दिल ले गया। बहुत ही पॉपुलर गाना है ये, 1958 का सॉन्ग है जो कमर जलालाबादी ने लिखा था और आशा और रफी साहब ने इसे गाया था। ओपी नैयर साहब ने बहुत ही सुंदर संगीत इसमें दिया था और गाना सुनते ही म्यूजिक बहुत ही सुटेबल म्यूजिक है जहाँ पर गाना आपको याद हो जाता है। 1958 का फागुन फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: तो फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, एक परदेशी मेरा दिल ले गया। जी हाँ, आशा और रफी साहब ने इसे गाया था और मधुबाला और भरत भूषण पर पिक्चराइज किया गया था। बहुत ही प्यारा सा गीत था और आशा करता हूँ आप भी गुनगुना रहे होंगे। क्यों नहीं गुनगुनाएंगे, क्योंकि गाना ही इतना प्यारा सा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में। और कविता के पास बहुत सारे ऐसे ई अक्षर वाले 50s और 60s के खूबसूरत गाने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कविता जी, आपके पास एक और कौन सा गाना है जो ई अक्षर से 50s और 60s वाला, वो बताइए।
1: थैंक यू सर। अगला गाना है हमारा एक रात में दो चांद खिले। पहले एक दूजे के लिए परदेसी थे, फिर धीरे धीरे प्यार हुआ और देखो आज एक दूसरे की चाहत में चांद भी बन गए। चांद एक ही होता है पर ये दो चांद ऐसे हैं कि अगर प्यार करें तो चांद से भी कम नहीं होते। वो दो चांद भी हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी अपनी मंजिल से दूर होकर भी अपने अपने चांद को देख लेते हैं, उस आसमान के चांद को देखकर। इसीलिए कहा जाता है कि एक रात में दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले। आइए मिलते हैं इन दो चांद से, क्या कहते हैं एक दूसरे से।
0: कविता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, 1959 का भरका फिल्म का शायद ये गाना है और राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस गीत को लिखा था। गायक मुकेश और लता मंगेशकर थे और संगीतकार चित्रगुप्त का ये खूबसूरत गाना एक रात में दो दो चांद खिले हैं। तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत को हम लोग अभी एंजॉय करेंगे और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ओल्ड मेलोडीज हम लोग सुन रहे हैं ई अक्षर वाले, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो का सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं, 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज। और बहुत ही प्यारा सा गीत अभी सुन रहे थे आप, जो नंदा एंड आनंद मराठे पर पिक्चराइज किया गया था और बहुत ही पॉपुलर गाना था 1959 का, एक रात में दो दो चांद खिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के ओल्ड मेलोडी सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में एक सुकून मिलता है। गानों को सुनने के बाद एक विचार आता है, एक सात्विकता हमारे मन में भर जाता है, जिसको हम लोग फील करते हैं, एक अच्छा फीलिंग आती है। तो आइए आपको और भी अच्छा फील कराने के लिए आज हम लोग 1950s एंड 60s के जो ओल्ड मेलोडीज हैं, उनमें से ई अक्षर वाले कुछ खूबसूरत नगमे आपको सुनाने की कोशिश है। और कविता के पास बहुत ही अच्छे कलेक्शन है ई अक्षर वाले, तो मैं चाहूंगा कि अब तीसरा जो गाना है वो ई अक्षर वाला कौन सा आप सुनाएंगे।
2: अगला जो मेरा गाना है वो है एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। एक दूसरे से आज प्यार करने वाले चांद की तरह मानते हैं, और प्यार करते करते एक दूसरे से सवाल भी करने लग जाते हैं, और सवाल ही सवाल में एक दूसरे को जवाब भी मिल जाते हैं। हाँ दोस्तों, हमारा जो अगला गाना है एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, तो आपस में थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी, थोड़ी सी नोक झोंक होती जाती है, और वो बहुत ही मीठी होती है। लेकिन सवाल के सवाल में ही जवाब मिल जाता है, और प्यार में सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है, एक सवाल मैं करूं, ऐसा जो गाना है ये बड़ा अलग ही है, जहां पर सवाल जवाब की बातें आती हैं। और इस गाने को शैलेंद्र साहब ने लिखा था और लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, और शंकर जयकिशन का बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजा ससुराल फिल्म का 1961 का ये खूबसूरत नगमा अभी हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं, और आशा करता हूँ उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, खाबो खास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, 1960s का एक बहुत ही ओल्ड मेलोडीज का बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। कहते हैं दोस्ती जिंदगी में रोशनी कर देती है, हर खुशी को दो गुनी कर देती है। कभी झूम के बरसती है बंजर दिल पे, कभी अमावस को चांदनी कर देती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबों का सफर। आइए खाबों का सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं और कविता जी से ही पूछते हैं कि अब चौथा गाना कौन सा उनके पास है जो ई अक्षर से शुरू होता है।
1: थैंक यू सर। हमारे इस एपिसोड का नाम ही बहुत अच्छा है, खाबों का सफर। तो खाबों के सफर में और हमारे गाने जो आते हैं माशाल्लाह, वो तो बहुत ही सुंदर होते हैं। वो भी रंग बिरंगे और एक ही शब्द में अनेक गाने। दोस्तों अगला गाना है, एक शहनशाह ने बनवाया हंसी ताजमहल। प्यार में या दोस्ती में या कोई भी तरह की रिश्ता हो और उस रिश्ते में किसी भी तरह की चीज दी जाए तो वो ना छोटी होती है ना बड़ी, वो तो एक प्यार भरे रिश्ते का तोहफा होता है। उसे दिल से सींच कर रखा जाता है। इसी तरह से भी शहनशाह ने भी बनवाया एक हंसी ताजमहल, जिसे आज देखने के लिए दुनिया के लोग उसे देखते हैं और बहुत प्यार से उसे सजोते हैं।
0: जी कविता जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है। आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। शकील बदायूं साहब ने इस गीत को लिखा था, लता जी और रफी साहब ने इसे गाया था, संगीतकार नौशाद साहब थे और फिल्म 1964 में आई थी लीडर, जिसका नाम था। जी हाँ, इसमें बहुत ही प्यारा सा ये गीत है जहाँ पर शहनशाह जो है अपने महबूबा की याद में एक बहुत ही सुंदर ताजमहल बनाता है। उन चीजों को यहाँ पर पिक्चराइज करने की कोशिश की गई थी और उसे शकील बदायूं साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से अपने कलम से इन चीजों को लिखा था और लता रफी ने आवाज दिया था, नौशाद जी ने इसे संगीत से संवारा था। तो आइए ऐसे खूबसूरत गाने को हम लोग सुनेंगे अभी, 1964 का लीडर का ये खूबसूरत नगमा अभी आप सबके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी खुशी से ही नहीं, गम से भी रिश्ता है हमारा। ये जो तुम्हारी जिंदगी है वो एक हिस्सा है हमारा। ऐ दोस्त, तुमसे लफ्जों का ही नहीं, रूह का भी रिश्ता है हमारा। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छे कलेक्शन आप सुन रहे हैं ई अक्षर वाले 50s एंड 60s के। तो कविता जी से पूछते हैं अगला गाना कौन सा है उनके पास, उनके पिटारे में।

0: जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सब कुछ मिले लेकिन साथी का साथ ना मिले कुछ भी अच्छा नहीं लगता। चाहे वो दो जहां हो या कोई पूरा संसार हमें मिल जाए, लेकिन प्यार करने वालों को एक दूसरे का साथ ना मिले तो वो प्यार अपने हर दुखी को एक हंसी से, एक खुशी से भर लेते हैं। इसीलिए प्यार प्रेमियों को एक दूसरे का सिर्फ साथ चाहिए।
1: कविता जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। ये बहुत ही पॉपुलर और हिट गाना था 1969 का, वापस फिल्म का। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था। लता जी और रफी जी ने इस गाने को आवाज दिया था। बहुत ही खूबसूरत संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसे सजाया था। और वापस 1969 का ये फिल्म, इसमें ये गाना जो है इस फिल्म को बहुत ही अच्छी तरह से उठाव देता है। और ये गाना सुनने के बाद आपके दिल में कहीं ना कहीं हलचल जरूर होता है। और चलिए इस हलचल को और तेज कर देते हैं, गाना ही सुनते हैं डायरेक्ट। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो का सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने सुना। जी हाँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा था लता और रफी साहब की आवाज में आपने गाना जो सुना। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक हसीन पल की जरूरत है हमें, बीते हुए कल की जरूरत है हमें, सारा जमाना रूठ गया हमसे जो कभी न रूठे, ऐसे दोस्त की जरूरत है हमें। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत गानों का कलेक्शन कविता के पास है, तो हम एक एक करके उनके जो सॉन्ग सिलेक्शन है ई अक्षर वाला, उनको हम सुनते जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब कौन सा एक गीत की तरफ आप इशारा करने वाली हैं।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि मेरे पास गानों का कलेक्शन शायद हो सकता है बहुत अच्छा है, तो दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अगला गाना है तो आज भी ऐसा लगता है कि बस वो बचपन लौट के आए और वो सब करें जो हमने पहले बचपन में किया था। तो आइए, वो गाना है एक था बचपन।
0: कविता, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया, एक था बचपन। बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। कहीं ना कहीं हम जब थोड़े बड़े हो जाते हैं या कहीं ना कहीं जीवन के संघर्ष के साथ जुड़ जाते हैं और संघर्ष के साथ हम मुकाबला करते हैं और बहुत मुश्किलें हमारे जीवन में आता है, तो उन प्यारे और उन्हें खुशनुमा पलों को याद करते हैं, उन अच्छे पलों को याद करते हैं जब हमारा बचपन था, जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई मुश्किल नहीं था, जो चाहे सो कर सकते थे हम। वो जो खुशी वाले पल हैं, बिना गम के, बिना टेंशन के हम हंसते गाते मस्ती करते, वो सारी चीजें अगर याद आ जाता है तो दिल में एक जो है कसक पैदा हो जाती है और दिल से ये शब्द निकलता है। जी हाँ, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: ये बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुना, एक था बचपन। जी हाँ, बचपन की यादें जितनी भी याद किया जाए उतना कम है, और जब जब हम इन चीजों को याद करते हैं तो हमारे दिल में उस और हम मुड़ जाते हैं, और ऐसा लगता है कि फिर से अगर बचपन कोई वापस लौटा दे तो जरूर हम उसके लिए जी जान देकर उस बचपन को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में, वसंत देसाई का संगीत था, और आशीर्वाद फिल्म का ये गाना आपने अभी सुना 1968 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ख्वाबों का सफर में, ऐसे ही कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन और बहुत ही सुंदर गीत आपको सुनाते रहते हैं हम लोग, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो आइए, दोस्ती का रिश्ता जो अनजानों को जोड़ देता है, हर कदम पर जिंदगी को नया मोड़ देता है, सच्चा दोस्त साथ देता है तब जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है। आइए और एक खूबसूरत गाना मैं सुनना चाहूंगा, ई अक्षर वाला, कविता से ही जानते हैं अगला गाना कौन सा है।
2: थैंक यू सर। अगला गाना मेरा है एक था गुल और एक की बुलबुल। आशा है आपको भी बहुत प्यार से ये गाना अच्छा लगेगा, शायद इसीलिए ये गाना बनाया गया है, एक था गुल और एक थी बुलबुल।
1: कविता जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया है, 1965 का ये गाना है और बहुत ही हिट गाना रहा ये उस समय का, और जब भी ये गाना लोग सुनते थे 1965 और 70s के बीच में, ये गाना जो है हर गली गली में जो है, जहाँ भी एफएम रेडियो होता था, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन चलता था, उसमें ये गाना उस समय बहुत बजता था, और लोग इस गाने को मुंह जुबानी याद कर लेते थे। दो शब्द तो अच्छा ही ऑटोमेटिक याद हो जाता है, एक था गुल और एक थी बुलबुल। ये शब्द ही ऐसे लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, जो हर एक व्यक्ति जब एक बार सुन लेता है तो उसकी जुबान पे आ जाता है। तो आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, और जब जब फूल के लिए इस फिल्म का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तगुल और एक तिबुलबुल, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। ऐसा लगता है कि जैसे गाने को किसी ने कहानी के रूप में सुनाया हो और हम लोग गाना सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कोई कहानी को हम लोग सुन रहे हैं। शायद ऐसा फीलिंग आपको आया होगा। तो चलिए, ऐसे ही कुछ बहुत ही प्यारे से गीत जो है हम लोग आज सुन रहे हैं, 1965 का आपने सुना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और कौन सा गाना जो है कविता के पिटारे में है, आइए उन्हीं से जानते हैं कि अगला ई अक्षर वाला कौन सा वो सुनाने वाली है।
1: जी हाँ, अगला गाना मेरे पिटारे में जो है वो गाना कुछ ऐसा है कि जब बहुत मतलब प्यार करने वाले मिल जाते हैं या आपस में बहुत प्यार करते हैं या बहुत खुशी मिल जाती है तो वो बहुत अपने आप को एक बहुत अच्छा सा एहसास होता है। तो इस गाने को एक शायरी में कहना चाहती हूँ। तेरे प्यार ने जिंदगी से पहचान कराई है, मुझे वो तूफानों से फिर लौटा कर लाई है। बस इतनी सी दुआ करते हैं खुदा से हम, बुझे ना ये शमा कभी जो हमने जलाई है। समझ गए होंगे आपकी क्या कहना चाहती हूँ। दिल वाले जो होते हैं एक दूसरे की खुशी में ही पूरी दुनिया पा लेते हैं। दिलों को जोड़े रखने वाले ही अपनी एक छोटी सी दुनिया में ही खुश रहते हैं, जिसे कहा जाता है कि एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली।
0: कविता, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया। इंदिवर से आपका लिखा हुआ ये गीत है, लता मंगेशकर ने इसे गाया था। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी हिमालय की गोद में, 1965 में। ये भी बहुत ही पॉपुलर गाना था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, हिमालय की गोद में इस फिल्म का। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM, खाबो का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। मुस्कान का कोई बोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। जी हाँ, बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुन रहे हैं 1950s एंड 60s का। अभी आपने जो गाना सुना 1965 का, हिमालय की गोद में, बहुत ही पॉपुलर गाना आपने सुना। तो आइए, ऐसे ही कुछ खास गाने कविता जी के पास है, तो अब अगला गाना कौन सा सुनाने वाले हैं आप?
1: ख्वाबों के सफर में, ये मेरे पिटारे में लास्ट जो गाना है ई शब्द से, वो है एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या। मैं तुझ से मोहब्बत की तालीब कैसे ना करूं, चलती जो ये सांसें हैं तो वजह तेरी मोहब्बत। सब कुछ मेरा उससे जुड़ा हुआ है, तो सारी दुनिया की क्या जरूरत मुझे। शुक्रिया
0: कविता, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है। इंदी वर्ष आपका लिखा हुआ ये गीत था और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया था और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। ये भी हिमालय की गोद में से ही एक गाना है 1965 का, जो अभी हम सुनने वाले हैं। और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत गाने उनको हमने सुनाए आज ई अक्षर वाले। और इसी के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाजत, और जिस तरह से हम जो गाने आपको सुनाए हैं आप सभी को अच्छा लग रहा हो, तो जरूर आप रेडियो पुनीरी आवाज पर विशेष जो फोन नंबर है उस पर मैसेज करके अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए, जाते जाते चंद्रलाइन ने आप सभी दोस्तों के नाम, दोस्ती की जुदाई का गम करना, दूर रह के भी दोस्ती कम मत करना। अगर मिलाए जिंदगी किसी मोड़ पे, तो हमें देखकर आंखें बंद मत करना। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में, तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील के नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
3: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
2: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी। और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं। सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाए, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज, ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा, आनंद लुटा।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है? महाभारत में 74,000 छंद हैं और कुल 10,00,000 शब्दों में इसे लिखा गया है। इस महाकाव्य को मूल रूप से वेद व्यास जी ने वैदिक काल में संस्कृत भाषा में लिखा था।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।

0: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो पुनेरी आवाज पर हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। ये कार्यक्रम समर्पित है उस स्वर को जिसने 7 दशकों तक हमारे दिल को छुआ, सुमन कल्याणपुरकर जी।
2: 28 जनवरी 1937
1: को जन्मी सुमन जी ने बचपन से ही संगीत की साधना की और 1954 में हिंदी फिल्म मंगू से अपनी यात्रा शुरू की। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग अक्सर उसे लता मंगेशकर जी की आवाज समझ लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 1952 में ऑल इंडिया रेडियो पर हुआ और 1953 में उन्होंने पहली बार मराठी फिल्म शुक्रा की चांदनी के लिए गाया। तो आइए सुनते हैं मंगू फिल्म का एक गीत।

दोस्तों 1954 की फिल्म मंगू से हिंदी सिनेमा में कदम रखने के बाद सुमन कल्याणपुर जी का सफर आसान नहीं था। उस दौर में लता मंगेशकर जी का दबदबा था और सुमन जी की आवाज उनसे मिलती जुलती थी। इसी वजह से कई बार उन्हें पीछे रखा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। 1950-1960 में छोटे छोटे गीतों से शुरुआत की, लेकिन उनकी मधुर आवाज ने श्रोताओं का ध्यान खींचा। 1960 में मोहम्मद रफी के साथ युगल गीतों ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे फिल्म ब्रह्मचारी का सदाबहार गीत है, जिसे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने गाया था। शंकर जयकिशन का संगीत और हर्षद जयपुर के बोल ने इसे अमर बना दिया।

दोस्तों, अभी आपने सुना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, और अब हम आपको ले चलेंगे एक और यादगार नगमे की ओर, जहां रफी साहब की बुलंद आवाज और सुमन जी की मधुरता मिलकर दिल को छू जाती है। यह गीत है नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, फिल्म की जब जब फूल खिले, गायक थे मोहम्मद रफीक और सुमन कल्याणपुर, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और बोल लिखे थे अनजान ने, पर्दे पड़ते शशि कपूर और नंदा जिनकी जोड़ी ने इस गीत को और भी मोहक बना दिया। सोचिए उस दौर की बात जब रेडियो पर पहली बार ये नगमा गुंजा, रफी साहब की बुलंद आवाज और सुमन जी की मधुरता ने इस गीत को अमर बना दिया। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, यह गीत आज भी मोहब्बत का सबसे प्यारा तराना है। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी अभी आपने सुना नाना करते प्यार सुमी से कर बैठी, और अब हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे नगमे की ओर जो दर्द और मोहब्बत का सबसे सुंदर संगम है। सोचिए, जब किसी ने पुकारा और दिल ने बिना सोचे जवाब दिया, यही है सच्चा प्रेम। फिल्म राजकुमार का ये गीत तुमने पुकारा और हम चले आए उसी भाव को जीवित करता है। गायक थे मोहम्मद रफीक और सुमन कल्याणपुर, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने। पर्दे पर्दे शम्मी कपूर और साधना के जोड़े ने इस गीत को भी मोहक बना दिया। तो सुनते हैं यह गीत।

दोस्तों अभी अभी आपने सुना तुमने पुकारा और हम चले आए, और अब हम आपको ले चलेंगे उस नगमे की ओर जो मोहब्बत का सच्चा इजहार है। यह गीत है ना तुम हमें जानो ना हम तुमने जाने, फिल्म थी बात एक रात की, गायक थे मोहम्मद रफीक और सुमन कल्याणपुर, संगीत दिया था हेमंत कुमार ने, बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुर ने, पर्दे पर थे देवानंद और वहीदा रहमान जिनकी जोड़ी ने इस गीत को भावपूर्ण बना दिया। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज का यह समर्पित कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमने सुमन कल्याणपुर जी के मधुर गीतों का स्मरण किया, रफी साहब और मुकेश जी के साथ उनकी जोड़ी को याद किया। अरे नगमा हमें यह एहसास दिलाता है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा का सहारा है। आज के इस कार्यक्रम पर हम श्रद्धांजलि के साथ समाप्त करते हैं। उनकी मधुर आवाज, उनकी मधुर धुनें और उनकी कला हमेशा दिलों में गूंजती रहेगी। रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से महान गायिका सुमन कल्याणपुर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इसी गीत के साथ।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने बहुत कुछ समझा, खुद को समझा, और कई बातें ऐसी निकल कर आई जिनके बारे में अभी तक हमने सोचा ही नहीं था, हमारा ध्यान ही नहीं गया था, या फिर एक बहुत हैरत से हम इस पूरे एस्पेक्ट को देख पा रहे थे। लेकिन जब तर्क की कसौटी पर उसे कसा और साथ ही अनुभव करके देखा तो लगा कि यही रास्ता सही है। पर बात यहीं तक आती है कि ये बात अभी तक हमें क्यों नहीं समझ आ रही थी। और ऐसे में परमात्मा की मुरली, यानी कि हर बार हम आपसे बताते हैं कि परमात्मा स्वयं आकर जो महावाक्य कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। आज भी एक बार फिर हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हर बार हम ये कहते हैं कि आप तक भी लोगों के बातें आती हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसा कैसे है कि इतनी कम उम्र में आप बातें कह पाती हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हम सोच भी नहीं पाते। जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हुई, जिस तरह से रिलेशनशिप्स को हमने देखा, रोल्स को देखा, रिसोर्सेस, आई थिंक आई कुड नेवर इमेजिन कि मेरी जो संस्कार है, मेरी जो हैबिट्स हैं, वो मेरे लिए एक निधि, एक पूंजी बन जाएंगे। मेरे थॉट्स मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, तो ये कैसे संभव है?
1: जैसे कि हम शुरू से ही शेयर करते आए हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस प्रोग्राम में हम जो कुछ शेयर कर रहे हैं किसी का पर्सनल नहीं है, ये परमात्मा का डायरेक्ट सुप्रीम फादर इनकॉर्पोरियल गॉड फादर शिवा, जिसको हम प्यार से शिव बाबा भी कहते हैं, वो निराकार परमात्मा जो इस सृष्टि पर आकर डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। तो वो ज्ञान एकदम सिंपल होता है और हिट करता है एट द रूट, जहां ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर ही आए हैं सृष्टि परिवर्तन के लिए, संसार परिवर्तन के लिए। और परमात्मा कहते संसार परिवर्तन होता संस्कार परिवर्तन से, तो संस्कार परिवर्तन के कार्य के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए। तो जो ज्ञान उनसे मिलता है वो डायरेक्ट रूट पर हिट करेगा, और संस्कार परिवर्तन जैसे जैसे एक एक आत्मा का होगा तो संसार परिवर्तन तो अपने आप होगा। तो द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज दैट वी शेयर ऑन दिस प्रोग्राम कम्स डायरेक्टली फ्रॉम हिम, एंड बीइंग द सुप्रीम टीचर ही गिव्स डीपेस्ट ऑफ नॉलेज इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। और क्योंकि वो आत्मा की अपनी बातें हैं, इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू मी, तो उसको अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता। तो इस सीरीज में जितनी भी हमने बातें की है सेल्फ मैनेजमेंट की, तो कई बार पूछते कि ये कौन सी बुक से पढ़ा है या ये कहाँ से लिया है, तो इसका सोर्स है परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो हम रोज सेंटर पर मुरली के रूप में सुनते। तो वो कोई सारा कुछ एक मुरली में नहीं होता, लेकिन अलग अलग रोज रोज जब हम मुरली सुनते तो उसमें से ही ये सारा ज्ञान निकलता, जो फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम अप्लाई करते। तो ये जो मुरली है इसका टाइटल है रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर से स्वराज्य की प्राप्ति। स्वराज्य, सेल्फ रूल, सेल्फ सॉवरेनिटी किससे आएगी? रूलिंग तथा कंट्रोलिंग पावर। आज बच्चों के स्नेही बाबा, क्योंकि परमात्मा को हम प्यार करते लेकिन परमात्मा भी हमें प्यार करता, तो जो बच्चों के स्नेही है वो बाबा हर एक बच्चे को विशेष दो बातों में चेक कर रहे थे। परमात्मा पिता भी है तो स्नेह है, लेकिन टीचर भी है, तो टीचर का कार्य है चेक करना। तो दो बातों में चेक कर रहे थे, हर एक में रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक आई है, सेल्फ रूल सेल्फ कंट्रोल। आज ये देख रहे थे जैसे आत्मा की स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल से चलती है, सेंस ऑर्गन्स, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो फिजिकल है और 3 ऑर्गन्स हैं जो सकल है, मन बुद्धि संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सटल ऑर्गन्स। एंड ये सब जो सेंस ऑर्गन्स हैं इनको हम कहते हैं स्थूल कर्म इंद्रियां, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स। तो परमात्मा कहते हैं कि आत्मा की, मैं आत्मा हूँ, रूलर हूँ, और ये सेंस ऑर्गन्स मेरे कार्य करता है, तो ये कार्य करने वाले हैं स्थूल कर्म इंद्रियां, ये स्थूल कर्म इंद्रियां आत्मा के कंट्रोल में चलते हैं, जब चाहे जैसे चाहे और जहां चाहे वहां वैसे चला सकते हैं और चलते रहते हैं। आप हाथ से जो कराना चाहो मुख से, वैसे आजकल ये भी थोड़ा सा अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू द सटल दिस इज इन माई कंट्रोल. जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं. तो परमात्मा हमें कह रहे हैं कि ये भी आपकी शक्तियां हैं.
0: अच्छा, मतलब इट्स नॉट ओनली कि हम बोलते हैं कि आई द सोल हैज थ्री फैकल्टीज, लेकिन ये जो है ये भी तो हमारे हमारे
1: Absolutely. जो पिक्चर दिखाते हैं सिंबॉलिक, वो होता है रथ, रथ में पांच वो घोड़े और रथवान, राइट. तो पांच घोड़े क्या है, पांच कर्म इंद्रियों का प्रतीक है. रथ जो है वो रथ है इस शरीर का प्रतीक कि दिस इज द चैरियट, और रथवान कौन है, मैं आत्मा हूँ. तो मैं आत्मा इस पूरे रथ को चलाती हूँ, और इस रथ को चलाने वाले जो पांच घोड़े हैं वो ये पांच कर्म इंद्रियां हैं. अब नॉर्मली वो जो पिक्चर दिखाते हैं उसमें वो पांच घोड़े
0: भाग रहे
1: होते हैं, विच इज ए साइन के ये पांच कर्म इंद्रियां, जिसको हम कहते हैं चंचल हो गई है, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो परमात्मा कहते हैं जैसे ये पांच कर्म इंद्रियां स्थूल है, वैसे मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां हैं. तो जैसे हाथ पांव स्थूल शक्तियां हैं, ऐसे मन बुद्धि संस्कार आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं. स्थूल मतलब कॉर्पोरियल जो दिखाई देता, और सूक्ष्म सटल जो दिखाई नहीं देता. सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर कंट्रोल करने की पावर, अर्थात मन बुद्धि को, संस्कारों को, जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है. स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहे जैसा चाहे हाथ पांव चला सकते हैं, लेकिन मन बुद्धि संस्कार को जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे जितना समय चाहे, ऐसी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर है. तो परमात्मा कहते हर एक बच्चे का मैं ये चेक कर रहा हूं. तो इसका मतलब हम जिस समय जो थॉट चाहे, जितनी देर के लिए वो थॉट क्रिएट करना चाहे, जब क्रिएट करना चाहे, इट शुड बी इन
0: माय कंट्रोल. एंड उसके उसको उस थॉट से मैं क्या डिसीजन लूं, दैट शुड बी इन माय कंट्रोल.
1: फिर एक्शन विल कम इन माय कंट्रोल.
0: दैट इज सो वंडरफुल शिवानी, कि बिल्कुल एक टीचर की तरह ही चेक कर रहे हैं परमात्मा भी, या अगर हम देखें तो, कि हम कहां तक पहुंचे, क्या हम ये कर पा रहे हैं. एंड आई थिंक तब भी फिर उन्होंने देखा कि नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लगता है यही होगा, और उसके बाद ही टेल अस द वे.
1: यस, सो ही फर्स्ट शोज अस व्हाट टू चेंज, देन ही विल शो अस हाउ टू चेंज इट. सी, तो पहले जैसे कि एक्सरे निकाला जाता, तो पहले एक्सरे निकाला जाएगा कि यहाँ यहाँ ये चोट है, फिर बताया जाएगा इसका इलाज कैसे.

0: है, तो यहाँ एक्सरे किसने निकालना है? हमें खुद निकालना है। तो इसलिए बाबा कहते स्टॉप चेक कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर कहाँ तक है। अब हर एक अगर हम चेक करें कि मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जिस समय चाहूं, वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, इज दिस माइंड टोटली इन माय कंट्रोल, तो आंसर यही निकलेगा, अभी उतना नहीं। तो इस विशेष तीन शक्तियों पर, मन, बुद्धि, संस्कार पर कंट्रोल हो तो इसको ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। सेल्फ रूल मतलब इन सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। तो ये सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल शक्तियों को संयम और नियम में चला सकती है। ये सूक्ष्म है, ये स्थूल है।
1: अच्छा, द मोमेंट आई हैव दिस कंट्रोल इन मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोल हुआ, तो इस पे कंट्रोल करना एक्चुअली
0: क्या? तो जो रिसोर्सेस की हमने बात की, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, शरीर, मन, आत्मा, संस्कार, लेकिन संस्कार कंट्रोल में है तो मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में है तो स्थूल कर्म इंद्रिया ऑटोमेटिकली कंट्रोल। इसलिए हम कहेंगे बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म नहीं करना, यू नो, आउटर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अंदर हो गया, आउटर अपने आप हो जाएगा। फिर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ेगा ऐसा बोलना है या ऐसा बोलना है, ऐसा करना है, ऐसा क्या सोचना है, और उसके लिए डीपेस्ट लेवल क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या संस्कार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सूक्ष्म शक्तियां ही स्थूल कर्म इंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती है, जिसको स्वयं को चलाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है। अभी हम कहते हैं औरों को चलाना, औरों से काम करवाना, कहते हैं औरों से काम करवाने के लिए चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। औरों का मैनेजमेंट और रिसोर्सेस का मैनेजमेंट, लोगों का मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब करना है, सेल्फ मैनेजमेंट। तो जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है वो दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। हमें बहुत सारे लोगों को हैंडल करना है, टाइम को, धन को, रिसोर्सेस को हैंडल करना है, लेकिन जो स्वयं को कर सकेगा वो औरों को ऑटोमेटिकली करेगा। सिर्फ दूसरे को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए, जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है वो दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्व के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर सब के लिए हैंडलिंग पावर बन जाते हैं।
1: इनफैक्ट सीरीज में भी अगर हम देखें, हमने बात ये कि सबसे पहला रिश्ता अपने आप से, सबसे पहली जिम्मेदारी जो रिलेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने प्रति, तो जहाँ अपने को हमने संयम करना या अपने को नियंत्रित करना अगर हमने सीख लिया तो बाकी हमें फिर करने की।
0: एंड नॉर्मली भी आप देखोगे सारा दिन में, जहाँ आप अपने थॉट्स में अवेयरनेस आ गई कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा क्या बिलीफ सिस्टम है, ये सोच से ये एक्शन आता है, जहाँ ये पूरा एक आपने एक्सरे कर लिया एंड यू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स, तो जब आपको अपना सिस्टम समझ में आता
1: है दूसरे का भी आ जाता है एक्चुअली।
0: सो नाउ व्हाट विल हैपन कि व्हेन आई एम विद यू आई विल अंडरस्टैंड यू वेरी वेल
1: एंड यू नो आई विल बी एबल टू मेक इट आउट कि आप जो ये रिएक्ट कर रहे हो या आप ये बोल रहे हो उसके पीछे कौन सा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है
0: और आप किस से गुजर रहे हो। कई बार हम देखते हैं कि कोई गुस्सा कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। अब पहले क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो हमें कहते ये गुस्सा कर रहा है, अब हमें पता चलता है कहीं हर्ट है, कहीं कोई दर्द है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्स है, कौन सा क्या हर्ट हुआ होगा जिस वजह से ये इस तरह से लिया। तो उनकी भी पूरी प्रोसेस समझ में आ जाती है और जब उनकी प्रोसेस भी समझ में आ जाती है तो फिर गुस्सा नहीं आता, उनके साथ एम्पथाइज करना बहुत ईजी हो जाता है और खुद स्टेबल है ना। तो जहां अपना स्टेबिलिटी हुआ, अपने को समझ पाए, औरों को समझना बहुत इजी हो जाएगा।
1: इनफैक्ट उसको उनको हम हेल्प कर पाते हैं, उनको सोल्यूशन बता पाते हैं, यू नो सडनली वी आर एबल टू पिन पॉइंट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद देम एंड दे आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट।
0: सो लाइक वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, जैसे हमें अपने रिएक्शंस का कारण पता नहीं था पहले, वैसे उनको भी नहीं पता है, लेकिन क्योंकि आत्मा तो है ना, सभी का फंक्शनिंग प्रोसेस तो सेम ही है, तो जब अपना समझ में आ गया तो सबका समझ में आ जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर

0: आ गए तो हैंडलिंग पावर आ जाएगी. बाबा का बच्चों से प्यार है. सी गॉड ऑलवेज कीप्स रिमाइंडिंग मी कि गॉड लव्स यू बिकॉज दिस इज वेरी एम्पावरिंग. नाउ आई एम नॉट टू डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल. तो बाबा का बच्चों से प्यार है. जिससे प्यार होता है उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यार लगता है. कोई और हमें कुछ कहे कि आपके अंदर ये नहीं है या ये नहीं है तो हमें शायद थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जो हमें बहुत प्यार करता है उसका कोई इशारा देना इस तरह से, वो हर्ट नहीं करता, गुस्सा नहीं दिलाता, वो इशारा भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है. और सदैव दिल में अनुभव होता है कि ये जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा. सी जो आज दिन तक हम कह रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को कैसे बड़ा करें, उनका हित तो वो पेरेंट ही सोचेगा ना, तो परमात्मा से हम ये सीखते कि एक पेरेंट एक बच्चे को कैसे बड़ा करे. आज जब पेरेंट बच्चे को कुछ कहता है तो बच्चे को भी गुस्सा आ जाता है. क्यों? क्योंकि पेरेंट ने बात तो अच्छी की है, उसके फायदे के लिए की है, लेकिन एनर्जी कौन सी क्रिएट की है? एंगर की या इनसिक्योरिटी की या फियर की या हर्ट की. तो वो एनर्जी पहले पहुंचेगी, वर्ड्स बाद में पहुंचेंगे. तो जब एनर्जी नेगेटिव है तो वो वर्ड्स पसंद नहीं आते. परमात्मा भी पिता है, टीचर है, वो भी हमें बता रहा है रोज कि आपके अंदर ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, आपको ये चेंज. सो इजंट ही ऑल्सो ट्राइंग टू डिसिप्लिन अस? इजंट ही ऑल्सो ट्राइंग टू टीच अस व्हाट इज गुड एंड बैड फॉर मी? लेकिन उनकी कही हुई बात बुरी क्यों नहीं लगती है?
1: क्योंकि एक तो वन वी हैव दिस कंप्लीट फेथ दैट यू नो ही व्हाट ही इज सेइंग इज राइट.
0: सो वुडंट हैव अ चाइल्ड हैव अ कंप्लीट फेथ इन हिज पेरेंट्स? लुक एट अस एज चिल्ड्रन विद पेरेंट्स. क्या हमें कंप्लीट फेथ नहीं है? लेकिन वो एनर्जी जो मिल रही है ना, उससे वो फेथ कहीं ना कहीं
1: हमें वो लेबल नहीं कर रहे हैं, हम
0: जजमेंट एक्सेप्ट करते हैं. ही इज द ओशन ऑफ लव, वो प्यार का सागर है. तो प्यार का सागर मतलब जिसके अंदर नेगेटिविटी का ट्रेस नहीं हो सकता. अब प्यार का सागर अगर ये भी कहे ना कि आप बहुत खराब हो तो भी वो खराब नहीं लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन कौन सी आई है? प्यार की आई.
1: और उनका अपना स्ट्रेस नहीं है ना, अपनी कोई नेगेटिविटी नहीं है. सो इनफैक्ट उनकी कोई नेगेटिविटी हम तक नहीं आ रही.
0: तो इससे हमें ये सीखने को मिलता कि अगर हम बच्चों को या किसी को भी कोई शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन अगर वो प्यार की शक्ति के साथ दी जाएगी तो वो शिक्षा उनको अच्छी लगेगी,

0: आपने ये आदत अपने आप में डाली तो ये आपकी आदत बन जाएगी और ये आपको कहीं भी टिकने नहीं देगी. तो डोंट विदड्रॉ फ्रॉम एवरी रिलेशनशिप, पुट इन योर बेस्ट टू मेक इट वर्क, इट विल वर्क. बिकॉज चेंज अब कहाँ लाना है, क्या लाना है. सो कीप ऑन चेंजिंग ऑन योर सेल्फ, कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगा. अब जब हम विड्रॉ कर लेते हैं हर छोटी छोटी बात के लिए, अगर हम किनारा कर लेंगे तो हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट में आओ तब तो मैं अपने ऊपर कुछ काम करूं,
1: वो चैलेंज होगा मेरे लिए.
0: सो इट्स बेसिकली मैच खेलने से पहले ही
1: हार मान
0: विड्रॉ कर लिया. तो ये आदत अपने में डाली तो ये आदत आपको कहीं टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र नहीं रहने देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ जाएगी, ये भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी. सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो.
1: खुद से खुद के ऊपर जो काम करते हो एक्सपेक्टेशंस रखो.
0: औरों से तो एक्सपेक्टेशंस बहुत रखी है, लेकिन अब खुद से एक्सपेक्टेशंस रखो और खुद को मोटिवेट करते रहो, डीमोटिवेट नहीं होना है. तो परमात्मा ने बहुत एम्पावरिंग बातें जैसे हमें बताई, तो बाबा ने कहा कि रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर हमें अपनी अपनी चेक करनी है, कि ये जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, इनको हम जब चाहें जहां चाहें वहां चला सकते हैं. एंड अगर ये सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में रहेंगे तो ये फिजिकल सेंस ऑर्गन्स ये भी कंट्रोल में रहेंगे, और खुद संयम में चलेंगे तो और लोगों को भी हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा, और अपनी शुभ भावना की दृष्टि होगी तो रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे. ओम शांति.
1: ओम शांति. सचिवानी, जिस तरह से जो बातें हमने आज इस मुरली में सुनी, कहीं ना कहीं जिस श्रृंखला से हम गुजरे हैं उसमें सामने क्लियर एक एक बात ऐसे लगता है कि परमात्मा स्वयं जान रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर जिस तरह से स्वयं आकर रोज इस तरह से अपने महावाक्यों से हमें प्रेरित करते हैं, हमारे लिए रास्ते खोलते हैं. थैंक यू सो मच, आज आपने मुरली के माध्यम से वो महावाक्य लोगों तक पहुंचाए. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: जहां हमने अभी तक सेल्फ मैनेजमेंट की बात की है, जब ये पता चलता है कि परमात्मा के महावाक्य ही इस तरह से हमें आके प्रेरित कर रहे हैं, हमारे लिए रास्ते खोल रहे हैं, तो फिर उस श्रृंखला को जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गई है, इम्प्लीमेंट करने में मैं एक बार भी नहीं हिचकूंगी. सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ने स्वयं आकर दिया हुआ ज्ञान है, और जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हमें अनुभव नहीं होगा. वो अनुभव जो मेरे जीवन को बदल सकता है, उस अनुभव को जरूर करने का प्रयास करें, ये हम आपसे आग्रह करेंगे. और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस प्रोग्राम से जुड़ी कोई बात आपके मन में उठती है, कोई सवाल है, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0999-799-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org. अभी के निमित्त ब्रह्मा कुमार इसमें आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें अभी बहुत सी बातें हमने करनी है. जो हमने श्रृंखला समझी है उसे एक प्रैक्टिकल रूप में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जीवन की वो सिचुएशंस जो आपसे ही हम तक पहुंच रही हैं, उनको लेते हुए कैसे सेल्फ मैनेजमेंट की श्रृंखला की जो सीख है हमारे पास उसे इम्प्लीमेंट करना है, आने वाली कड़ियों में जानेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगे यानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी न सकूं तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ कर

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। जीवन एक उत्सव है, हर पल को हमें खुशी से जीना चाहिए। जिंदगी का हर पल, हर लम्हा इम्पोर्टेंट होता है। ये सब बातें हम हर रोज सुनते हैं और उन्हें जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। कई बार तो सफल हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ होते हुए भी कई बार हम अकेले हो जाते हैं और तब लगता है कि डिप्रेशन में है। क्यों होता है ऐसा? क्यों ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं? वो एम्प्टीनेस की फीलिंग, वो हॉलोनेस क्यों होती है? इसी विषय पर हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कई कड़ियों में हमने जानने की कोशिश की है। आज एक बार फिर डिप्रेशन के कॉजेज जानने की कोशिश करते हैं और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। और आपको बता दें कि डॉक्टर गिरीश पटेल आज हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि लगभग 40 देशों में 5,000 से भी ज्यादा लेक्चर्स दे चुके हैं। डॉक्टर पटेल, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। आज डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात जो हमने अभी शुरू में ही कही है कि हम ये तो जान चुके हैं कि डिप्रेशन है, हम में से हर एक को ये फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, एम्प्टीनेस है। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम वजह तक पहुंच जाएं तो शायद उसे दूर कर पाएंगे।
2: मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है डिप्रेशन का, तो पहले तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं है। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे कि जब भी व्यक्ति भले माइल्ड प्रॉब्लम आए, मेजर प्रॉब्लम आए, किसी न किसी को दोष देता है। हमने एक छोटी सी स्टडी की थी जब मैं नायर हॉस्पिटल में पढ़ रहा था, कहीं जो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में आने वाले पेशेंट्स थे उन सबको पूछा कि भी आपको ये जो बीमारी हुई है उसका कारण क्या है। सिंपल एक ही क्वेश्चन था सर, तो हमने देखा कि 81% लोगों ने यह कहा कि भी मेरी ये मानसिक बीमारी का कारण और कोई
0: उसकी वजह से हुआ है। उसने ऐसा किया कि ये घटना हो गई थी तब मुझे हुआ।
2: जैसे नहीं कि भी एक यंग लेडी को डिप्रेशन था, उसको पूछा कि भी आपके डिप्रेशन का कारण क्या है, तो उसने तुरंत कहा मेरा डिप्रेशन, मेरी सास ही उसका कारण।
0: तो डॉक्टर पटेल, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मेरे डिप्रेशन का कारण बाहर नहीं है। आपकी पूरी बातचीत से हमें ये साफ तो हो गया कि बाहर नहीं है, कहीं अंदर है। कहाँ तलाशे वो अंदर, क्या है वो कारण?
2: मतलब मेन चीज है आपके थॉट्स। कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई डिप्रेशन वह बीमारी है या कॉज है। तो मैं समझता हूँ वास्तव में वो कॉज नहीं है किसी का, कॉज इज योर थॉट्स। मूल विचारों को परिवर्तन करना होगा तो तब डिप्रेशन भी खत्म हो।

0: और कहीं हमारे रिएक्शंस भी ऐसे होते हैं. नो, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, नॉट सो इजी. लेकिन जो हमारे नेगेटिव रिएक्शंस है वो अल्टीमेटली डिप्रेशन क्रिएट करते हैं.
1: तो हमने जो वो तीन तरह के डिप्रेशन की बात की थी पीछे, तो उन सबको हम थॉट को चेंज करके उन, और सबसे बड़ी बात, उन सबका कारण भी थॉट हो सकता है, उन सभी डिप्रेशन का.
0: जैसे मेजर तो हमने सोचा था रिएक्टिव डिप्रेशन, जो रिएक्टिव डिप्रेशन 100% योर थॉट्स जो है वही कारण है. दूसरा जो एंडोजिनस डिप्रेशन, एंडोजिनस डिप्रेशन में कहेंगे कि भी विचार शायद सबसे मूल कारण नहीं, लेकिन फिर भी विचार कारण है. क्योंकि हो सकता है कि मेरे फादर को डिप्रेशन था, तो मेरे में भी वह जीन्स है, और वह जीन्स होने के कारण मेरे में वो केमिकल इम्बेलेंस कोई ना कोई एक लेवल पर होगा. लेकिन तब भी अगर मैं टोटली पॉजिटिव हूं, मैं मेडिटेशन का अभ्यास करता हूँ, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो वह केमिकल्स को डिस्टर्ब होने से मैं बच जाऊंगा. तो वहां भी वह एक थॉट ही अल्टीमेटली तो रीजन है. साइकोटिक डिप्रेशन भी कहे, वहां भी थॉट है, लेकिन वह क्या है, परवर्टेड थॉट्स हो गए.
1: तो वो भी हम उसको भी कन्वर्ट
0: अल्टीमेटली. हाँ, वो मुश्किल जरूर है,
1: मगर
0: मोस्ट डिफिकल्ट, करना इजी नहीं है, परंतु उसका जो रूट कॉज कहेंगे वह थॉट्स ही है.
1: सिस्टर शिवानी, हम थॉट्स के ऊपर इतनी बार बात कर चुके हैं, थॉट लीड्स टू डेस्टिनी, ये एक पूरी हम साइकिल से गुजर चुके हैं कि किस तरह से हमारा थॉट जो है वो कन्वर्ट होता हुआ डेस्टिनी हमारी क्रिएट कर सकता है. डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिप्रेशन का मेजर रूट कॉज सामने जो आता है वो है नेगेटिव थॉट्स. पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ना हम कर चुके हैं उस जर्नी के थ्रू, लेकिन बार बार, क्योंकि इट्स नॉट ईजी. मैंने अपनी जिंदगी में अब देखा इतने दिनों में भी कि पहला थॉट जो आता है वो नेगेटिव ही आता है. कुछ भी कर ले हम, मतलब बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, फर्स्ट थॉट विच विल कम टू आवर माइंड इज नेगेटिव. ओनली थिंग विच आई थिंक द चेंज विच हैज कम इन मी, आई फील, हो सकता है हमारे ऑडियंस में भी आया हो, कि आई हैव स्टार्टेड रजिस्टरिंग इट कि मेरा थॉट नेगेटिव आया है.
2: दैट्स बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस.
1: यस,
2: पहले अवेयरनेस नहीं थी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यू नो, अवेयरनेस ही नहीं है. जैसे कलर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक बच्चे को पता ही नहीं है ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये रेड है. जब सिखाया जाता है तब वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है ना, दिस इज डिफरेंट. सो देन ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग दैट बेटर. लेकिन नहीं तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, यू नो, एवरीथिंग इज द सेम. तो अब हम अपने थॉट्स की अवेयरनेस में आ गए, ये नेगेटिव है, ये वेस्ट है, इसका फायदा नहीं है, रिजेक्ट इट. दिस इज अ गुड थॉट, दिस इज एन एलिवेटेड थॉट.
1: लेकिन एक बात है, क्या थॉट में हम प्योर ब्लैक एंड प्योर व्हाइट पे जा सकते हैं? बीच में कई बार ग्रे होते हैं,
2: बहुत सारे शेड्स
1: आते हैं. सो हाउ टू डिफरेंशिएट, एक्चुअली
2: इट विल नेवर बी परफेक्ट 100 या परफेक्ट 0, यू नो.
1: सो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि मेरा ये थॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या ग्रे में क्या है, तो तब मैं सही और गलत के थॉट पे कैसे आऊंगी?
2: मोस्टली तो ये भी हो सकता है कि हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम फील करते हैं वो राइट है,
1: पॉजिटिव है,
2: वो राइट है, एटलीस्ट वो राइट है. बिकॉज हम मोस्टली अभी तक अपने थॉट्स की या अपने व्यवहार की जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से दे पाते हैं. वी आर वेरी गुड लॉयर्स अपने लिए, एंड वेरी गुड जज फॉर द अदर पर्सन. अपने लॉयर में हम सब बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारी हर थॉट और हमारी हर बात के लिए हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है, चाहे सारी दुनिया समझा दे कि वो गलत है. तो उस टाइम हम अपने आप को ही नहीं रियलाइज कर पाएंगे कि ये नेगेटिव है, ये हार्मफुल है. तो उसके लिए शायद थोड़ा साइलेंस में अगर हम बैठ के चेक करते हैं कि वेदर, यू नो, दिस इज गिविंग मी कम्फर्ट, ये मुझे फील कैसा कराती है. बिकॉज थॉट के बाद फॉलोड विद फीलिंग, जो हमने साइकिल भी देखा कि थॉट के बाद फीलिंग, फीलिंग के बाद एटीट्यूड, फिर वो एक्शन में आ रहा है. तो अगर थॉट लेवल पे नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे कि क्या ये राइट थॉट है या नहीं, तो उसको एटीट्यूड या एक्शन तक लेकर जाइए, या फिर उसको पर्सनालिटी तक, डेस्टिनी तक भी लेकर जा सकते हैं. सपोज आई से कि नहीं, आपने किया ही गलत है, तो मुझे आपके लिए इस तरह सोचना, ये मेरे लिए सही है, आप है ही गलत, आई एम जस्टिफाइड. फिर उसको मैं आगे ले जाऊं कि आपके बारे में ऐसा सोचते सोचते धीरे धीरे मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा होता जा रहा है, शुड आई कॉल दिस पॉजिटिव. अच्छा, उसको भी अगर मैंने जस्टिफाई कर दिया, मेरी पर्सनालिटी कैसी बनती जा रही है कि मैं बार बार आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, और वो एंगर फिर सिर्फ आप तक नहीं सीमित रहेगा, क्योंकि जो एनर्जी मैं अपने अंदर जेनरेट कर रही हूँ, आई कैन नॉट गिव दैट ओनली टू यू, सो आई टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू अदर पीपल दैट आई गो. फिर उसके बाद जो एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ, वो एनर्जी वापस मुझ पर आ रही है, तो मेरी डेस्टिनी धीरे धीरे क्या बनती जा रही है, मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, गुड विशेस मिल रही है, या ऑपोजिट, उसका, तो मेरे रिलेशनशिप्स बनते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं. इफ आई देन गो थ्रू द चेन, देन आई अंडरस्टैंड दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ रॉन्ग थॉट,
1: व्हिच आई थॉट
2: वॉज राइट. तो देन एटलीस्ट, या तो फिर उस डेस्टिनी को एक्सेप्ट करें, यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी लाइक दिस, तो ठीक है. अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपकी यू नो जीवन में चिड़चिड़ापन, तनाव, एंग्जाइटी, गुस्सा ये भरा रहे, क्योंकि मैं जो नो काफी लोगों को आज ये कड़वाहट भी अच्छी लगती
1: है, आदत हो जाती
2: है, दे आर यूज्ड टू इट, सो दे आर लाइकिंग इट. बट ये प्रोग्राम हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे जीवन में खुशी चाहिए, सो चाहिए कुछ और, उसके लिए कर कुछ और रहे, इट विल नॉट हैपन.
1: इनफैक्ट अपने आप को खुद को बार बार ये याद दिलाना है कि तुझे क्या चाहिए, बिल्कुल क्या चाहिए एक्चुअली. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस,
2: तो फिर जो फल चाहिए उसी का बीज बोना शुरू कीजिए. बीज कोई और बोए और फिर कहे फल कोई और चाहिए, दैट्स नॉट पॉसिबल,
1: वी डोंट गेट इट. इनफैक्ट डॉक्टर पटेल, हम फिर कॉजेस पर आते हैं. एक बात, सबसे बड़ी बात ये कि थॉट्स हमारे जनरेट करते हैं, जिस भी डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं, और थॉट को चेंज करना, अगेन ग्रे में रहते हैं, ग्रे होते हैं थॉट. कई बार हम नेगेटिव थॉट है वो हम मान ही नहीं पाते कि नेगेटिव है, सो देन दिस होल जर्नी वी टेक एंड देन वी रियलाइज कि ओहो दिस थॉट वाज रॉन्ग एक्चुअली व्हाट पीपल हैव बीन आल्सो सेइंग. अब बात यहां आती है कि क्या इतना आसान है हर कदम पे अपने उस नेगेटिव थॉट को जान पाना और उससे अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाना.
0: एक तो अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करने लगे, इसको अवेयरनेस की बात शिवानी बेन ने कही, ऐसे सिंपल भाषा में अवेयरनेस कईयों को मुश्किल लगता है, उसको सरल भाषा में हम कहेंगे कि वी स्टार्ट वॉचिंग योर सेल्फ. एक जो सरल चीज है वह है कि अपनी फीलिंग्स को वॉच करना, कि मेरे दिमाग में क्या फील हो रहा है उसको वॉच करो, है ना, आंखों में क्या फील हो रहा है उसको वॉच करो, मुंह में क्या हो रहा है. कई बार जब टेंशन में आते हैं ना, सबसे स्पेशल फीलिंग होती है, यू मे बी टाइटनिंग योर जॉज और समथिंग एल्स, शोल्डर्स में यू मे बी नो लिफ्टिंग योर शोल्डर्स, थाइस को भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पेट में क्या फीलिंग हो रही है. नहीं, अगर उसको वॉच करना भी हम प्रारंभ कर देना, देन यू विल कैच नेगेटिव थॉट जब इमर्ज हो रहा है उससे पहले ही आपको पता चल जाए,
1: आपकी बॉडी में रिएक्ट करने लगती है उसी तरह से. बिल्कुल,
0: आई हैव सीन सम टाइम, ऑल्दो इट्स वेरी रेयर, लेकिन कभी ऐसी अगर माइनर भी डिप्रेसिव फीलिंग आने लगे तो देन आई हैव रियलाइज व्हाट हैपेंस, इट इज स्टार्टिंग, इवन 0.1% स्टार्ट होना अब मुझे पता चल जाता है, एंड देन आई बिकम अलर्ट, लेट मी वर्क विथ माई सेल्फ. तो वो जब बडिंग स्टेज में है तभी उसे दूर कर दो तो सदा के लिए मुक्ति मिलेगी.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं यूजुअली तो हम लोनली हो जाते हैं, ये एम्प्टीनेस, हॉलोनेस की फीलिंग जो होती है, लेकिन कई बार हम सैड होते हैं, यू नो दुखी हो रहे होते हैं, कुछ कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाए, कोई कुछ और ऐसी बात हो जाए जो हमें दुखी कर जाती है. सो इज इट लाइक कि जब हम सैड है मतलब कि हम डिप्रेस्ड है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं लोगों को वो दुखी से लगते हैं, हम तो हमें बोलते हैं कि आप डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड क्यों है, तो जैसे नहीं नहीं हम डिप्रेस नहीं, ऐसे ही मेरे को थोड़ा सा दुख हो गया है. सो हाउ टू डिफरेंशिएट, क्या दुख और डिप्रेशन इकट्ठा है या सैडनेस एंड डिप्रेशन इज लाइक सेपरेट एंटिटी?
0: नो, इट इज सेपरेट. कनुप्रिया जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, इवन इट शुड बिकम क्वाइट क्लियर. अगर ये क्लियर हो तो सैडनेस तो जीवन में आनी है थोड़े समय के लिए, डिप्रेशन वो लंबा चलता है. एक जो बात है, दूसरी है कि सैडनेस वो एक्टिव स्टेट है, जो डिप्रेशन है वो पैसिव है. नहीं, जो चीज एक्टिव है ना उससे आप बाहर निकल सकते हैं, जो पैसिव है उससे बाहर निकलना मुश्किल है. दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सैडनेस में भी आप खुश रह सकते, यू नो यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर. आप कहीं देखिए कि कोई व्यक्ति रो भी रहा है फिर जोर से हंसने भी लगेगा कुछ हो गया तो ही इज नॉट डिप्रेस्ड, ही इज ओनली सैड. अगर डिप्रेस्ड व्यक्ति को आप देखेंगे तो वो हंस नहीं पाएगा, कितना भी उसको कोई अच्छा सीरियल दिखा दो, कुछ जोक्स कट करो, वो थोड़ा उसके चेहरे पर उन्हें मतलब वो हंस नहीं पाएगा वास्तव में, इवन कई बार तो रो भी नहीं पाता है. डिप्रेस्ड व्यक्ति आप देखेंगे तो वो रो नहीं पाएगा, जब सैडनेस है तो आप रो लेंगे एंड देन आफ्टर क्राइंग यू फील बेटर,
1: दिस इज अ कैथारसिस व्हिच हैपेंस, निकल जाता है वो, निकल जाता है ना, कहते हैं कि रो के निकल गया.
0: डिप्रेशन में वो कैथारसिस कई बार है वो मुश्किल हो सकता है. तो ये कुछ एक वास्तव में डिफरेंसेस है बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन
1: एक्चुअली. लेकिन एक बात ये बताइए सचिवानी कि सैडनेस इज नेचुरल,
2: Happiness is natural.
1: The word, see, again, sadness like is different from depression, but sadness bhi jo hai, kya lead kar sakti hai?
2: Happiness is 98 point whatever on the normal temperature. सैडनेस शायद थोड़ा सा बुखार बढ़ जाए 101 तक आ जाए तो वो सैडनेस, और डिप्रेशन इज प्रोबेबली व्हेन इट गोज बियॉन्ड
0: 105-106. आपने करना नेचुरल है, वो ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे तो ठीक है, बट इफ इट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन, सदैव आपका जीवन साथी अगर बन गया तो देट इज देन इट्स डिप्रेशन.
2: लेकिन उसकी एक आदत सी पड़ जाती है ना, क्योंकि उसको एक्सेप्ट, क्यों हम लोग सोचते हैं कि नहीं इसको नेचुरल कहे, क्योंकि उसको नेचुरल कहते हैं तो एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि कभी कभी तो उदासी ठीक है, कभी कभी तो ठीक है, फिर वो कभी कभी का जो परसेंटेज है वो धीरे, जैसे हम कहते हैं कभी कभी गुस्सा ठीक है, तो वी आर गिविंग आवर सेल्फ द मार्जिन. इट्स लाइक सेइंग कभी कभी बीमार होना ठीक है, अपना क्या इतना क्या ध्यान रखना. तो फिर वो अब हम क्या ध्यान रखते हैं कि हमेशा ठीक रहे, हमेशा ठीक रखने का जब ध्यान रखते हैं तब जाकर कभी कभी बीमार पड़ते हैं, यू नो. लेकिन अगर हम अपने आप को ये लॉजिक देना शुरू कर दें कि कभी कभी बीमार रहना ठीक है, कोई बात नहीं, चलते चलते कहीं भी पानी पी लो, थोड़ा सा ही तो बीमार पड़ेंगे, देन द फ्रीक्वेंसी कि हम जितनी बार बीमार पड़ेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.
1: बिल्कुल.
2: इसलिए जो अपने लिए वो रखना पड़ेगा टारगेट, वो है कभी गुस्सा नहीं करना. फिर जाकर होगा कि कभी कभी गुस्सा आएगा. लेकिन अगर वो रखा कि कभी कभी गुस्सा अलाउड है,
1: तो
2: बहुत बार आएगा.
0: व्हाट शी इज सेइंग इज कि आप योग का अभ्यास करो ताकि वो सैडनेस भी ना आए. And that has to be the goal.
1: And that is a higher state which we have talked, you know, ki har
0: possible.
1: Har lamha zindagi jeene ki hum baat jo karte hain ki zindagi ek utsav hai jise humme manate rehna hai, wo kahin na kahin usi state pe jaakar pahunch sakta hai. Doctor sahab, anger pe chhod, anger ki baat ki to dekha kai baar ye bhi gaya hai ki gussa pee jate hain log, इंटरनलाइज हो जाता है अंदर, वो फिर कचर पचर बहुत अंदर करता जाता है. तो दो ओपिनियंस ये हैं, वन ऑफ कोर्स द आइडियल इज लाइक आपको एंगर करना ही नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि गुस्सा कर दो, वेंट आउट कर दो, कम से कम अपने अंदर मत रखो, क्योंकि वो डिप्रेस करेगा आपको, अंदर काट देगा. हाउ इम्पोर्टेंट इज कि आपको आउटलेट देना है अपने एंगर को भी, या जो भी एनर्जी किसी भी रूप में जनरेट हुई है.
0: आउटलेट देना है वो ठीक है, बट हाउ यू गिव आउटलेट इज इम्पोर्टेंट. एक जैन गुरु ने बहुत अच्छा कहा है, उन्होंने कहा है कि बे गुस्से को दबाओ नहीं, ये तो ठीक है, उसको गुस्से को दबाना नहीं है ना, तो और उसको गुस्से में भी ना रखो, डोंट एक्सप्रेस इट एज एंगर, बट डू समथिंग डिफरेंट. और जो क्या डिफरेंट कहे तो एसर्टिव योर फीलिंग. एसर्टिवनेस में स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, एंगर में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होती. इफ आई कॉम्प्लीमेंट यू, आप एक दिन में भूल जाएंगे, but if I criticize you, you will remember it throughout your life. तो इसके कारण गुस्सा नहीं करना. और जो डिप्रेशन का इससे संबंध है, क्रोध का भी डिप्रेशन से, सेगमंड फ्रॉइड was supposed to be the founding father of psychoanalysis, जिसने कहा है कि what is depression? Depression is anger turned inward. अपने आप पे गुस्सा करते हैं. वो दबाना एक और चीज है, एक अपने जो कहा ना गुस्सा पी जाना, वह है कि भी क्रोध को आपने दबा दिया. क्रोध को दबाना भी बुरा है, उससे कैंसर हो सकता है, ऐसी बीमारियां होने की संभावना है. और अगर आपने अपने आप पे गुस्सा किया तो आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं. देन यू विल स्टार्ट रिजेक्टिंग योर सेल्फ, देन यू विल डिसलाइक योर सेल्फ, एंड उसके कारण फिर डिप्रेस्ड भी फील करेंगे.
1: एक और एस्पेक्ट अगर हम देखें तो व्हेन वी वांट समथिंग, यू नो, जब हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमें कुछ प्राप्त करने की जो इच्छाएं हैं, वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, मतलब हम ये भी ले लेना चाहते हैं, वो भी लेना चाहते हैं, दैट आल्सो लीड्स टू डिप्रेशन मे बी, यू नो, समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट
0: इट्स डीपर. इट्स अ वंडरफुल थिंग, नो, इट्स अ डीपर थिंग. ऐसे तो ये लगता है कि उससे क्या होगा, कि मुझे भी चाहिए, भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट व्हेन इट इज लाइक नो मच मोर, या तो इट्स बियॉन्ड समथिंग विच इज रीजनेबल, तो क्या होता है, जब मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो एक अपोजिट एनर्जी क्रिएट करती है. नो, इट इज अपोजिट एंड ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. और ये जो उससे अपोजिट एनर्जी है ना, वो आपको डिप्रेस्ड करेगी. यू विल लूज योर एनर्जी, अंदर में भी खोखलापन आएगा, क्योंकि कुछ चला गया मेरे में से, और वह जो बात है वह डिप्रेशन भी लीड कर सकती है. और इसीलिए जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं ना, दे डोंट फील सो मच डिप्रेस्ड, क्योंकि उसमें जो लोभ की वृत्ति है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो वृत्ति कम होती है तो उनमें डिप्रेशन भी कम पाया गया.
1: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की भी बात अगर हम करते हैं तो ऑफ कोर्स टू टेक थिंग्स, यू नो, ये जो लोभ की हम बात कर रहे हैं कि ये एक्चुअली इनहेरेंट ओपनली अगर नहीं भी है तो इनहेरेंट तो है ही आज के वक्त में, कि मुझे ये भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए, ये नहीं कि किसी और से छीन के अपने लिए ही काम में करता जाऊंगा. लेकिन वहां वो जो कहा कि जब हमारी इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो एक ऑपोजिट एनर्जी होती है जो कहीं ना कहीं वो आने नहीं देती है उसको, वो रियलाइजेशन कैसे हर
2: जहां चाहिए की भी बात हुई, इट्स लोभ नॉट ओनली कि मुझे स्थूल चीजें चाहिए, यू नो, धन चाहिए, पोजिशन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे मान शान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए,
1: प्यार तो बहुत,
2: मुझे ट्रस्ट चाहिए, इवन ये सारी जो चीजें हैं ये भी सारा दिन चाहिए. ज्यादा डिप्रेशन शायद इन वजह से हो जाता होगा कि मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए, मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए. दैट इज वेयर दैट फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, निग्लेक्ट, वो सारी चीजें आती हैं, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि मेरे पास ये नहीं है, अब मुझे जब मिलेगा तो देन आई विल फील कम्प्लीट. एंड ह्यूमन नेचर इज यू ऑलवेज वॉन्ट टू फील कम्प्लीट, बिकॉज वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है. जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है. अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है. जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए. तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो, यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप एंड इट विल नेवर गेट फिल्ड. एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप. अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो. हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मेरी खुशी को वो गायब हो गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी. उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है. जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट.
1: एंड इनफैक्ट नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट मेरा इतना ज्यादा भरा हुआ है तो मैं फिर देने को भी तैयार हूं,
2: वो अपने आप जाएगा. वो अपने आप जाएगा. जो आप किसी फंडन, जैसे उन्होंने कहा कि डिप्रेशन इज एंगर टर्नड इनवर्ड्स, जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं. लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि जो क्योंकि जो चीज आप किसी को दे रहे हैं, मैं सोचूं कि आपने गलत किया तो आई एम जस्टिफाइड इन गेटिंग एंग्री विद यू, बट आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट हियर. तो द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव. आपको भी गुस्सा देने के लिए पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है, फिर वो आपके पास जाता है.
1: इट शोज ना फिजिकली आल्सो, हम आंखें लाल हो जाती हैं.
2: तो सबसे पहला डैमेज तो मेरा है. सो इट्स फॉरगेट व्हाट आई वांट टू गिव टू पीपल, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. कि मुझे अपने आप को क्या देना है, नहीं मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर कि सबसे पहले आप अपने आप को कर रहे हैं. तो अगर आप अपने आप को गुस्सा करना चाहते हैं फिर औरों को गुस्सा करना शुरू कीजिए.
1: अल्टीमेटली बात वही आती है सर शिवानी की, एंगर अगर मैं किसी पे कर रही हूँ जिसे मैं जस्टिफाई भी कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझसे ही होता हुआ गुजर रहा है. तो ये बात, ये एहसास इसीलिए याद रखना है. डॉक्टर साहब एक बात और चलते चलते आज इस कड़ी में ये जानना चाहेंगे कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, जब बच्चा होता है, तब वो एक प्योर सोल जो हम जिसे हम तलाश रहे हैं खुद वो है. धीरे धीरे जिंदगी में पहुंचते पहुंचते जिस भी जितना बड़ा होता जाता है ये सेंसिटिविटी आने लगती है, यू नो, लाइक एहसास कि मेरे को इसने ये किया, हर्ट होने का सारा. ये कितना सेंसिटिव है, क्या ये बच्चे को तो नहीं पता होता ना? तो ये कैसे, कहां तक पूरा हमारा जो जिस तरह से बड़े हो रहे हैं, पूरा एटमोसफेयर जो है, समाज है, वो वहां तक पहुंचा देता है.
0: बड़ा अच्छा आपने बताया ये. मैं हमेशा कहता हूँ ये कि भी डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहा कि बच्चा बड़ा क्यूट है लेकिन डिप्रेस्ड होने वाला है ना, तो उसके चेहरे पे नहीं लिखा था तब, वो आगे चल के हुआ और क्यों हुआ। आप ये पूछ रहे, बहुत अच्छी बात है। कई इसके फैक्टर्स है, एक तो है पेरेंटल टीचिंग, बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंटल टीचिंग है, और वो भी पहले 2-3 साल में, जन्म से 2-3 साल में माता पिता का जैसा व्यवहार है, जो बातें पेरेंट्स उसको सिखाते हैं, नो दैट एक्चुअली गवर्न्स द होल लाइफ। और टीचर्स की टीचिंग्स भी हो सकती है ना, और सारा एनवायरमेंट उसको क्या मैसेज देता है, उससे वह एटीट्यूड जनरेट होती है। और एक बहुत बड़ी बात है कि जिसको साइकोलॉजी में भी अब तक हम समझ नहीं पाए हैं क्योंकि उसे अंडरस्टैंड ही नहीं किया, वह है कि वह बच्चा अपने संस्कार भी लेकर के आया है,
1: जो जो चल रहा है इतने टाइप से,
0: या तो जिसको कहेंगे कि भी आत्मा में ही संस्कार है। इसका एक सरल सा उदाहरण में कई बार, मेरे एक बहुत अच्छे फेमस डॉक्टर है, फ्रेंड है, तो उनका एक बेटा है और बेटी है, तो उनकी वाइफ कई बार ये बताती है कि देखो हमने तो एक जैसी बात बताई है, हमारे में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा लोभी है ना, एक एक्सट्रीम नो, इज नेगेटिव लोभी है, और बेटी जो वो एकदम जनरस है, एकदम पॉजिटिव है, शी इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। तो कहते ये क्यों हो रहा है, तो उनको मैंने यही समझाया कि जो फर्क है, ये दोनों अलग अलग आत्माएं अपने संस्कार लेकर के आपके घर में आई है।
1: लेकिन अगेन पॉजिटिव थॉट्स कैन चेंज दैट आल्सो,
0: इट कैन,
1: बिकॉज पॉजिटिव थॉट्स अगेन लीड्स टू आवर पॉजिटिव डेस्टिनी। हम यही बात करते आ रहे हैं। तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। आपको भी बता दें कि हो सकता है आपके पास भी कोई सवाल हो। एक और बात आपको बता देते हैं कि अपनी अगली कड़ी में हम विक्टिम्स के बारे में बात करेंगे कि किसी भी हादसे के जब विक्टिम्स हो जाते हैं तो जो डिप्रेशन तब सेट इन होता है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे हाथ में वो सिचुएशन नहीं होती है, तब कैसे उस डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है, अगली कड़ी पर उस पर ज्यादा हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, अगर आपके पास कोई सवाल है जो कि कहीं अंदर छुपा है, कह रहा है कि मैं भी बाहर निकलना चाहता हूं, तो आपका स्वागत है। आप हमें फोन कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। इसके साथ ही अब वक्त है कि आपसे विदा लें, लेकिन इसी वादे के साथ कि अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और खास मुद्दों पर नजर डालेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हो पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, मनुष्यों के जीवन में जब भी कठिनाइयां आती है तब मनुष्य परमात्मा से कहता है कि परमात्मा कृपा करो, संकट से निकालो, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं तुमको संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता हूं, उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही है। परमात्मा कहते हैं तुम्हें सबसे पहले अपने आप पर कृपा करनी है। अगर हम परमात्मा के दिखाए रास्ते पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान के दिखाए हुए रास्तों पर हमें चलना है, सही राह दिखाना, यही परमात्मा की कृपा है। लेकिन उस राह पर चले ही नहीं, सिर्फ कृपा मांगते रहे, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम कृपा मांगने तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, लेकिन हम खुद अपने साथ क्या करते हैं? कभी खुद पर खुद कृपा करने का हमने सोचा ही नहीं। बाहर वाले लोग हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। सुबह से रात तक हम कितना अपने मन को निगेटिव व्यर्थ विचारों में बिजी करते हैं। भूतकाल में लोगों के व्यवहार कर्मों को देख देख कर जो मन में हमने घाव बनाए हैं, सोच सोच कर उस घाव को भरने की कोशिश ही नहीं करते। कई सालों तक उस घाव को खुदेड़ खुदेड़ कर याद करते रहते हैं और घाव ताजा करते रहते हैं। घायल रहने की जैसे आदत सी बन गई है। सुखों की बातें ज्यादा याद नहीं आती। किसी ने कभी दुख दिया, वही बार बार क्यों याद आता है? क्योंकि हमने अपने मन के घावों को भरा ही नहीं। दुख देने वालों ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हर बार अपने घावों को खुदेड़ कर याद कर हम बार बार दुखी होकर हमने अपना नुकसान कर लिया। दूसरे कैसा व्यवहार करेंगे ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह तो हमारे हाथ में है ना। दूसरों से प्यार से बात करने की उम्मीद रखने के बजाय अपने आप से ही प्यार से बात करने कि उम्मीद रखी होती तो क्या हम दुखी होते? दूसरे हमसे अच्छा व्यवहार करे इस उम्मीद के बजाय क्या हमने अपने आप से अच्छा व्यवहार किया? दूसरे हमारे बारे में क्या बात करते हैं इस पर ध्यान ज्यादा आ जाता है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या बात करती हूँ, क्या सोचती हूँ, दूसरों को जज करने में, समझने में जिंदगी चली जाती है, लेकिन खुद को समझना भूल जाते हैं। दूसरों से अच्छी बातों की, व्यवहार की अपेक्षा के बजाय क्यों ना मैं अपने आप से अच्छी बातें करूं, अच्छा व्यवहार करूं। अपने को समझने में, अपनी कमी कमजोरी खत्म करने में समय लगाऊं, अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाया जाए। आज तक हमने ऐसा कुछ भी तो अपने साथ नहीं किया, सिर्फ अपने आप को याद दिलाते रहे कि दूसरों ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूं। अपने मन के घावों को भरना, अपने मन में अच्छे संकल्पों को क्रिएट करना, दुनियावी बातों से मन को हटाना, निगेटिव व्यर्थ बातों से मन हटाकर सकारात्मक श्रेष्ठ बातों में मन को लगाना, अपने मन का सच्चा मित्र बनना, अपने मन की उदासी को दूर करने के लिए ज्ञान की अच्छी खुराक देना, बार बार मन को भूतकाल के दर्द में जाने से रोकना, वर्तमान में कुछ नवनिर्माण के काम में बिजी रखना, यही तो है ना अपने आप पर कृपा करना। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, बहुत से लोगों को एकांत में रहना बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि बाहर का शोर खत्म होते ही मन का शोर शुरू हो जाता है और हम अपने ही मन के शोर से दूर भागना चाहते हैं। इसीलिए एकांत हमें पसंद नहीं आता, लेकिन मन के शोर को दबाने से या बाहर की दुनिया में भटकाने से मन के घाव नहीं भरेंगे। जैसे ही एकांत मिलेगा, ये फिर शोर करने लगेगा और तब तक करेगा जब तक हम इसके घाव नहीं भरते। मन के घाव भरते हैं परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के याद से। हम बार बार भूल जाते हैं कि हम कलयुग में हैं। कलयुग में सतयुग जैसा व्यवहार तो मिलेगा नहीं। गर्मियों में स्नोफॉल की उम्मीद करना बेकार है, गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी। कलयुग में सभी बीमार हैं। बीमार लोगों से सतयुगी व्यवहार की अपेक्षा करना बेवकूफी है। कोई क्रोध के कीटाणु से बीमार है, कोई लोभ से बीमार है, कोई नफरत से बीमार है, कोई स्वार्थ के कीटाणु से बीमार है। किसी के अंदर ईर्ष्या के जर्म्स इतने फैल गए कि बेचारा वो खुद ही खुश नहीं रह पाता। किसी में काम वासना के कीटाणु है। अपने चारों ओर सिर्फ बीमार ही बीमार नजर आते हैं। किसी में भय के कीटाणु है, इनसिक्योरिटी के कीटाणु है। जब ये कीटाणु बढ़ जाते हैं तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करता है और हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और दुखी होकर बार बार हर्ट होने की बीमारी हम खुद को दे देते हैं। बार बार दुखी होना यह भी भावनात्मक बीमारी का रूप लेता है। आजू बाजू सारे ही पेशेंट हैं। अगर हर एक के विकारों के कीटाणु हम देखने लगे और उसका चिंतन करने लगे तो यह कीटाणु हम में भी आएंगे और हम भी बीमार हो जाएंगे। ऐसे कलयुगी विकारी दुनिया में अपने आप को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? परमात्मा कहते हैं, बीमार लोगों को माफ कर दो, कमजोर लोगों को दुआ दो, इनके प्रति शुभ भावना रखो। सुनने के बाद थोड़ा मुश्किल तो लगता है कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें माफ करना, दुआ देना, उनके प्रति शुभ भावना भी रखना। लेकिन परमात्मा ने हमें बीमारी से बचने का रास्ता बताया है। माफ नहीं करेंगे तो दुखी होते रहेंगे, दुआ नहीं देंगे तो बद्दुआ देकर खुद को भी बीमार करेंगे, शुभ भावना नहीं रखेंगे तो बदले की भावना रख खुद का भी नुकसान करेंगे। खुद की खुशी, शांति, एकाग्रता सब गवा देंगे। परमात्मा ने रास्ता तो बता दिया, लेकिन सिर्फ कृपा मांगने से कुछ नहीं होगा। इन रास्तों पर हमें चलना होगा। अगर हम इतने कमजोर हो गए हैं जो परमात्मा के दिखाए हुए रास्तों पर चल ही नहीं पाते, हमारे कदम लड़खड़ाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, बच्चों मुझे याद करो, स्वयं को शरीर के भान से मुक्त कर आत्मा समझ परम आत्मा को याद करो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और तभी तुम सदमार्ग के रास्तों पर चल पाओगे। ज्ञान हमें रोशनी दिखाता है कि इस राह पर चलना है और परमात्मा की याद हमें उस राह पर चलने की ताकत देती है। बिना ताकत के हम चल नहीं पाएंगे क्योंकि हम भी तो कभी ना कभी नफरत के कीटाणुओं के कारण बीमार थे। जब जब किसी ने हमारे साथ बुरा किया तब तब हमने भी तो उससे नफरत की। पहले वो बीमार थे फिर उनके संपर्क में आकर हम भी तो बीमार हुए। शक्ति घटाई, अब शक्ति बढ़ानी है तो परमात्मा को याद करना होगा। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वो ही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने

0: इंस्टाग्राम में, जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, देहधारी मनुष्यों की यादों को भुलाकर एक परमात्मा को याद करना, यही अपने ऊपर की गई सबसे बड़ी कृपा है। मन की दुखों की आदत सी हो गई है, बार बार दुख देने वालों को याद करता है, और जो सुखों का सागर परम आत्मा है उसे याद करना भूल जाता है। कई जन्म हमने कलयुग में लिए हैं, कई जन्मों में दुख देखे हैं, कई बार सुना भगवान को याद करो, लेकिन मन और बुद्धि से भगवान को याद करना तो हमें आता ही नहीं था। मन भगवान के बारे में विचार करे और बुद्धि भगवान के स्वरूप को देखे, इसी को यथार्थ याद करना कहते हैं। कमाल है ना मन की, दुख देने वाले को याद करता है, पर सुख देने वाले, प्यार देने वाला, साथ निभाने वाला परमपिता परमात्मा को याद नहीं करता। मनुष्यों को याद करने से दुख मिलेगा, भगवान को याद करने से सुख मिलेगा। अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ना, यही है अपने ऊपर सच्ची कृपा करना। मन हमारा बच्चा है और ये बच्चा कलयुग में रहते रहते बीमार भी हो गया है, कमजोर भी हो गया है, घायल भी हो गया है, इसीलिए शोर करता है। टीवी मोबाइल देकर हम इसका शोर थोड़ी देर के लिए बंद तो करते हैं, लेकिन बेचारे के घाव नहीं भरते। कब से घायल है, हम मरहम नहीं लगाते। कब से बीमार है, परमात्मा ज्ञान की दवाई नहीं खिलाते। कमजोर होकर रोने लगता है तो हम अपने ही मन को चुप नहीं कराते, उसे घंटों घंटों रोने देते हैं। किसी की दुख भरी यादों को याद करना, किसी के बुरे व्यवहार को याद कर दुखी होना, यह भी तो मन का रोना ही है। पुरानी बातों को याद करके जो निगेटिविटी मन में कई सालों से पकड़ रखी है और उसी से वो खुद को ही घायल कर रहा है, हम उससे वो निगेटिविटी छीन कर सकारात्मकता का खिलौना अपने मन को नहीं देते। औरों ने जो किया सो किया, अपनी अपनी बीमारी के कारण, लेकिन हमने अपने आप को ठीक करने का, खुश रखने का कोई भी उपाय क्यों नहीं सोचा। परमात्मा कहते हैं कलयुग के अंत में सभी के अंदर की बीमारी बढ़ेगी। क्रोधी व्यक्ति और क्रोधी बनकर उल्टे कर्म करेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत के कीटाणु इस दुनिया में बढ़ेंगे। अंत में सब अति में जाकर फिर इस कलयुग का अंत होना है। कलयुग में विकारों के कीटाणुओं का तूफान चारों ओर है। अगर अपने आप को बीमारी नहीं करना है तो ज्ञान का मास्क और परमात्मा याद की इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई लेनी पड़ेगी। संसर्गजन्य बीमारी बाहर फैली हुई है तो खुद की केयर करने की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जैसे अगर नॉर्मल दिन होगा तो घर दिन में एक या दो बार साफ किया तो भी चल जाता है, लेकिन अगर धूल मिट्टी का तूफान चल रहा हो तो घर बार बार साफ करना पड़ता है। सतयुग में तूफान ही नहीं था तो वहां केयर करने की जरूरत नहीं थी। द्वापर में एक दो बार साफ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में तो तूफान बार बार आते हैं। कलयुग में खुद को बार बार साफ करना पड़ता है। क्या पता कौन से बीमारी का जर्म हम अपने साथ ले आते हैं। अपने मन को बार बार साफ करना अर्थात परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान सुनना। जितने बार मन मैला होगा दूसरों के कीटाणु का चिंतन करके, उतनी बार ज्ञान सुनकर मन को साफ करना पड़ेगा। परमात्मा की याद की दवाई खिलाकर मन की शक्ति बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मन बार बार बीमार ना पड़े, बार बार रोए नहीं, बार बार शोर नहीं मचाए। यही है अपने आप पर सच्ची कृपा करना। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं दुख के कीटाणु हमेशा गंदगी में पनपते हैं। जो दिल साफ होगी, अर्थात जो दिल सबको क्षमा करेगी, सबको दुआ देगी, सबके प्रति शुभ भावना रखेगी, ऐसे साफ स्वच्छ दिल में दुख के कीटाणु नहीं पनपते। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब हमारा मन साफ होता जाता है। जब हम दुआ देते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तब हमारा मन स्वच्छ होता है। जहाँ नफरत होगी, ईर्ष्या होगी, स्वार्थ होगा, वहाँ दुख के कीटाणु जन्म लेंगे। गंदगी में हम कभी सुकून की सांस नहीं ले सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह गंदगी है। जब हम इनसे छूटने का प्रयत्न करते हैं तब हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। हर मनुष्य चाहता है कि वो शांत रहे, खुश रहे, लेकिन इन विकारों के कीटाणु ने उसके अंतर मन में प्रवेश कर लिया है और ये कीटाणु उसे शांत खुश रहने नहीं देते। जब हम परमात्मा को याद करने लगते हैं तब हमारे अंदर के ये कीटाणु मरने लगते हैं और हमारे अंदर के आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों का उदय होता है। ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सुख, पवित्रता, आनंद, शांति का। परमात्मा के याद के बिना हम इन कीटाणुओं से छुटकारा नहीं पा सकते। हमें ऐसी दुनिया में रहना है जहां विकारों के कीटाणुओं की बीमारी चारों ओर फैली हुई है। अगर हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हम भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हर दिन कोई ना कोई तो आएगा ही दुख देने, कटु वचन बोलने, निंदा करने, गुस्सा करने। परमात्मा कहते हैं तुम्हें कलयुग में रहते हुए अपने सुंदर व्यक्तिमत्व की मूर्ति तैयार करनी है। मूर्ति तैयार हो रही है तो छैनी हथौड़े के वार तो होंगे ही, अर्थात बीमार लोगों द्वारा गुस्सा, कटु वचन, निंदा, अपमान मिलेगा ही। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें कलयुग में सब कुछ सहन करना है। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी सब सहना है, क्योंकि सहनशीलता का फल सतयुग में बहुत ही मीठा मिलता है। सहनशीलता भी हम में तब आएगी जब हम परमात्मा को याद करेंगे। बिना परमात्मा याद के हम छैनी हथौड़े के घाव सह नहीं पाएंगे और टूट के बिखर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम्हें टूटना नहीं है, सहन करना है। कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती और गायन भी नहीं होता। हमें परमात्मा के लिए ऐसी मूर्ति बनना है जो खंडित ना हो। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम रोज ज्ञान सुने और परमात्मा को याद करें तो हम परमात्मा के लायक तो बन ही जाएंगे। पुरुषार्थ तो बहुत बड़ा है खुद को बदलने का। कभी मन में जरूर आएगा कि कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मन को समझाना है। परमात्मा ने रास्ता दिखाया है, इन रास्तों पर चलकर खुद पर खुद ही कृपा करनी है। चलते चलते कभी गिर भी जाएंगे, तब भी खुद को फिर से ऊपर उठाना है और फिर से चलना है। अपयश भी मिलेगा, कभी कभी लगेगा कि सहन नहीं होता, किसी के कटु वचन, किसी का गुस्सा, हम जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन अपने मन को समझाना है कि सामने वाला बीमार है इसलिए तो ऐसा कर रहा है, अगर हम भी रिएक्ट करते रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। अपने मन को खुद ही समझाना पड़ता है। सच्चाई राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इन्हीं राहों पर परमात्मा का असीम प्यार, कृपा और मंजिल मिलती है। लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। कभी कभी तो आप हार कर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार को रिएक्ट भी कर दोगे, लेकिन फिर वापस अपने आप को ही समझा कर खुद को ही परिवर्तन करने के लिए तैयार करना है। सामने वाला तो नहीं बदलेगा, अब बदलना हमें ही है। लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश तो करते रहेंगे, आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करनी। अगर परवाह करनी है तो पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की करनी है। लोगों को खुश करने की, उनसे अच्छाई का सर्टिफिकेट पाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। बस इतना जरूर ख्याल हो कि जब मैं परमात्मा के सामने जाऊं तब मेरा सर झुका हुआ ना हो। यही है अपने ऊपर की गई सच्ची सच्ची कृपा। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी पंडित गेंदालाल दीक्षित एक अध्यापक थे। जब गेंदालाल दीक्षित के मन में देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने का संकल्प जागा, तो उन्हें इस कार्य के लिए जनशक्ति और धनशक्ति दोनों की ही आवश्यकता महसूस हुई। वे इस विचार से दुखी हुए कि जिन लोगों के पास धन था, वे देश कार्य के लिए पैसा देने को तैयार नहीं थे। काफी सोच विचार के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि डाकुओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देकर धन और शस्त्र दोनों का संग्रह किया जा सकता था। उन्होंने चंबल के डाकुओं के साथ मिलकर एक संगठन तैयार किया था। उन्होंने मातृ देवी नामक नौजवानों की एक संस्था भी बनाई थी। इस संस्था के सदस्यों को जंगल में निशानेबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस संस्था द्वारा कई राजनीतिक डकैतियां डाली गई थी। जब अंग्रेजी हुकूमत का ध्यान इस क्रांतिकारी दल की ओर गया, तो उन्होंने अपना एक मुखबिर इस दल में शामिल करवा दिया। मुखबिर की सूचना पर भिंड के एक धनी व्यक्ति के घर पड़ी डकैती के दौरान क्रांतिकारी गेंदालाल और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर किले में कैद गेंदालाल दीक्षित को उनकी संस्था के नौजवान सदस्यों ने छुड़ाने की कोशिश की, मगर वे असफल रहे। तब गेंदालाल ने स्वयं को सरकारी गवाह बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने मान लिया। अवसर पाकर गेंदालाल पुलिस को ऐसा चकमा देकर भागे कि फिर मरते दम तक गिरफ्तार नहीं हुए। 21 दिसंबर 1920 को दिल्ली के एक अस्पताल में पंडित गेंदालाल की मृत्यु हो गई। भारत की आजादी के लिए समर्पित एक महान क्रांतिकारी मौन बलिदान देकर चला गया।
2: कैसे हैं गजबिये दादा?
3: अरे आइए आइए मास्टर जी आइए, बहुत दिनों बाद आना हुआ।
2: क्या करें दादा, बच्चों की पढ़ाई का इतना व्यस्त कार्य रहता है कि निकलने का समय ही नहीं मिल पाता।
3: अरे ओ छोटू, मास्टर जी को पानी पिला। और क्या लेंगे मास्टर जी, चाय कॉफी?
2: अरे दादा, चाय पीने आना तो एक बहाना है, दरअसल चाय के साथ देशभक्तों की कहानियां और जो कथाएं आप सुनाते हैं ना, बस हमें तो उसी की चाह रहती है।
3: अरे मास्टर जी, आपकी चाह भी पूरी होगी और साथ में चाय भी पीना पड़ेगी आपको। ए छोटू, मास्टर जी को एक स्पेशल चाय लगा। मास्टर जी, आपने पंडित गेंदालाल दीक्षित जी का नाम सुना है?
2: पंडित गेंदालाल दीक्षित? नहीं तो, कौन थे ये पंडित गेंदालाल दीक्षित जी?
3: ये भी आप ही की तरह एक मास्टर जी थे, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। एक दिन उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना अपने देश के लिए कुछ किया जाए।
2: अच्छा,
3: भारत माता को आजाद कराने के लिए, और छोड़ के शिक्षक की नौकरी कूद पड़े आजादी के आंदोलन में।
2: फिर क्या हुआ दादा?
3: आजादी पाने के लिए इंसान को अपना बहुत कुछ खोना पड़ता है। इसमें केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि अपना परिवार भी शामिल होता है। इसलिए आजादी पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसे संभाल कर रखना है।
2: बिल्कुल ठीक।
3: आज हमारे सामने हैं आजादी के दीवाने गेंदालाल दीक्षित, जो थे तो एक शिक्षक, पर मात्र 32 साल की आयु में भारत मां को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया, वैसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। सन 1888 में आगरा जिले के बाह तहसील के ग्राम मई में पैदा हुए थे गेंदालाल जी दीक्षित। 1920 में दिल्ली के एक अस्पताल में अनाम मौत पाकर इस दुनिया से कूच कर गए। आइए उनके जीवन में झांकने का छोटा सा प्रयास करें।

0: बच्चों, शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसे ग्रहण करना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे शरीर के लिए भोजन। लेकिन आजादी वो सुख है जो आज हमें भले ही न मिल पा रही हो, पर सच यही है कि आजादी के साथ जीने वाले हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं।
1: पर मास्टर जी, हमें ये तो बताइए कि आजादी होती कैसी है?
0: आज हम गुलाम हैं, अंग्रेजों के गुलाम। ये अंग्रेज एक व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए और शासक बन बैठे। बच्चों, जब हमारे देश से ये अंग्रेज चले जाएंगे ना, तब हमें आजादी मिल जाएगी। फिर हम पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होगा, तभी हम आजादी को सही रूप में समझ पाएंगे।
1: तो क्या हम अभी आजाद नहीं हैं?
0: नहीं बेटे, अभी हम आजाद नहीं हैं, बल्कि गुलाम हैं, गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम। अब तो आजादी छीनने का समय आ गया है, इसके लिए हमें एकजुट होना होगा।

0: क्या बात है दीक्षित जी, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं, कहीं कुछ क्रांति का इरादा तो नहीं है?
1: अरे बंधु, क्रांति इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? क्रांति तो बलिदान मांगती है, खून मांगती है, समर्पण मांगती है।
0: तो बंधु, अपने पास न तो खून है और ना ही समर्पण, हम तो क्रांति के बारे में सोच ही नहीं सकते।
1: हाँ, पर मैंने सोच लिया है कि मैं अब ये शिक्षकीय पेशा छोड़ दूंगा और देश के लिए कुछ करूंगा।
0: हो गया बंटाधार, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खासा बच्चों को पढ़ाने का काम मिला है, उसे छोड़ देंगे?
1: हाँ।
0: हो गई देश सेवा। दीक्षित जी, केवल आजादी के नारे लगाने से ही देश आजाद नहीं हो जाता, इसके लिए पेट में कुछ डालना पड़ता है।
1: अच्छा, तो क्या देश के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है?
0: कर्तव्य है ना, कर्तव्य यही है कि अपना काम किए जाओ बस।
1: बंधु, आपकी बातों से मुझे बल मिला है, मैं आज ही इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। बस अब बहुत हो गया, मैं तो चला देश को आजाद कराने के लिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए। देश को आजाद कराने तो निकल पड़े हो गेंदालाल, पर अब देख लो कि अंटी में पैसे कितने हैं। पहले तो मैं अपनी जायदाद का पता तो लगा लूं, किसी दूसरे से मांगने से तो अच्छा है कि पहले अपनी पूंजी लगाओ। लो भाई, निकल आई अपनी संपत्ति, कुल 7 रुपए 4 आने, ये तो हो गए देश को समर्पित। अब आगे चला जाए।
2: आइए आइए मास्टर जी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत दिनों में आना हुआ, कहिए कैसे आना हुआ जी?
1: वो बात यह है सेठ जी,
2: जी
1: हम लोग केवल अपने लिए ही सोचते हैं, देश की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। देश के लिए कुछ किया जाए, इसलिए एक कोष की स्थापना करने का विचार किया है। वो क्या है कि आज मैं अपनी पूरी पूंजी लेकर धन संग्रह करने निकला हूँ, आपसे धन की अपेक्षा है।
2: क्यों नहीं मास्टर जी। अरे मुनीम जी,
3: जी
2: मास्टर जी को 1 रुपया दे दीजिए।
3: बहुत अच्छे।
1: क्या क्या कहा सेठ जी, मात्र 1 रुपया? मैं तो सोच रहा था कि आप अकेले ही इतना धन देंगे कि मुझे और किसी से लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर 1 रुपया?
2: अब बात ये है मास्टर जी, ये राशि मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, देश का नाम मत लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना है, अपना धंधा चौपट नहीं करना है। आपको बहुत सारा धन दे दूंगा तो मेरे बाल बच्चे भूखे ही मर जाएंगे मास्टर जी।
1: हैं? क्या कहा? ऐसा कीजिए सेठ जी, अभी तो ये राशि आप ही रख लीजिए, जब कभी मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं आकर ले जाऊंगा। अच्छा जी, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: यो, बोनी खराब हुई, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। अरे पहले ग्रास में ही मक्खी निकल आई। ठीक है, अब किसी दूसरे का दरवाजा किस मुंह से खटखटाऊं? पर ऐसे हिम्मत हार गए तो हो गया देश का कल्याण, अभी तो देश के लिए हथियार उठाने का समय है, हथियार डालना कायरता होगी।
4: अरे मास्टर जी, कहाँ चले? है? सुना है मास्टरी छोड़ दी, अब क्या करेंगे? ऐसा कभी होता है भला, अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी?
1: बात यह है बंधु, मुझे अंग्रेजों की चाकरी पसंद नहीं है।
3: अच्छा?
1: मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर गुलामी नहीं कर सकता।
3: अरे मास्टर जी, देश सेवा तो हम भी करना चाहते हैं, पर सब कुछ छोड़कर देश सेवा कैसे करें?
1: अरे इन मोह माया से छुटकारा तो कभी संभव है ही नहीं, एक बार यदि ठान लिया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है।
4: आप क्या करना चाहते हैं?
1: मैं तो एक समिति बनाना चाहता हूँ।
3: अच्छा?
1: शिवाजी समिति, इससे लोग जुड़ेंगे तो कुछ देश सेवा ही हो जाएगी।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं मास्टर जी, इस तरह की अगर समिति आप बनाए तो हमें जरूर जोड़ लीजिएगा।
3: पर मास्टर जी, क्या आपकी शिवाजी समिति रजिस्टर्ड संस्था होगी?
4: क्या इसका संविधान शासन द्वारा मान्य होगा?
3: मास्टर जी, समिति के पदाधिकारी कौन कौन होंगे?
4: उस समिति का फंड कितना होगा?
1: ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी तो मैंने समिति बनाने की केवल योजना ही बनाई है,
3: है?
1: और आप लोग उसके आगे इतने सारे प्रश्नों का अवरोध खड़े कर रहे हैं।
3: वो तो पूछना ही पड़ता है ना मास्टर जी।
1: लगता है गुलामों की तरह जीना सीख लिया है आप लोगों ने। अब मातृभूमि के लिए जीना आप लोगों को नहीं आएगा। ये कैसा देश है? अच्छा यही है कि इनसे दूर हो लिया जाए। इन्हें मैं बता दूंगा कि देश सेवा क्या होती है, पर मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? अरे ये क्या हो रहा है, क्यों चीख रहे हैं आप लोग?
3: अरे मास्टर जी, ये पूछने का समय नहीं है, भागो, डाकू आ गए, डाकू।
1: अरे कहाँ, अरे आगे तो क्या हुआ?
3: मुझे लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है मास्टर जी। भला डाकू से कौन नहीं डरता?
1: अरे वो भी तो इंसान है, देखता हूँ वो मुझे कैसे मारते हैं।
3: तो फिर तैयार हो जाइए मास्टर जी मरने के लिए, हम तो चले। अरे मास्टर जी, आपको डाकू से डर नहीं लगा?
1: मैंने तो पहले ही कहा था, आखिर वो भी इंसान है, वो भला किसी निर्दोष को क्यों मारेंगे?
3: पर उनका तो कोई धर्म नहीं होता, धन ही उनका धर्म होता है मास्टर जी।
1: आपने सच कहा, उनका धर्म तो धन है, जन नहीं। आखिर उन्होंने उन्हीं धन्ना सेठों को ही लूटा है जो हमारा शोषण कर रहे हैं। एक तरह से वो हमारा ही भला कर रहे हैं।
3: ये उपदेश आप उन्हीं डाकुओं को दीजिएगा मास्टर जी, आपका जन संग्रह और धन संग्रह वहीं से हो जाएगा।
1: आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा संशय दूर कर दिया। अब मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। अब आप लोगों को मेरा नमस्कार, मैं तो चला बीहड़। ये आ गया मैं चंबल की दुर्गम राहों पर। कहते हैं चंबल के पानी में ही अपराध करने की प्रवृत्ति छिपी होती है, पर ऐसा है नहीं।
5: आओ चिड़ी पहलवान आओ, कौन है रे तू और यहाँ भीहड़ में क्या कर रहा?
1: मैं गेंदालाल दीक्षित अध्यापक था, अब देश सेवा के नाम पर आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ।
5: ओ तो मास्टर हो
1: जी,
5: तो क्या हमें पढ़ाने आए हो या फिर हमें बरगलाने?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को क्या पढ़ाना? अरे जब बंदूक हाथ में हो तो कानून भी आपसे डरता है ठाकुर साहब।
5: साथियों, आप है मास्टर जी गेंदालाल दीक्षित।
1: जी हाँ नमस्कार, नमस्कार ठाकुर साहब।
5: तो देश सेवा करना चाहते हो?
1: जी।
5: क्यों भाई, तुम्हारे पास कोई दूसरा काम वाम नहीं है?
1: अब वो ठाकुर साहब, देश सेवा से बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता।
5: अच्छा, तो अभी तक क्या क्या किया भाई, जरा हमें भी बताओ।
1: अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर मैं पहले जन संग्रह करना चाहता हूँ और फिर धन संग्रह और उसके बाद शस्त्र संग्रह, ताकि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सकूं।
5: वो सब तो ठीक है, पर हमसे क्या चाहते हो?
1: वो क्या है, आप लोगों के पास धन है और शस्त्र है, मैं आप लोगों की सहायता से अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहता हूँ ठाकुर साहब।
5: इसका मतलब तो ये हुआ मास्टर जी कि आप हमारे दूसरे गिरोह से भी मिलोगे। तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मास्टर, जब हमारे ही डाकू गिरोह में आपस में दुश्मनी है, तब तो आप हम सबको कैसे जोड़ पाओगे?
1: मैं सब कुछ कर लूंगा ठाकुर साहब, बस आपका सहयोग चाहिए मुझे।
5: सहयोग? अब तो एक ही सहयोग बचा है। ए बचुआ
6: जी,
5: जाओ हमारे मास्टर जी को पास के गांव तक छोड़ आओ।
1: क्या?
6: बहुत अच्छा,
5: हमें नहीं सीखनी इनसे देशभक्ति।
1: देखिए देखिए ठाकुर साहब, लो यहाँ भी निराशा।
7: सोच लो कितनी निराशा हुई होगी हमारे मास्टर जी को। हर तरफ से निराश व्यक्ति से भला और क्या अपेक्षा की जा सकती है? कोई दूसरा होता तो अब तक वापस मास्टरी शुरू कर देता, अब तो उन्हें अपनी माटी बुलाने लगी, वे अपनी मातृभूमि उत्तर भारत वापस आ गए। यहाँ से उन्होंने अपने जीवन की दूसरी और अंतिम पारी खेलनी शुरू की।
8: अच्छा,
1: कितना सुख है अपनी माटी पर पांव रखने का। लगता है अब यही माटी ही मुझे मेरा रास्ता दिखाएगी। पहले तो मैं यहाँ के युवकों को परखना चाहता हूँ, उनमें कितना मादा है अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का। हाँ, वो आ रहा है युवाओं का समूह। अब इनसे ही बात करने पर पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है।
9: यार, कुछ मजा नहीं आ रहा है। अब तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी।
10: अरे नहीं भैया, जब ईश्वर ने जीवन दिया है तो उसकी कुछ उपयोगिता भी होगी।
9: हाँ।
10: ऐसे कटने वाला नहीं है ये जीवन है।
9: पर जीवन का कुछ उद्देश्य भी तो होना चाहिए,
10: ये बात
9: है कि नहीं? ऐसे ही सड़कों पर अगर मारे मारे फिरेंगे तो कट गया जीवन।
10: अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई तो रास्ता होगा जिस पर हमें चलना है।
9: वही तो तलाशना है।
1: रास्ता मैं बताऊंगा तुम सबको। तुम ही हो जिसमें छिपी है शक्ति भारत माँ के शरीर पर लगी जंजीर तोड़ने की।
9: पर आप हैं कौन महाशय, और ये अचानक हमें देशभक्ति क्यों सिखाने लगे आप?
1: मैं हूँ गेंदालाल दीक्षित।
9: गेंदालाल दीक्षित
1: इस माटी का हूँ, तुम सबका साथी हूँ।
10: अरे मास्टर जी, आप, मैंने आपके बारे में अपने पिताजी सुना था, आप तो बहुत अच्छे शिक्षक हैं।
1: शिक्षक था पर अब नहीं हूँ। मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। बस अब यहीं से शुरुआत करनी है। अब तो तुम जैसों का साथ मिल जाए तो अंतिम सांस भी देश को समर्पित होगी।
9: मास्टर जी, आप आदेश करें, बस ये बताएं कि हमें करना क्या है।
10: हाँ मास्टर जी,
11: हम सब तैयार हैं मास्टर जी।
10: हाँ मास्टर जी, हम तो यूं ही भटक रहे थे
9: जी,
10: लगता है हमें रास्ता आप ही दिखाएंगे।
9: हम तो अब आपके ही साथ हैं मास्टर जी। आज लगता है कि आपके दर्शन से ही हमारा जीवन सफल होगा।
1: तुम सबको देखते ही मैंने यही सोचा था कि अब तुम सभी हो इस देश के कर्णधार।
10: तो मास्टर जी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
9: हाँ मास्टर जी, बताइए हम लोग को करना क्या होगा?
1: देखो, सबसे पहले तो हमें अपना संगठन तैयार करना होगा
9: जी,
1: जिसका नाम होगा मातृवेदी।
9: मातृवेदी?
10: मातृवेदी?
1: हाँ।
9: अरे वाह, यही है सही परख मास्टर जी।
10: हाँ।
9: यही है।
10: अरे वाह, अब हमें अपनी राह मिल गई है, हमें हमारे पथ प्रदर्शक मिल गए। आज मुझे अपार खुशी हो रही है मास्टर जी।
9: हम सबको बहुत खुशी हो रही है।
1: तुम लोग ठीक कह रहे हो, तुम सब नहीं जानते कि तुम्हें पाकर मैं कितना प्रसन्न हूँ।
0: अरे मास्टर जी, आप कहाँ इतनी सुबह सुबह?
1: कहीं नहीं लक्ष्मणानंद जी, साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण देने जा रहा हूँ।
0: आप भी बड़ा परिश्रम कर रहे हैं मास्टर जी।
1: क्यों ना करूँ ब्रह्मचारी जी, आखिर इन्हें ही तो लिखना है भारत का भविष्य।
0: लगता है शस्त्र संग्रह में कुछ सफलता मिली है।
1: हाँ, कुछ सफलता तो मिली है पर ये नाकाफी है।
7: इस तरह से दीक्षित जी को एक के बाद एक कई लोगों की मदद मिलने लगी। अब तो दीक्षित जी और उनके युवा साथियों ने मिलकर राजनीतिक डकैतियां डालना शुरू कर दी। इटावा, औरैया, संधा खोड़ा और पारा में डाली गई डकैतियों से उनके पास धन संग्रह तो होने ही लगा, साथ ही शस्त्र भी आने लगे। मातृवेदी की धूम मचने लगी, दूर दूर तक उसका नाम सुनाई देने लगा। मातृवेदी को मिलने वाली लोकप्रियता से अंग्रेज घबराने लगे। सीधे तरीके से तो वो मातृवेदी को समाप्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने एक मुखबिर को मातृवेदी में शामिल कराने में सफलता प्राप्त कर ली।
8: फिर क्या हुआ?
7: बस यहीं से दीक्षित जी के इस क्रांतिकारी दल का पतन शुरू हो गया। आइए सुने किस तरह से वे अपनों से ही धोखा खा गए।
12: मेरी बात ध्यान से सुनो साथियों।
1: हाँ,
12: मुझे पता चला है कि भिंड जिले के एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति है।
1: हाँ।
12: जिसके पास अपार धन के अलावा काफी हथियार भी है।
1: हाँ। तो देर किस बात की, कल ही हमला बोल देते हैं। आखिर हमारा ये साथी कितनी मुश्किल से ये जानकारी लेकर आया है।
0: अरे ये तो ठीक है, पर वो गांव तो इतनी दूर है कि रास्ते में एक रात किसी न किसी जंगल में गुजारनी होगी।
12: अरे तो क्या हुआ ब्रह्मचारी जी?
1: अरे हुआ क्यों नहीं, हमारे इस दल की जानकारी अंग्रेजों को भी हो गई है। अरे उसे पता चल गया तो हम सबकी जान जाएगी।
12: अरे दीक्षित जी, आप लोग इसकी चिंता ना करें। जंगल में हमें कहाँ रुकना है मुझे सब पता है।
0: सही कह रहे हो ना साथी, तुम्हारे इरादे तो नेक है ना भाई।
12: भला कैसी बात करते हो ब्रह्मचारी जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ।
1: तो ठीक है, फिर कल ही चलते हैं।
12: यही ठीक रहेगा दीक्षित जी।
0: हाँ।
9: जीवन चलने का नाम चलते रहो सुख होशियार। कितना लंबा सफर बीत गया हमें तो पता ही नहीं चला। अरे और कितना चल

0: होगा। अंग्रेज हम पर न जाने कब चढ़ाई कर दें, हम सब एक के बाद एक पहरा देंगे।
1: पर लगता है हमारा ये साथी हमें भूखे ही मरवाएगा। भोजन का इंतजाम करने गया है या मौत का, अभी तक नहीं आया।
2: अरे अरे हरे राम हरे राम। आप कभी अच्छा नहीं सोच पाएंगे ब्रह्मचारी जी। लो मैं आ गया, पूड़ियां बनवाई है साथ में आलू की सब्जी।
0: अरे वाह वाह वाह, आओ साथियों।
2: हाँ हाँ चलिए,
0: पहले पेट पूजा हो जाए।
2: हाँ हाँ,
0: फिर अपने अभियान के बारे में सोचते हैं।
2: चलिए शुरू कीजिए।
0: अच्छा चलो,
2: ये उठाओ लीजिए, आप पी लीजिए।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या बढ़िया भोजन है। अरे किसके यहाँ से लाया हो भैया?
2: भाई यहाँ पास के गांव में ही मेरा एक रिश्तेदार रहता है, वहीं से लाया हूँ।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया पूड़ियाँ। पर आप क्यों नहीं ले रहे हो भाई?
2: दीक्षित जी, रिश्तेदार ने मुझे वहीं पूड़ियाँ खिला दी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग लीजिए।
1: क्या हो रहा है मुझे दीक्षित जी, मेरी सामान क्यों हट रही है?
3: अरे मुझे तो उल्टी आ रही भाई।
0: ये कुछ गड़बड़ है साथी, सच सच बताओ इस भोजन में क्या मिलाया है तुमने?
2: कुछ नहीं दीक्षित जी, मैं जरा पानी लेकर आता हूँ।
1: देशद्रोही, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था, पर कुछ कर नहीं पाया। साथियों वो भोजन मत लेना, उसमें कुछ मिलाया गया है, शायद जहर।
0: क्या क्या क्या
3: जहर?
1: मैं इस गद्दार से निपटता हूँ। लगता है देशद्रोही भाग निकला। वो देखो उधर मशाले दिख रही हैं, इसका मतलब है कि हम लोग गिर चुके हैं।
0: साथियों एक देशद्रोही ने हम सबको खतरे में डाल दिया है, हम सब गिर चुके हैं।
3: पर हम करें क्या दीक्षित जी? मुझे तो उल्टी आ रही है।
4: अरे दीक्षित जी मुझे चक्कर आ रहे हैं।
3: मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा।
0: यही वक्त है, खतरा हमारे सर पर है, हम घिर चुके हैं साथियों। अंग्रेज हमें फाड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, पर हमें अपनी मातृवेदी को ध्यान में रखकर इस स्थिति से निपटना है, धैर्य नहीं खोना है।

0: इस तरह से एक देशद्रोही अपने स्वार्थ के कारण देश के कई जवानों की मौत का कारण बना। इस संघर्ष में मातृवेदी के कुल 35 साथी शहीद हो गए। इसमें ब्रह्मचारी जी भी शामिल थे। दीक्षित जी घायल हुए, उनकी बाईं आंख में एक छर्रा लगा।
1: अच्छा।
0: जिससे उस आंख की ज्योति जाती रही। दीक्षित जी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में रखा गया। इन सब के खिलाफ 13 फरवरी 1919 को एक मुकदमा दायर किया गया, जो मैनपुरी षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुआ। कुल 27 व्यक्तियों के खिलाफ ये मुकदमा चलाया गया।
1: फिर क्या हुआ दादा?
0: उन्हें जेल भेज दिया गया। दीक्षित जी अपने एक साथी रामनारायण के साथ जेल से फरार हो गए, पर जेल का जीवन जीते हुए वे इतने कमजोर हो गए थे कि चलना भी मुश्किल हो गया था। इस बीच क्षय रोग उनका कट साथी बन बैठा, उन्हें पता ही नहीं चला। पास में फूटी कोड़ी भी नहीं। अब तक वे एक फरार क्रांतिकारी घोषित हो चुके थे, इसलिए कोई भी उन्हें अपने घर पनाह नहीं देना चाहता था। दीक्षित जी की तलाश में पुलिस उनके घर कई बार आ चुके थे, इसलिए 3 दिन अपने जन्म स्थान में रहकर वे किसी तरह दिल्ली पहुंचे। यहां उन्हें एक प्याऊ में पानी पिलाने का काम मिल गया।
2: अरे आप इतने कमजोर हैं, कैसे सबको पानी पिलाएंगे?
3: अरे बेटा, पानी पिलाने का काम धर्म का होता है। इसमें कोई कमजोर हो तो क्या, उसे किसी को पानी पिलाने का अधिकार नहीं है क्या?
2: अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है।
3: हाँ।
2: जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है।
3: हाँ बेटा,
2: देखिए आप स्वस्थ होते और चेहरे पर अगर आपकी दाढ़ी ना होती ना, तो आप बिल्कुल हमारे मास्टर जी जैसे लगते। हाँ
3: क्षमा करें भैया, मैं उन्हें नहीं जानता।
2: आप उन्हें जान भी नहीं पाएंगे, वे हैं ही इतने महान कि लोग उन्हें आज भी पूछते हैं।
3: अच्छा लीजिए पानी पीजिए।
2: धन्यवाद।
0: कमजोरी और बीमारी के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में उन्हें लावारिस के रूप में भर्ती कराया गया और 21 दिसंबर 1920 को दोपहर 2 बजे उनका निधन हो गया। भारत की आजादी का ये दीवाना दुनिया से इस तरह उठ गया।

0: कोई जान भी नहीं पाया कि वो कौन था। उसके जाने पर न तो किसी की आंखों में आंसू थे, न कोई आह भी भर पाया। ऐसे मौन बलिदानों की संख्या बहुत है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसी गुमनामी की मौत मरने वाले आजादी के सभी दीवानों को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन।
1: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर करायचं। जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
3: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मनात पीठ वाजल्या की शरीर अबोप फिरकत। त्याच सोबत
4: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
2: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
5: पहला नशा, पहला खुमार।
2: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: इतनी खुशी नहीं आती जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो, अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता, हम लोग मजे से उसी क्लब या रेस्टोरेंट में डांस करने लगते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा, अब देखो

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ बांटो।
2: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
3: ओम शांति।
2: ये शेयर करना चाहूंगा पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन एवरी टाइम, बट एक्सेप्टिंग दैट व्हाटएवर हैपन्स इज द बेस्ट फॉर दिस मोमेंट।
3: जो हम सीखते हैं वो ये कि पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सबसे बेस्ट थॉट क्रिएट करना, हर सिचुएशन में बेस्ट थॉट, हर रिलेशनशिप में बेस्ट थॉट। लेकिन फिर हम ये कहते हैं मैंने इतना पॉजिटिव सोचा, तो वो हुआ नहीं ना जो हमने सोचा था। तो पॉजिटिव थिंकिंग की भी कितनी सुंदर मीनिंग समझ में आई कि पॉजिटिव थिंकिंग डजंट मीन टू एक्सपेक्ट द बेस्ट एवरी टाइम, बट टू एक्सेप्ट दैट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज द बेस्ट फॉर दिस मिनट।
2: सो ब्यूटीफुल ना,
3: दिस इज सो पावरफुल।
2: पढ़ते वक्त भी मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ जितना आपने अब कर दिया।
3: दिस इज सो पावरफुल कि क्यों अभी जो हो रहा है यहाँ, अगर हम कहें कि बेस्ट पॉजिटिव मुझे सोचना है अभी, तो मेरे लिए पॉजिटिव थिंकिंग अभी ये होगी कि सब बेस्ट होगा, मौसम बेस्ट होगा, आसपास आवाज नहीं होगी, कैमरा ठीक चलेंगे, आप और मैं टाइम पर पहुंच जाएंगे। सो दिस विल बी माय पॉजिटिव थिंकिंग। ये मैंने पॉजिटिव थिंकिंग की, लेकिन उसके बाद वो सारी चीजें वैसे होने वाली।
2: एक आदमी बीमार हो गया, ऊपर से प्लेन जा रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, ये सब चीजें इस वक्त जो हो रही हैं, उसको एक्सेप्ट करूं कि दिस इज द बेस्ट फॉर नाउ।
3: पॉजिटिव थिंकिंग मतलब सही सोच हर परिस्थिति में, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग
2: पॉजिटिव इमेजिनेशन है। फिर हम बोलते हैं मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और।
3: क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो है कि हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति परफेक्ट होनी चाहिए, वो भी परफेक्ट किसकी डेफिनेशन से, परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हर एक व्यक्ति और हर एक परिस्थिति परफेक्ट होगी, लेकिन परफेक्ट किसकी डेफिनेशन से, एक तो उनके संस्कारों से और हमारे कार्मिक अकाउंट से। तो अब अगर मैं सोचूं ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये पॉजिटिव है, तो वो होने वाला नहीं है। और जैसे वो नहीं होगा मेरे अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और मेरे अंदर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो वो पॉजिटिव थिंकिंग था ही नहीं।
2: मैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग कर लूं कि मेरी पिक्चर बहुत चल रही है, फ्राइडे में टिकटें बिक रही हैं, पोस्टर है पेपरों में छप गया कि फैंटास्टिक और लाखों करोड़ों लोग देखने आए हैं पिक्चर, और दूसरे दिन फेल हो जाए,
3: तो पहले
2: मैं क्या उसको एक्सेप्ट करूं उस पोजिशन को?
3: अच्छा, सिचुएशन आने से पहले एक विजुअलाइज किया, एंड विजुअलाइज मीन्स एक एनर्जी क्रिएट की, कल ये पिक्चर रिलीज होगी, इट विल बी अ हिट, एवरीबॉडी विल लाइक इट एंड ऑल दैट सीन। तो आपने एक ये सीन क्रिएट किया। अब नेक्स्ट डे हो सकता है वही सीन हो सकता है सीन थोड़ा सा चेंज हो जाए, हो सकता है सीन एक्सट्रीमली चेंज हो जाए। अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग तो मुझे हर मिनट चाहिए ना, नॉट कि पॉजिटिव थिंकिंग सीन होने से पहले और जब सीन आए तो मेरी थिंकिंग डिस्टर्ब्ड।
2: क्योंकि जो मैंने सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश की थी
3: वो सिचुएशन नहीं हुई through. वो सिचुएशन हुई नहीं ना,
2: उल्टा हो गया ना।
3: उल्टा हो गया, तो अब जब ये उल्टा हो गया तब भी तो पॉजिटिव सोचना है ना।
2: यही तो कह रहा हूँ कि अब मैं सोचू कि वाह वाह वाह मेरी पिक्चर फ्लॉप होगी, एक्सेप्ट करूँ।
3: एक्सेप्ट क्यों करना है? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मेरे संस्कार का रिस्पॉन्स और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का रिस्पॉन्स है जो कुछ, और वो इस समय मेरे लिए एब्सोल्युटली एक्यूरेट है। इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता था। दिस इज 100% माई कार्मिक अकाउंट्स ओनली कम बैक टू मी। उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। नेक्स्ट मिनट मेरे कंट्रोल में है, ये मिनट परफेक्ट है। अब मुझे अगर स्मूथ जर्नी पे चलना है, मुझे हर मिनट पॉजिटिव सोचना है। ऐसे नहीं पहले पॉजिटिव सोचा फिर डिस्टर्ब हुआ। तो पॉजिटिव सोचना मतलब मेरे साथ जो होगा, इवन बिफोर विजुअलाइजिंग, मेरे साथ जो होगा वो एक्यूरेट होगा, फेयर होगा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मेरे लिए बिल्कुल सही होगा। हमारी प्रेयर भी यही होगी, यू नो, जब हम प्रे भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन भी जोड़ते हैं, इट्स लाइक एक बच्चा एक पेरेंट को कहे कि मेरे लिए ये कर दो, और दूसरा ऑप्शन है एक बच्चा एक पेरेंट को कहे कि मेरे लिए जो सही है, आपको जो लगता है मेरे लिए अच्छा है, आप वो कर दो। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। लेट्स से मैंने एक डिजायर क्रिएट की, मुझे ये खिलौना चाहिए, और मैं पेरेंट को जाकर कहूँ मुझे ये ही खिलौना लेके दो, और एक है कि मैं पेरेंट को कहूँ आपको जो लगता है कि मेरे लिए
2: जो अच्छा
3: सही खिलौना होगा वो आप मुझे लेकर दो। दोनों में बहुत फर्क है। अगर हमने सीन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया तो फिर हमारे हिसाब से सिर्फ वो ही सही सीन है, और कोई सीन राइट हो ही नहीं सकता है। तो हमने एक, दिस इज डिजायर, कि एक सीन को, एक व्यक्ति को, एक मीटिंग को, एक इंटरेक्शन को पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, विच मीन्स स्क्रिप्ट हमने आने वाले सीन की पहले से ही लिख दी। सपोज हम गाड़ी में जा रहे हैं, मीटिंग है, इसके बाद हम मीटिंग के बारे में कार में पहले ही सारा स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं। हम वहां पहुंच जाएंगे, टाइम पे पहुंचेंगे, वो लोग भी टाइम पर आ चुके होंगे। सबसे पहले वो मुझे चाय तो पूछेंगे, मैं चाय ही नहीं पीकर आया सुबह घर से, सो दे विल ऑफर मी टी। फिर हम 9 बजे अपनी मीटिंग शुरू कर देंगे, फिर मीटिंग में वो ये बोलेंगे, फिर मैं ये कह दूंगा उनको, वो अपनी पॉइंट रखेंगे, लेकिन आई विल कन्विंस देम। कैसे? ये पूरी स्क्रिप्ट हम कार में बैठे बैठे कर लेंगे। अब सिचुएशंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मैं ही ट्रैफिक जैम में अटक जाऊं आगे जाके, तो फर्स्ट लाइन मैं टाइम पर नहीं पहुंचा, सेकंड वो मेरे से भी ज्यादा लेट हो गए, वो किसी और प्रॉब्लम में अटक गए, थर्ड आने के बाद उन्होंने उनको भूल ही गया, उन्होंने मुझसे चाय पूछी ही नहीं, दे गॉट सो एंटैंगल्ड, क्योंकि वो लेट आए, मैं लेट आया मीटिंग ले, उन्होंने चाय मुझसे पूछी ही नहीं। मीटिंग जिस नोट पे शुरू होनी चाहिए थी शुरू ही नहीं हुई। मैंने जो सोचा कि वो बोलेंगे,
2: वो बोला नहीं,
3: उन्होंने तो कम्प्लीटली कोई और बात बोल दी। अब क्योंकि मैंने ये सोचा था, मैं इस तरह से रिस्पॉन्ड करूंगा, लेकिन उनकी बात तो कुछ और ही निकल गई, मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, मैंने रिएक्ट एकदम डिफरेंट तरह से कर दिया। अब पूरी स्क्रिप्ट चेंज। लेकिन क्योंकि हमने पहले से एक और स्क्रिप्ट क्रिएट की हुई थी, हम चाहते थे कि हमारा जीवन बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के अनुसार हो, सिचुएशन ऐसे ही हो, बच्चा ऐसा हो, बहू ऐसी हो, मैं पहले से सिचुएशन को क्रिएट करके नहीं रखूं, मैं स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखूं, क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट मैनिफेस्ट होने वाली नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों हर रिलीजन सिखाता है कि डिजायर्स, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की विद्या भी नहीं होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डिजायर भी नहीं होना चाहिए। जिस आत्मा के अंदर इच्छा मात्रम अविद्या होगी वो आत्मा खुश रहेगी। क्यों? जिस आत्मा के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। तो जब हम सुनते हैं ये लाइन को तो हम कहते हैं मतलब इच्छाएं नहीं, मतलब कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए कि ये हो, ये मेरे पास हो, ऐसा कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। मतलब आने वाली सीन, ये रिलेशनशिप, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो हमारी डिजायर है। ये ऐसा ऐसा होगा, ये ऐसा ऐसा होगा, ये स्क्रिप्ट पहले क्रिएट करने से मेरी अटैचमेंट उसके साथ हो जाती है अंदर, मेरे को वो ही सीन सही लगता है, सीन बदल जाता है, और क्योंकि सीन वो नहीं हुआ जो मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, आई विल गेट डिस्टर्ब्ड। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग दैट दिस सिचुएशन as it is at this moment is the best, rather than expecting the best in every moment. Perspective bhi badal gaya completely.
2: Ye bhi phir majboori hai ki meri picture flop ho jaye aur main bolun ki yaar positive thinking means ki aaj main accept kar lu ki jo hai mere liye best hai, fir agli picture mein dekhte hain.
3: Option bataiye.
2: Option kuch nahi hai, rote rahenge ya fir haste rahenge aur kya.
3: Jeevan ka lakshya kya hai? Khushi, उमंग, उत्साह, और अगले पल के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा देना। एंड ये कोई इमेजिनेशन या अपने आप को बहलाने के लिए नहीं है कि अच्छा एक्सेप्ट दिस इज द बेस्ट. इट्स द ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्म. वी आर नॉट जस्ट सेइंग इट टू फूल आवरसेल्फ कि कोई बात नहीं ना इसको बेस्ट समझो, ये जो हुआ उसको बेस्ट समझो.
2: लॉ ऑफ कर्मा को हर आदमी मान ले तो फिर मेरी माँ मर जाए या डैडी को कुछ हो जाए या तबीयत किसी खराब हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए तो फिर आदमी हिले ही नहीं. इमोशनली सब ठीक, चीज को एक्सेप्ट करे, रोना नहीं, धोना नहीं, दुख नहीं, कुछ नहीं, आराम से आप सुखी बैठे हैं जैसे कि आप.
3: पर वही चाहिए था ना, वही चाहिए था ना.
2: बट हम धरती पे हैं, हेवन में थोड़ा ही हैं.
3: धरती पर हेवन हमें वेट नहीं करना है, धरती पर हेवन हमें क्रिएट करना है. और कहाँ क्रिएट करना है हेवन? धरती पर भी नहीं क्रिएट करना.
2: यहाँ आपकी भाषा में ये
3: हेवन इज नॉट हियर, हेवन इज हियर.
2: ये मुश्किल है,
3: ये एक अभ्यास है नॉलेज कि जैसे जैसे हर सीन आती जाएगी उस सीन को एक्सेप्ट करें कि दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ दिस सीन वॉज मेंट टू बी. आई मे हैव डिसाइडेड कि यहाँ आज सब कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. वो वही होने वाला है वॉट इट वॉज मेंट टू बी. एंड मेंट टू बी ऑल्सो अकॉर्डिंग टू वॉट? Meant to be also according to my past karma. तो उसकी भी responsibility मेरी ही है. तो हम उस scene को अगर accept करते हैं, this scene is the best now. इसने क्या किया? मेरे पर चिंतन को, मेरी चिंता को, मेरी disturbance को full stop लगाया. मतलब इस पल bliss, इस पल खुशी, स्थिरता. अब इसी खुशी से next minute.
2: मैंने भी बचपन में लाइन सुनी थी, चिंता ताकि कीजिए ये अनहोनी होए. अभी आपने चिंता की बात की तो चिंता में तब करूं अगर इस चीज को अनहोनी कहूं तो, ऐसा ही होना था. तो ये एक मुझे बड़ा एक हारी हुई लाइन लगती है कि फिर फाइटिंग नहीं लगता इसमें.
3: आप करें फाइटिंग, मतलब पुट इन योर बेस्ट एनर्जी इनटू एवरीथिंग.
2: कमजोर लाइन नहीं है, बट चिंता ही नहीं करो, जो हो रहा है होने दो.
3: चिंता कमजोरी है,
2: मतलब ट्राई आवर बेस्ट, डू योर बेस्ट, उसके बाद चिंता नहीं करना, ये मतलब है.
3: चिंता क्या करती है? व्हाट इज चिंता? चिंता मतलब ड्रेन करने वाली विचार. ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो, क्या हुआ तो, अगर हुआ.
2: हाँ,
3: तो
2: वो कहते भी है ना, चिंता चिता समान.
3: चिंता चिता समान है. तो डू योर बेस्ट. अब आफ्टर डूइंग योर बेस्ट
2: आगे बढ़ो.
3: डू योर बेस्ट, एक्सेप्ट द रिजल्ट
2: और आगे बढ़ो. नेक्स्ट
3: Yes, again do your best. लेकिन again do your best के लिए क्या करना होगा? इस result को accept करना होगा. जैसे आपने कहा, suppose एक movie कल fail हो जाती है, लेकिन आपने उस movie के लिए you've done your best. But that's not the last movie. This is not my last project. This is not my last meeting.
2: English में कहावत है ना, you fail only when you stop trying.
3: But trying where? हम ये प्रोवर्ब को पकड़ लेते हैं, हम इसको समझ भी लेते हैं कि आई विल नॉट गिव अप, आई विल कंटिन्यू डूइंग. बट इम्पोर्टेंट इज हियर, माय एवरी फेलियर नाउ इट सेज इट्स नॉट अ फेलियर, इट हैपेंस व्हाट इट वाज मेंट टू बी. ये थॉट हमें एक्सेप्टेंस का सही मीनिंग सिखाता है. अगर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझसे आज सुबह इस तरह से बात करेंगे, मीन्स मैंने पहले ही वो सीन को क्रिएट किया, लेकिन आपने एक कम्प्लीटली अलग तरह से व्यवहार किया. लेकिन वो जो आपने किया वो रिटर्न ऑफ माय पास्ट कर्मा है. अब इसको एक्सेप्ट करें, आपके संस्कार को एक्सेप्ट करें, अपने भाग्य को एक्सेप्ट करें. ये पॉजिटिव थिंकिंग है. अब ये सारी एनर्जी कहाँ लगा दे? आपके लिए अच्छा सोचने में. क्योंकि अब अगर मैं आपके लिए अच्छा सोचूंगी तो मेरा ये मिनट भी सुखी है और मेरा नेक्स्ट मिनट भी फिर अच्छा हो जाएगा. उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर बढ़ गया. अगर मेरा ये मिनट अच्छा है, आपने कहा चिंता, अगर ये मेरा ये मिनट दर्द में है तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट मिनट बीइंग हैप्पी विल रिड्यूस. आज अगर आपका पूरा दिन अच्छा बीते, रात को नींद भी अच्छी आए, तो आपकी सुबह उठते ही स्थिति कैसी होगी?
2: फ्रेश, हैप्पी.
3: आज का कैरी फॉरवर्ड कल पे होगा. कल खुश रहने में ज्यादा मेहनत
2: नहीं
3: करनी. फिर कल अच्छा बीतेगा, कैरी फॉरवर्ड इधर होगा. लेकिन अगर आज बीता कल की चिंता करने में ऐसा हुआ तो नहीं हुआ तो ये हुआ तो आज कैसा बीता?
2: टेंशन में
3: दिन गया तो रात भी उसी थॉट के साथ कल की सुबह होगी। अब कल की सुबह क्योंकि ऐसी होगी, भले परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी कल आपके लिए, लेकिन कल का दिन पास्ट जो था वो चिंता में बीता था, तो आज का दिन भी मन की स्थिति कैसे होगी? खुश हो ही नहीं सकते। तो इसलिए चिंता विल नेवर गेट मी एनी गुड रिजल्ट, इवन इफ द सिचुएशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। चिंता सिर्फ और सिर्फ मेरी जर्नी को पीछे खींचेगी।
2: चिंता चिता समान, ये लाइन जानते हुए भी मैं फिर भी चिंता करता हूँ।
3: हाँ, हम चिंता करते हैं जब तक हम ऑलरेडी कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी चिंता करते हैं। चिंता क्यों है? क्योंकि जो मैंने सोचा वैसा होना चाहिए, इस बात की चिंता है, एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर मैंने अपना बेस्ट कर दिया और मुझे ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि कल जो होगा वो मेरे कर्म प्रेजेंट के और मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट का सम टोटल, मेरे पास कल जो आएगा वो एक्यूरेट होगा और मेरे लिए जितना मैं डिजर्व करती हूँ अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो ही आने वाला है। मेरी आज चिंता मेरे कल आने वाले रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती, इनफैक्ट मेरे अभी के कर्मा को वो नेगेटिव बना रहे हैं। When I understand this, I stop expecting and start accepting more. It will not happen again in one day.
2: कई बार कुंडली देखने वाले पंडित, ब्राह्मण, गुरुज, मास्टर्स, बड़े बड़े आशीर्वाद देने वाले, मतलब संत, कई बार अगर हमको समझो 20 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि नहीं अभी आपका टाइम अगले साल अच्छा आ जाएगा, चिंता मत करो अगली बार हो जाएगा, चिंता नहीं करो आप तो आपके भाग्य में इतना अच्छा लिखा हुआ है, आपको ये हो जाएगा, आप अच्छा हो जाए, लेकिन उसकी भी एक बंदे की लिमिट होती है, अच्छा कब होगा?
3: अच्छा होगा अगले साल, अच्छा होगा। अच्छे की डेफिनेशन क्या है?
2: जो मैं चाहता हूँ वो।
3: तो अगले साल अच्छा होगा नहीं, अगले साल सही होगा। इस साल भी सही हो रहा है, अभी जो हो रहा है वो भी सही हो रहा है।
2: तो गीता का सार हम बचपन से सुन रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा।
3: अच्छा वर्ड होने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अच्छा फिर मेरी डेफिनेशन ऑफ अच्छा से होना चाहिए था।
2: तो दिस इज राइट।
3: सपोज आई फॉल डाउन जस्ट नाउ, ठीक है,
2: तो वो भी राइट है आपके लिए?
3: वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, लेकिन वो मेरे लिए राइट है, बिकॉज वो मेरे कर्म, मेरे पास्ट कर्म और मेरे प्रेजेंट कर्म का रिटर्न है, वो एक्यूरेट है।
2: Okay.
3: अच्छा जो हमको सिखाया गया, अच्छा हुआ, अच्छा हो रहा है और अच्छा होने वाला है।
2: और फिर मैं बोलूंगा कहाँ अच्छा हुआ? You're so right, बहुत अच्छी बात।
3: अच्छा means accurate. अच्छा doesn't mean the best. That is what the best. अच्छा means accurate. जो हो रहा है वो accurate. जो होगा वो भी एब्सोल्यूटली एक्यूरेट, क्योंकि लॉ ऑफ कर्म इज एब्सोल्यूटली एक्यूरेट। हमें बहुत सुंदर एक लाइन सीखने को मिलती है, इस ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है और कल्याणकारी है। इसको एक मंत्र की तरह पकड़ के रखे, एंड हर सीन एक्यूरेट है बेस्ड ऑन कार्मिक फिलोसफी। हर सीन एक्यूरेट है, मेरे साथ इनएक्यूरेट तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इफ आई फॉल नाउ दैट इज ऑल्सो एक्यूरेट, इट वॉज मेंट टू हैपन, मेंट टू हैपन वाई, अकॉर्डिंग टू वट आई हैड क्रिएटेड। तो वो एक्यूरेट है, फेयर है, कल्याणकारी है। क्योंकि कल्याणकारी क्यों है? क्योंकि वो बात आई, लेकिन अब अगर मैं उसको एक कल्याणकारी परिस्थिति में देखती हूँ तो मेरी अभी की थॉट कैसी होगी? वो एक श्रेष्ठ चिंतन होगा, तो उससे जो मेरा आने वाला समय है वो अब सारा ठीक हो जाएगा। ये सारा दिन अगर हम हर बात को देखें, जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, हमारा पर चिंतन खत्म हो जाएगा। हमारा बहुत पर चिंतन चलता है, क्यों, क्या, कैसे, ये पर चिंतन वेस्ट ऑफ एनर्जी, खुशी को खत्म करता है। एक्सेप्ट करते हैं ये जो हो रहा है ये फेयर, accurate, this is positive thinking, And that's why it says positive thinking means accepting what is happening for you now is the best. Not expecting the best to happen.
2: अगर मैं रियल लाइफ में रोज उम्मीद कर रहा हूँ और खुश नहीं हूँ, घर छोटा है, ये बीवी ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं मिली, बच्चे मेरे ऐसे हैं, देखता ही रहूँ और उम्मीद करूँ कि कब वो मुझे मिलेगा आइडियल जो मेरा इमेजिनेशन है, वो फिर सारी जिंदगी गुजर जाएगी बेकार सोचते हुए.
3: तो वो ही हो नहीं रहा क्या?
2: कितनी सुंदर आपने बात कही, रियलाइज हुआ मुझे.
3: हो रहा है ना, बट वो हो रहा है ना.
2: हाँ, मतलब कितना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, मैंने क्या क्या लॉस किया अपना.
3: लॉस क्या?
2: खुशियाँ भी लॉस की.
3: खुशियाँ ही लॉस की.
2: बाप रे, आपने इतना दिमाग मेरा एकदम ओपन कर दिया.
3: ये पॉजिटिव, यू नो, कई बार हमें बहुत सारे भाई बहने मिलते हैं, कहते हमने समझा पॉजिटिव थिंकिंग, तो हम ये पॉजिटिव अब सोच रहे हैं कि हमारा ये बच्चा, ये हमारे हस्बैंड या वाइफ, ये बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे. ये पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी.
2: बाप रे.
3: सो एक्सपेक्टिंग देम टू बिकम द बेस्ट, नॉट एक्सेप्टिंग दैट हाउ दे आर नाउ.
2: आप जो हैं, जैसे हैं, बेस्ट हैं.
3: जब तक एक्सपेक्टेशन है तब तक खुशी. जैसे आपने कहा, जो घर है, जो फैमिली है, जो सिचुएशन है, फिल्म हिट है या कई बार नहीं है, उस क्षण उसको एक्सेप्ट करेंगे. ये घर जो मेरा है ब्यूटीफुल, ये इस समय मेरी मेहनत मेरा भाग्य, दोनों चीजें है ना, एंड भाग्य बेस्ड ऑन माय पास्ट कर्मा. तो इस समय ये मेरा बेस्ट है, ये संतुष्टता है. यू नो क्यों हम कहते हैं हम कंटेंटेड नहीं है? आज हमारे पास जीवन में सब कुछ है, संतुष्टता नहीं है. संतुष्टता हो ही नहीं सकती टिल वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट. जब तक मैं नेक्स्ट मोमेंट में कुछ एक्सपेक्ट करती रहूं, तो संतुष्ट कैसे हो सकती हूँ? संतुष्ट मीन्स कंप्लीटली हैप्पी विद व्हाट इज नाउ एंड नो डिजायर. प्रेपरेशन फॉर द नेक्स्ट मिनट बट हैप्पी विद द नाउ.
2: इस वक्त अगर समझो मेरे सामने जो कैमरामैन है वो हिलता जा रहा है, डिस्टर्ब मैं हो जाऊं उसको, तो मेरी कितनी हैप्पीनेस जो है चली जाएगी.
3: इस समय की आपकी पॉजिटिव सोच कौन सी है वो क्रिएट करें. इट्स टीचिंग अस पॉजिटिव थिंकिंग. आपके सामने जो खड़ा है,
2: पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि भाई इसके नेचर में ऐसा है, इसका ये संस्कार है, तो जो है ठीक है, मेरा काम मैं अपना करूं. क्यों, why should I get disturbed?
3: He is fine. And लेकिन उसके बाद हम बताएंगे भी.
2: नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो चले, मेरे थिंकिंग से वो चले, मेरे दिमाग में मैं जो सोच रहा हूँ उसके दिमाग में घुस जाए. इतना सब तो नहीं सोच सकता ना,
3: वो
2: जो
3: हो
2: है,
3: नहीं
2: तो
3: सकता
2: है.
3: ना हाँ. आप सोच तो सकते हैं लेकिन वो हो नहीं सकता. जब हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, तो कोई कहेगा पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स ही विल चेंज, वो बदल जाएंगे.
2: मैं मन्नत रखूंगा सब हो जाएगा.
3: इसको मैं
2: दुनिया को बदलने के लिए मन्नत हो रही है,
3: दुनिया को बदलने के लिए. और जो मेरी डिजायर है, चाहे लोगों के प्रति चाहे सिचुएशन के प्रति, उसको मैनिफेस्ट करवाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. हमारी हर प्रार्थना, हमारी हर मन्नत किस चीज पर फोकस्ड है? कि मेरी जो डिजायर है वो मैनिफेस्ट हो जाए, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए. ये हमारी हर प्रार्थना है, हर मन्नत है. खुश रहना है तो उसके लिए बहुत इजी प्रार्थना और मन्नत भी है. आप प्रार्थना करें, मन्नत मांगे कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मैं शक्तिशाली बन जाऊं.
2: ब्यूटीफुल.
3: देन लाइफ विल बी वेरी हैप्पी. इफ वी आर गोइंग टू कीप प्रेइंग कि जो हम चाहते हैं वो हो जाए, वो प्रेयर कभी पूरी होने वाली नहीं है.
2: हमारी चाहत, हमारी डिजायर्स, हमारी वांट भी तो बदलती ही रहती है ना, और बढ़ती भी रहती है.
3: हमारी डिजायर्स चेंज होती जाएंगी. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब कुछ जो हम डिजायर करते हैं वो नहीं मिलेगा. कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी. कुछ तो जो डिजायर की थी उससे भी अच्छे मिलेंगे.
2: मतलब
3: क्यों? आपने सोचा आपको एक फ्लैट मिलेगा, मिल गया एक बहुत बड़ा बंगला. एम एक फ्लैट का ही रखा था, ये भी हो सकता है. इट्स नॉट कि जो हमने डिजायर रखी थी वो ही मिलती है या उससे कम मिलती है. कितनी बार हमने जो डिजायर रखी थी उससे
2: कई गुना
3: अच्छी चीज मिलती है. दैट ऑल्सो हैपन्स. क्योंकि जो मिलना है वो डिजायर अनुसार मिलना नहीं है. इसीलिए तो, नहीं तो डिजायर से ज्यादा कैसे मिल सकता है? जो मैंने डिजायर रखा, जिस चीज के लिए मेहनत करी, उतना ही मिलना चाहिए ना. या तो कम मिलता है या उतना. उससे ज्यादा कैसे मिला जब मैंने डिजायर ही नहीं किया उसके लिए, मैंने वो थॉट ही नहीं क्रिएट की, तो भी कैसे मिल गया? बिकॉज लॉर्ड सेज हैव योर पास्ट कर्मिक अकाउंट. दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एम रखना है. आपने जैसे कहा पहले एक रूम था, फिर एक फ्लैट, फिर एक बंगलो, फिर विच इज फाइन. एम तो रखना है कि मैं किस रास्ते जा रहा हूँ. लेकिन इम्पोर्टेंट है जो जो परिस्थिति, जो जो मेरे साथ अभी हो रहा है, ये एक्यूरेट है. अच्छा होगा नहीं, अच्छा हो रहा है.
2: जब फिर हम क्यों कहते हैं कि the difference, pain is the difference between what you have and what you want.
3: Yes, because every time what you have, you're not happy with that.
2: Pain क्यों है?
3: Pain क्यों है? क्योंकि अभी आप संतुष्ट नहीं है तो दर्द है. सपोज आपके पास एक फ्लैट है,
2: एक्यूरेट है जो मेरे पास अभी है, हाँ. तो फिर पेन क्यों?
3: क्योंकि हमें मालूम नहीं कि वो एक्यूरेट है ना. आपके पास अभी एक फ्लैट है, लेट्स से सिंपल डिजायर है
2: बंगले,
3: एक बंगले की. अब बिटवीन व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू वांट, अगर आपके पास जो अभी है मकान है, फ्लैट है, अगर आप उसमें संतुष्ट हैं और आप काम कर रहे हैं एक बंगले को खरीदने के लिए, सो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट बट कंटेंटेड विथ व्हाट यू हैव. अब आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस ये है कि अभी जो है वो भी बहुत अच्छा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा. नॉट के अभी ठीक है फिर अच्छा होगा, या अभी अच्छा है फिर बहुत अच्छा.
2: आपके लैंग्वेज में सही है, सही होगा.
3: अभी भी ये बहुत अच्छा है,
2: एक्यूरेट है,
3: एक्यूरेट, परफेक्ट. एंड जो होगा वो भी बहुत अच्छा. इट्स नॉट अभी कम अच्छा फिर अगर आपने कहा अभी अच्छा फिर ज्यादा अच्छा, तो अभी पेन है ना. अभी पेन है क्योंकि होप है कि आने वाला दिन ज्यादा अच्छा होगा. उसके लिए दुआ मांगने जा रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना.
2: हम लोग दुआ भी देते हैं, आने वाला दिन तुम्हारा और अच्छा हो, और अच्छी लाइफ बने, और आप तरक्की करें, और आप करें.
3: क्योंकि हर चीज में दुआ आने वाली चीज के लिए मांगी जा रही है.
2: डबल देना चाहते हैं आप बच्चों को.
3: दुआ क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, प्रेयर क्या होनी चाहिए कि आने वाली बात कैसी भी हो आप स्ट्रांग हो, आप इतने शक्तिशाली हो, इतने पॉजिटिव हो कि आने वाली हर बात को आप इतने प्यार से क्रॉस करेंगे कि वो परिस्थिति आपके लिए सुंदर बनेगी. तो क्या होगा नहीं, जो हो रहा है तो संतुष्ट अभी, कंटेंटेड. व्हाई? बिकॉज इट्स एक्यूरेट. नॉट कंटेंटेड कि मैं इतने से मैं कैसे कंटेंट हो जाऊं, ये तो नहीं है व्हाट आई वांट इन लाइफ. मैं इतने में कैसे संतुष्ट हो जाऊं. संतुष्ट विद द अंडरस्टैंडिंग ये एक्यूरेट है एंड वर्किंग टूवर्ड्स व्हाट आई वांट. तो उससे डिजायर खत्म होती है, एक्सपेक्टेशन खत्म होती है, एक्सेप्टेंस शुरू होती है. अभी भी खुश, अभी भी खुश एंड पावरफुल कि अगले मोमेंट को भी प्यार से फेस करके उसमें भी खुश. तो आज अच्छा तो कल भी अच्छा होगा.
2: थैंक यू सो मच सिस्टर. और अगले एपिसोड में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी ने एक दुआ की थी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए, मे यू हैव इनफ.
3: हाँ, ब्यूटीफुल.
2: इसको करते हैं कंटिन्यू.
3: श्योर.
2: थैंक यू सो मच.
3: ओम शांति.
2: नमस्कार.
4: पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टिंग द बेस्ट टू हैपन एवरी टाइम बट एक्सेप्टिंग that whatever happens is the best for this moment. Positive thinking means right thinking at every moment. Visualizing the best to happen, but then accepting the result and creating the right thoughts, irrespective of what the outcome may be. Positive thinking does not mean what will happen will be the best. It means whatever will happen will be accurate for me according to my sanskars and past karmic accounts. Accepting the outcome of the situation keeps us stable at that moment. We retain the strength, confidence and motivation to put in our best in the next moment.
5: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
6: अश्विनी
5: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
7: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
5: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके, 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

अय्या करूं मैं क्या, सुख सुख खो गया दिल मेरा, सुख सुख

आज फूलों का बुलबुल दे दिया सोने को है, आज फूलों का बुलबुल दे दिया सोने को है, आज हालों में

पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास तेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट परमिट परमिट।

देखो ये तमाशा पहुँचे वहाँ से थाने, हुआ ये हम पे सितम, वहाँ जकड़े गए हम, मांगा परमिट जो उद्यम, हाय हाय हमने कहा ना ना, परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट, परमिट के बिना इस जहाँ में भोजन बिना दिया जाए, परमिट

जाने न जमाना चुपके थे जहर खाने गए हम एक दुखा पर कहा दो जहर मिश्र को बोला वो सितमगर क्या क्या परमिट को दिखाना परमिट परमिट परमिट परमिट के लिए मरमिट परमिट बिना इस जहां में दो दिन बिना जिया जाए।